एफएमएंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी खंडवा है। आज रविवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 21 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 होने को है। अब हमारी आज की ये सभा आरंभ होती है।

0: कितनी सुहानी है आज की ये सुबह।
1: सच है, इसे और सुहाना बना रही है निमाड़ की सुरीली धड़कन।
0: जी हाँ, सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा।
2: आकाशवाणी खंडवा से प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आस्था के स्वर।
3: आस्था के स्वर।

आस्था के स्वर कार्यक्रम का प्रथम सुमन मातृभूमि के चरणों में अर्पित करते हुए आइए सुनते हैं समवेत स्वर में देशगान।

आकाशवाणी खंडवा से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आस्था के स्वर। लीजिए सुनिए हरिओम शरण की गाई ये भक्ति रचना।

0: आस्था के स्वर।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आस्था के स्वर, ये आकाशवाणी खंडवा है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रेड रोड कोलकाता पश्चिम बंगाल में आयोजित 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का कार्यक्रम की समाप्ति तक सीधा प्रसारण। इसे हम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित करेंगे। कृपया विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: जहां से आप 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित सामूहिक योग प्रदर्शन का आंखों देखा हाल सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं नीलम मलकानिया हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में। आमंत्रित विशेषज्ञ हैं परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। आइए आपको योग दिवस कार्यक्रम में ले चलते हैं।
1: नमस्कार, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी खेल प्रेमियों को, स्वास्थ्य प्रेमियों को और योग प्रेमियों को बहुत सारी शुभकामनाएं और इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत। आज पूरा विश्व 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरी मानवता आज एक सुर, एक ताल और एक श्वास में बंधी नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में रेड रोड पर विशेष आयोजन हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में यहां सामूहिक योग प्रदर्शन किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी स्वयं योगाभ्यास कर पूरे देश का नेतृत्व करेंगे। आयोजन का विवरण आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कॉमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण में अपने दो विशेषज्ञों का भी स्वागत कर रही हूं। हमारे साथ हैं परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार।
3: थैंक यू, नमस्ते। एंड वी कैन सी दैट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री रविंद्र नारायण रवि एंड द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी हैव अराइव्ड एट द आइकॉनिक रेड रोड एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल बी लीडिंग द नेशन टुडे एंड ही विल personally be performing asanas at the iconic Red Road on the occasion of the 12th International Day of Yoga. And the Red Road is chock-a-block with people from all walks of life, and it is indeed, Neelam, a very momentous day for all the people who have assembled here at Red Road to be performing asanas to be led by the Honorable Prime Minister. And there's a huge crowd we can see from the one end of Red Road till the Eden Gardens. It is chock-a-block with people. And the theme of this year's International Day of Yoga is healthy aging. And we can see that everyone is assembled here and they're looking forward to join the Honorable Prime Minister and perform asanas.
1: 21 जून 2026 की इस सुहानी और अलौकिक सुबह में कोलकाता की इस ऐतिहासिक भूमि पर हुगली नदी के पावन तटों की गवाही में भव्य तैयारियां की गई हैं आज के आयोजन के लिए। यहां से माननीय प्रधानमंत्री जी इस वैश्विक उत्सव का नेतृत्व करेंगे। इस बार की थीम है योग फॉर हेल्दी एजिंग, बढ़ती उम्र में भी ऊर्जावान और गतिशील।

0: बने रह सकते हैं, हम योग के साथ स्वस्थ रह सकते हैं। और आपको बताएं कि बहुत विशाल मंच एक यहां पर बनाया गया है जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी और साथ ही अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति है। पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, साथ ही माननीय गवर्नर साहब हैं और यहां पर अब संबोधन हो रहा है।
1: श्री प्रताप राव जाधव, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष।
0: विशाल जनसमूह इस संबोधन को सुनता हुआ।
2: जिन्होंने योग को पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाया, ऐसे हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल श्री आर्यन रवि जी, पश्चिम बंगाल के ओजस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी, आदरणीय सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित गणमान्य जन, योग प्रेमियों, मीडिया के मित्रों एवं लाइव टेलीकास्ट के द्वारा हमारे साथ पूरे दुनिया से जुड़े हुए करोड़ों देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित करवाकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का जो अभूतपूर्व कार्य शुरू किया, वह अब 180 से अधिक देशों में मनाए जाने वाला एक वैश्विक स्वास्थ्य जन आंदोलन बन गया है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संस्करण की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग है, जिसमें हमने योग 365 जैसा एक अनोखा अभियान शुरू किया है, जिसमें नागरिकों के लिए योग केवल एक दिन का उत्सव न रहकर योग को पूरे वर्ष अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाने को प्रेरित करता है। इस वर्ष के योग दिवस के सेलिब्रेशन के लिए आयुष मंत्रालय ने काफी नए इनिशिएटिव लिए हैं, जिसमें हमने YouTube पर योग लाइव स्ट्रीम करके सबसे अधिक लोगों की सहभागिता का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। हवाई यात्रा में योग के लिए एक नया प्रोटोकॉल विकसित किया गया। 13 जून से 20 जून तक माँ गंगा के तट पर गंगोत्री से गंगा सागर तक 8 अलग अलग घाटों पर योगाभ्यास करके योग श्रृंखला का आयोजन किया गया। कोलकाता में दौड़ से ध्यान का कार्यक्रम आयोजित किया गया और कोलकाता में ही ड्रोन और लाइट शो का भी भव्य आयोजन किया गया। आज बहुत समय के बाद बंगाल की इस धरती से योग की गूंज पूरे विश्व भर में सुनाई दे रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारा आयुष मंत्रालय भारत की प्राचीन विरासत वाली पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का विस्तार करने के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए इस वर्ष के केंद्रीय बजट में आयुष मंत्रालय को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है, जिसमें 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की घोषणा भी शामिल है, जिसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मैं विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने इस वर्ष के योग दिवस के अभूतपूर्व आयोजन के लिए अपने नेतृत्व में प्रशासन के साथ अपना पूरा योगदान दिया। अंत में मैं यह विश्वास व्यक्त करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी व्यक्तित्व और उनके गतिशील नेतृत्व में योग और आयुष की पताका पूरी दुनिया में लहराएगा तथा भारत को विश्व गुरु बनाने में योग और आयुष की महत्वपूर्ण भूमिका भी सिद्ध हो सकेंगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई। वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे योग।
0: माननीय केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रताप राव गणपत राव जाधव ने अभी सभी का यहां पर स्वागत किया और साथ ही आयुष मंत्रालय ने योग को बढ़ावा देने के लिए जो पहल की है उनके बारे में बताया। हम आपको बताएं कि माननीय राज्य

0: আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ভারতমতে আমাদের মধ্যে ফিরিয়ে দিলেন। ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রী, ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রী, শত কোটি প্রণাম জানিয়ে আমার কথা শেষ করলাম। ভারত মাতা কি?
1: That was the Honourable Chief Minister of West Bengal, Sri Shubhendu Adhikari, addressing the gathering on the occasion of the International Day of Yoga. And every yoga enthusiast, and we can see that the Honourable Minister for Municipal Affairs, Srimati Agnimitra Paul of the Government of West Bengal, is also among the lakhs of yoga enthusiasts who have assembled at the iconic Red Road. And the Honourable Chief Minister of West Bengal mentioned that more than 2,57,000 registrations have taken place for today's main ceremony here at the Red Road, and more than a crore yoga enthusiasts will join, especially in the state of West Bengal, from Darjeeling to Digha and from Kuchbihar to Kagdweep. And now we can see that the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi is walking towards the dais where he will be performing the asanas and leading the nation today in performing yoga. And as we know that yoga for healthy aging is the theme of
2: Rajpal Shri R. N. Ravi ji, Urjavan Mukhyamantri Shubhendu Adhikari ji, केंद्र में मेरे सहयोगी प्रताप राव जाधव जी, अन्य सभी महानुभाव, यह कोलकाता में जुटे सभी प्रतिभागी, देश विदेश में योग से जुड़ रहे सभी साथी और मेरे प्यारे देशवासियों, 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में, कोलकाता में, यहां बने स्वच्छता के योग के लिए भी कोलकाता वासियों की सराहना करूंगा। ये अद्भुत पहल है, स्वच्छता से स्वागत, स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए।

लिए जिस तरह यहां लगातार श्रम किया गया है, नागरिक कर्तव्य निभाया गया है, वो सभी देशवासियों के लिए आज एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया है। साथियों, योग दिवस के अवसर पर आज बंगाल में होना बहुत ही विशेष है। बंगाल की ये पवित्र भूमि, जहां भगवान रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध संतों ने अवतार लिया, जहां से निकलकर स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को योग से परिचय कराया, जहां महर्षि अरविंद जैसे महान योगी ने जन्म लिया, लाहिड़ी महाशय जैसे महान योगियों ने जहां योग परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आज उसी धरती पर सामूहिक योग का अनुभव एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति दे रहा है। इसी बंगाल की धरती पर जन्मे गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का मानना था कि मनुष्य की पहचान अलग अलग रहने में नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में है। यही जुड़ाव योग का मूल भाव है। महर्षि अरविंद भी कहते थे, हमारा पूरा जीवन योग है, चाहे हमें इसका बोध हो या ना हो। योग जब स्वभाव में आता है तो वो मानवीय एकता का आधार बन जाता है। साथियों, योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है, योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग मानव जीवन के जीवन का चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। फ्रेंड्स, व्हेन वी स्पीक ऑफ योगा फॉर हेल्दी एजिंग, इट मींस दैट वी कैन वर्क टू एंश्योर दैट एज डज नॉट रिड्यूस ह्यूमन पोटेंशियल। योग कैन हेल्प ह्यूमन लाइफ टू एस्पायर फॉर कॉन्स्टेंट ग्रोथ। आवर टारगेट मस्ट बी टू बी मोर फ्लेक्सिबल एट 40 देन वी वेर एट 20। आवर टारगेट मस्ट बी टू बी मोर एनर्जेटिक एट 50 देन वी वेर एट 30। Our target must be to be more resistant to lifestyle disease at 70 than we were at 50.

This is where yoga can help us. It helps us tune our bodies to be flexible. It keeps our energy level high. It also helps us maintain a calm, stress-free life and help to keep lifestyle disease away. Moreover, with regular practice, yoga teaches us to remain lifelong learners of our own bodies and minds. The more we know about ourselves, the better we can manage ourselves. That is why yoga for healthy aging, this theme must be seen as one for people of all ages, not just for the elderly. साथियों, गीता में भगवान कृष्ण ने योग के विषय में कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुखः। अर्थात संतुलित आहार विहार से, संतुलित क्रियाओं और कर्मों से, संतुलित नींद और जागने से योग दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। ये संतुलन ही योग का आधार है। यही संतुलन लेकिन ज्यादातर लोग आज इस आधुनिक समय में जीवन के असंतुलन से ही जूझ रहे हैं। बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है उनको। योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है। यानी हमें क्या करना चाहिए, इसलिए योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है इतना ही नहीं है। योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर करोड़ों लोग योग से जुड़ते हैं, लेकिन आज का ये दिन हमें अपने साझा संकल्प को फिर दोहराने का अवसर देता है।

0: आइए हम संकल्प लें, योग को केवल एक दिवस तक सीमित नहीं रखेंगे, योग को केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखेंगे, हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों का हिस्सा बनाएंगे। साथियों, इसी दिशा में इस वर्ष योग 365, योग 365 की पहल को भी आगे बढ़ाया गया है। इसके तहत 100 दिन के ऑनलाइन योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अभूतपूर्व जनभागीदारी देखी गई है। 130 देशों के 30 लाख से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया है। साथियों, जब समाज स्वस्थ होगा तब राष्ट्र भी अधिक सक्षम, अधिक समृद्ध और आत्मविश्वासी बनेगा। मैं इसके लिए मैं सबके लिए कामना करता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: That was the Honourable Prime Minister Sri Narendra Modi addressing the gathering at Red Road, Calcutta, on the occasion of the International Day of Yoga 2026. And lakhs of yoga enthusiasts have assembled here at the Red Road, Neelam, and everyone is looking forward to the Honourable Prime Minister, who will lead in the day's yoga आसना सेलिब्रेशंस हियर टुडे।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी विशाल जन समूह को संबोधित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता से स्वागत का उल्लेख किया, साथ ही महर्षि अरविंद को भी याद किया। और महर्षि अरविंद ने कहा था, हमारा पूरा जीवन योग है, हमें इसका बोध हो या न हो, ये हमें फिर से याद दिलाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि योग से हम ऊर्जावान रह सकते हैं, योग सबको जोड़ता है और दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता है। योग से विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। हम आपको बताएं, ये जो विशाल जन समूह है, जहां जहां तक रेड रोड पर नजर जा रही है वहां योग साधक बैठे हैं और योग के प्रिंट वाली टी शर्ट्स पहनकर पूरी तरह से तैयार हैं, रंग बिरंगे मैट्स पर बैठे हैं अनुशासित रूप से। माननीय प्रधानमंत्री जी अब स्वयं योग कर पूरे देश का और इस योग वाली टी शर्ट पहनी है और साथ ही आपने बाटिक प्रिंट वाला एक स्टोल भी धारण किया है जिस पर कमल का फूल दमक रहा है। और योग साधक बेहद उत्साहित इस समय नजर आ रहे हैं क्योंकि स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी को वो योगाभ्यास करते हुए देखेंगे और सामूहिक योगाभ्यास का क्रम यहां पर शुरू होगा। एक एक कर आसन किए जाएंगे और हम सभी जानते हैं कि योग के जो आसन है वो न केवल शारीरिक रूप से हमें लाभ पहुंचाते हैं बल्कि वो मानसिक रूप से भी हमें बेहद शांत करते हैं, संतुलित करते हैं और आत्मिक रूप से भी हमें प्रकृति के साथ जोड़ते हैं। योग यानी शरीर का मन से जुड़ना और मन का आत्मा से, फिर आत्मा का प्रकृति से जुड़ना।
1: Yes, and the Honorable Prime Minister will be shortly arriving at the venue where he will be leading the countrymen in performing the yoga asanas here at the iconic Red Road. And as you rightly mentioned, Neelam, that the Honorable Prime Minister today made us all remember about the uniqueness of yoga.
2: Ji, aur is samay यहाँ पर सामूहिक प्रार्थना की जा रही है। ये हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी खूबसूरती कि हम विश्व शांति की कामना करते हैं, हम प्रार्थना के साथ किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत

0: करते हैं। इस वक्त जितने भी योग साधक हैं, सभी अपने अपने स्थान पर सुखासन में बैठे हुए हैं। नमस्कार मुद्रा में सभी के हाथ जुड़े हुए हैं और प्रार्थना इस समय यहाँ पर की जा रही है। हमारी संस्कृति जिसमें विश्व शांति की कामना है, साथ ही हम जड़ चेतन की शांति की कामना भी करते हैं, प्राकृतिक तत्वों की शांति की कामना करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम सब एक ही हैं।
1: धीरे धीरे दोनों आंखों को खोलिए, आस्ते आस्ते दोनों चौके खुलून, दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए, दोनों हाथ के स्वाभाविक अवस्था नहीं आसुन, जिस स्थान पर आप बैठे उस स्थान पे खड़े हो जाइए, निजर जाएगा।
0: मंच से निर्देश दिए जा रहे हैं,
1: हम सब
0: और योग साधक उन निर्देशों का पालन करते हुए अपने अपने स्थान पर योगाभ्यास शुरू कर रहे हैं। पंक्तिबद्ध तरीके से मैट्स बिछाए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन अब हो रहा है। योग साधकों के बीच

0: मंच से निर्देश दिए जा रहे हैं और योग साधक उन निर्देशों का पालन करते हुए अपने अपने स्थान पर योगाभ्यास शुरू कर रहे हैं। पंक्तिबद्ध तरीके से मैट्स बिछाए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन अब हो रहा है। योग साधकों के बीच
1: एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज जस्ट अराइव्ड and he will be going to the designated area and he has just arrived there and he will be performing the asanas from here and he is flanked by ordinary people from all walks of life here at the Red Road and we can see that the officials are now ready for the International Day of Yoga 2026 main celebrations at Red Road, Kolkata.
0: माँ काली का आशीर्वाद लिए स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसी विभूतियों का दर्शन इस भूमि में है। सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक विरासत है ये हमारे योगियों की, हमारे मुनियों की। विशेष तैयारियों के साथ आज यहाँ योगाभ्यास किया जा रहा है और इस समय ग्रीवा चालन का अभ्यास यहाँ पर किया जा रहा है। और जब हमारे यहाँ पर योग साधक सभी इस कॉमन प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं तो मैं प्रतिमा जी आपसे जानना चाहूँगी, ग्रीवा चालन इस समय हो रहा है, आप हमें इसका लाभ बताएं।
2: जी, ग्रीवा चालन जो है वो मानसिक लाभ भी देता है और साथ ही शारीरिक लाभ भी देता है। मानसिक लाभों की बात की जाए तो वर्तमान समय में जो तनाव से सभी लोग गुजर रहे हैं उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है।
0: जी,
2: साथ ही जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो उसको भी प्रिवेंट करता है और साथ में इसको के थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स भी हैं। और जितने भी ये आसन ग्रीवा संचालन में किए जा रहे हैं ये सभी के सभी हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करते हैं।
0: जी,
2: और इसके अलावा जो और भी बेनिफिट्स हैं वो हमारे पूरे संपूर्ण जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं, उसके लिए भी फायदेमंद है क्योंकि सारी जो भी क्रियाकलाप है हमारे दैनिक वो हम अपने ब्रेन के कारण ही संपन्न कर पाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। साथ ही हमारे जो हेड का, सिर का वेट है उससे रिलेटेड जो हमारी मसल्स, आपने देखा होगा जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी गर्दन हिलना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए भी ये प्रिवेंट करता है, मसल्स को स्ट्रेंथन करता है।
0: जी, यानी हम नॉर्मल एक्सरसाइज करते हुए जिसे एक हल्का फुल्का वार्म अप मानते हैं उसके बहुत सारे लाभ है, ये हमें आपने अभी बताया। हम श्रोताओं को बताएं कि गर्दन को धीरे धीरे दाएं बाएं करना, ऊपर नीचे करना, ये ग्रीवा संचालन में आता है। ग्रीवा चालन इस आसन का नाम है और सूक्ष्म व्यायाम इन्हें कहा जाता है,
2: सूक्ष्म यौगिक अभ्यासों में से।
0: जी, और यहाँ पर सभी निर्देशों का पालन करते हुए हम देख पा रहे हैं कि जो योग साधक हैं उनके बीच माननीय मंत्रीगण तो है ही, गणमान्य अतिथि हैं और साथ ही भारत में इस समय जो विदेशी मौजूद हैं हमारे वो अतिथि भी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने हैं।
1: Guruji, Munish Naji, we'd also like to know from you about the importance of the beginning of this asana.
3: Yes, actually, asan ko hum is tarah se samjhe ki seat of awareness. हमारी चेतना हमारे शरीर को फॉलो करती है, हम चित्त से काया की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो ग्रीवासन है इसमें हम क्या होता है कि हमारी जो चेतना है, हमारी जो शरीर को चलाती है सूक्ष्म रूप से, ये जागृत होती है और उसकी आसन वहां पे अवेलेबल हो जाती है। मतलब उसकी इंटेंशन, उसकी पहुंच, उसकी सेंसेशन आत्मा की और चेतना की, ये यहाँ से शुरू होती है और ये बहुत ही बहुत ही फायदेमंद है जब हम आसन शुरू करते हैं तो।
0: जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी मुनेश सिन्हा जी कि एक आध्यात्मिक गुरु के दृष्टिकोण से आप हमें बताएं योग का वास्तविक और गहरा अर्थ क्या है अध्यात्म में।
3: योग पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्म, पूरा विश्व, पूरा जगत एक यौगिक स्थिति को जी रहा होता है, बस जानता नहीं है, है ना। अगर हम कहते हैं जब हम अपने अंदर के असूक्ष्म जो हमारी जो अव्यक्त स्वरूप है उससे जब हम जुड़ जाते हैं

0: तो हम व्यक्त हो जाते हैं, इसीलिए व्यक्ति कहा जाता है, है ना, जितने लोग हैं उनको व्यक्ति कहा जाता है। इसलिए व्यक्ति कहा जाता है कि वो अव्यक्त को व्यक्त कर रहे हैं। तो अव्यक्त को व्यक्त करने की जो प्रोसेस है, आप जब भी हम योग करते हैं, अपने स्वयं से जुड़ते हैं, किससे जुड़ रहे होते हैं, जोड़ कौन रहा होता है, हमारी चेतना, हमारी चेतना हमारी तीनों शरीर को अलाइन कर रहा होता है, हमारा स्थूल शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा कारण शरीर। जब हम इन तीनों को अलाइन करते हैं, जब हम तीनों के साथ जुड़ जाते हैं, तो अवेयरर ऑफ द अवेयरनेस, एक्सपीरियंसर ऑफ द एक्सपीरियंस, ये हमें जो हमारी अव्यक्त स्वरूप है वो जागृत होनी शुरू हो जाती है। फिर उसका प्रेजेंस हमारे टोटालिटी पर रिफ्लेक्ट होना शुरू होता है। आप चलते फिरते उठते बैठते आप यौगिक एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, इससे कलेक्टिव कॉन्शसनेस रेज होती है, प्रकृति की जागृति होती है। और आज इस पूरे विश्व में जिस भी हम संघर्ष से जुड़ रहे हैं, इसका मतलब ही है कि हम योग से बहुत दूर हो गए हैं, हमारी कलेक्टिव कॉन्शसनेस हमसे बहुत दूर हो गई है। आज इस पूरे समाज को, इस पूरी जगत को, इस पूरे वातावरण को योग की बहुत बहुत बहुत जरूरत है।
1: जी, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि आज विश्व की आवश्यकता है योग, तो इस समय यहाँ पर स्कंध चालन का अभ्यास किया जा रहा है। प्रतिमा जी, आपसे जानना चाहेंगे इसके लाभ क्या हैं?
2: स्कंध चालन जो है ये पूरा थोरेसिक कैविटी पर काम करता है, और थोरेसिक कैविटी जो है उसके अंदर हम सभी को पता है कि लंग्स सिचुएटेड होते हैं, और जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं उधर काम हो रहा होता है, और लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी काम करता है, और बहुत सारे अन्य बेनिफिट्स भी इसके होते हैं।
1: जी, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर उम्र के योग साधक उपस्थित हैं, युवा भी हैं तो प्रौढ़ भी नजर आ रहे हैं इस विशाल जनसमूह में। और यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो कि योग को एक विषय के रूप में पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि योग जो है, अगर हम कहते हैं कि हमारी जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए, तो योग में करियर भी है। और ये हम प्रतिमा जी को देखकर यहाँ समझ सकते हैं कि आपने अलग अलग संस्थानों में कार्य किया है, योग को बढ़ाया है, विभिन्न पदों पर आप रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी प्रतिमा जी, योग में जो करियर है उसके क्या ऑप्शंस हैं हमारे युवाओं के लिए, आप बताएं।
2: योग में करियर के ऐसे जो ऑप्शंस हैं वो डिग्रीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसमें कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जो हमारे यहाँ से भी चलाए जाते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, एमएससी है, एमए है और पीएचडी है
1: जी।
2: तो इसमें जिस तरह की आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी उस तरह से आपका करियर आप डिसाइड कर सकते हैं, वेलनेस इंस्ट्रक्टर के रूप में और योगा इंस्ट्रक्टर के रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, योगा थेरेपिस्ट के रूप में, वेलनेस कोच के रूप में, योगासन कोच के रूप में आदि।
1: जी, मैं गुरु मुनेश सिन्हा जी आपसे जानना चाहूंगी, युवाओं में आजकल तनाव, अवसाद और अकेलापन बहुत बढ़ गया है, जीवन शैली का हिस्सा होता जा रहा है अकेले रहना, योग और ध्यान उनके इस आंतरिक खालीपन को भरने में कैसे मदद कर सकता है?
0: बहुत बढ़िया। एक्चुअली क्या है कि जैसे जैसे हम सत्य से दूर हो जाते हैं
1: जी,
0: तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। जैसे कि आप अपने घर से जब दूर हो जाते हैं तो आप घर वापस आने की सोचते हैं, जितने हम घर से दूर चले जाएंगे हम उतने स्ट्रेस में रहना शुरू करेंगे
1: जी।
0: तो आज पूरी दुनिया की ये जो हालत है, हम अपने ही मूल स्वरूप से, अपने ही सोर्स से, अपने ही घर से, अपने ही कहते हैं अस्तित्व से इतने दूर चले आए हैं कि अब हमें वापस आने के लिए भी एक लंबी दूरी की तय करनी पड़ेगी। कहते हैं जब यू टर्न होता है, यू टर्न आप लेना चाहते हैं, आपकी जीवन की स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि आप यू टर्न लेते लेते भी कई किलोमीटर आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए आज के युवा को खास करके ये मानना होगा, जानना होगा कि उसकी सच्चाई क्या है, उसके व्यक्तित्व की सच्चाई क्या है, उसके अस्तित्व की सच्चाई क्या है। जब हम अपने सत्य से जुड़ जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे सोल की तरफ, हमारे टोटालिटी की तरफ जुड़ जाता है। आज देखना कि सत्य और सत्य में फर्क है। सत्य सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन पूरे विश्व का सत्य एक ही होता है
1: जी। Yes, और इस समय यहाँ पर ताड़ासन का अभ्यास किया जा रहा है, दोनों हथेलियों को आपस में मिलाकर ऊपर की ओर दोनों हाथ उठाए गए और अपने पंजों

0: पर सभी सीधे खड़े हुए। संतुलन में तो ये आसन मदद करता ही है, लेकिन साथ ही हमारी जो मेरुदंड है उसे भी एकदम सीधा कर देता है। और ताड़ के पेड़ की तरह हम सीधे खड़े हो तो ताड़ासन कहा जाता है, और बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए ये बेहद फायदेमंद है। प्रतिमा जी सही कहा मैंने?
1: बिल्कुल 100% आप सही कह रहे हैं जी। एडोलेसेंट स्टेज वालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये आसन
0: जी।
2: यस, एंड एज यू वर मेंशनिंग नीलम दैट टुडे इज द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, एंड द थीम ऑफ दिस ईयर्स इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज योगा फॉर हेल्दी एजिंग, एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो मेंशनड इन हिज स्पीच दैट इन द 1920s Paramhams Yoganand set up the yoga center in Kolkata and also at other places, and today the popularity of yoga has spread far and wide. In the 132nd episode of Mann Ki Baat, the Honorable Prime Minister has said that the attraction of yoga is rising across the world, and he also highlighted the work of Mr. Almis in popularizing yoga in Djibouti, Africa through his Arvind Yoga Center. Similarly, there are many such yoga centers now even in South America. So the popularity of this gift of India, this gift of healthy life for everyone, is indeed a gift for humanity by India to the world.
0: जी, यहां पर अभी पादहस्तासन का अभ्यास किया गया और उसके बाद अर्धचक्रासन का अभ्यास अभी किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि जमीन पर जब पीठ के बल लेटकर हम पैर और हाथों के बल अपने पूरे शरीर को ऊपर उठाते हैं तो चक्रासन होता है, लेकिन जब खड़े होकर हम केवल थोड़ा सा झुकते हैं पीछे की तरफ तो अर्धचक्रासन है, हमारे मेरुदंड को लचीला बनाने के लिए। और जैसा कि अभी कौशिक जी ने कहा कि ये भारत का एक अनुपम उपहार है विश्व को। हम अब तक गर्व करते हैं कि हमने दुनिया को शून्य दिया है, हमारा दर्शन विश्व में अलग अलग देशों को आगे बढ़ने में प्रेरणा देता रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से, उनके नेतृत्व से और उनकी प्रेरणा से अब हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने दुनिया को योग भी दिया है और अब ये कागजों में भी दर्ज हो चुका है, जिसे कि यूनेस्को और यूएन ने भी माना है। यहां पर अभी त्रिकोणासन का अभ्यास होता हुआ त्रिकोण जैसी आकृति बनाई जा रही है शरीर से। प्रतिमा जी, त्रिकोणासन के लाभ क्या क्या हैं?
1: ये खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यासों में शामिल है। ये घुटने और थाई मसल्स और साइड का जो फैट होता है और मसल्स होते हैं वहाँ काम करता है, साइड फैट को भी रिड्यूस करता है। साथ में जो स्पाइन है, स्पाइन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, और जो गर्दन की नर्व्स हैं उनको भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है, मसल्स को भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है। और ये इवन आईज के लिए भी बेनिफिशियल आसन कहा जाता है।
0: ये मेरे लिए भी चौंकने वाली बात है कि त्रिकोणासन से आंखों को लाभ होता है, क्योंकि मैं भी बचपन से योगाभ्यास करती आ रही हूँ, लेकिन नई जानकारी ये मुझे आपसे मिली है।
1: और ये साइटिका वाले लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल आसन होता है
0: जी। और हम यहाँ देख रहे हैं कि बेहद मनोयोग से सभी योग साधक जो हैं वो निर्देशों का पालन करते हुए एक के बाद एक आसन कर रहे हैं। यहाँ मंच से निर्देश दिए जा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति इन योग साधकों के बीच है, सबसे बड़ी प्रेरणा यही है। और गुरु मुनेश जी, मैं तो ये सोच रही हूँ कि जो साधक माननीय प्रधानमंत्री जी के नज़दीक बैठकर योग कर रहे हैं, जीवन भर की एक सुखद स्मृति उनके पास है, और अब भला कोई योग से दूर कैसे हो सकता है जब माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं प्रेरित करें। और इस समय सभी योग साधकों के बीच आत्मीय भाव से माननीय प्रधानमंत्री जी चलते हुए और सभी के नज़दीक से होकर गुजर रहे हैं, सबको देख रहे हैं और प्रेरणा दे रहे हैं। और अभ्यर्थी भी हम देख रहे हैं कि बेहद उत्साहित दंडासन में इस समय सभी बैठे हैं, मेरुदंड को एकदम सीधा करके। और अब दंडासन से भद्रासन में सभी योग साधक।
2: And we can also see Neelam, and the Honorable Prime Minister is going to many enthusiasts and volunteers who have come here, and he is interacting with them, and he is just pepping them up. This shows that how much he cares for the

0: common people of this country. And this is, as you rightly mentioned, indeed a moment that everyone will cherish, and every person with whom the Honorable Prime Minister is interacting will carry this memory with him or with her forever in their lifetime.
1: जी बिल्कुल. और ये जो आसन है इनके अगर हम लाभ की बात करें तो हर आसन का विशेष लाभ है. वैसे तो कहा जाता है कि योग में अगर आप सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो सर से लेकर पांव तक हमें लाभ उसके प्राप्त होते हैं. लेकिन फिर भी शरीर के विभिन्न अंगों के लिए अलग अलग आसन हैं. और यहाँ हम देख रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत से भी प्रतिनिधि उपस्थित हैं, आमंत्रित अतिथि उपस्थित हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हुए. और सभी अपने अपने स्थान पर, निर्दिष्ट स्थान पर बैठकर योग कर रहे हैं निर्देशों का पालन करते हुए. अब धीरे धीरे वज्रासन की स्थिति में सभी आए हैं. एक ऐसा आसन जो हमारे पाचन तंत्र को बेहद तेज कर देता है और कहा जाता है कि हमारे पेट को वज्र के समान मजबूत कर देता है. यानी हम जो भी खाएं वो पच जाए. और प्रतिमा जी, जहां तक मेरी जानकारी है, ये एक इकलौता आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं.
2: बिल्कुल 100% ये ही एक ऐसा आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद करते हैं. और ये हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एब्डोमिनल रीजन में इंक्रीज करता है, इसलिए वो डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज करता है. और जो हमारी पंचवायु कही गई है, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, इन वायुओं में से जो समान वायु है उस पर विशेष रूप से काम करता है. तो डाइजेस्टिव सिस्टम डेफिनेटली इंप्रूव होता है. साथ में हमारी जो स्पाइन है वो स्पाइन अलाइंड होती है.
1: जी. और अब वज्रासन के बाद अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास यहां पर किया जा रहा है. माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं सभी अभ्यर्थियों के बीच से वो जा भी रहे हैं. और अभी हमने देखा कि किस प्रकार से एक योग साधक की उन्होंने मदद की है, उसकी जो स्थिति है उसे ठीक किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हाथों की स्थिति को ठीक किया है. और सभी को प्रेरित करते हुए स्वयं उनके बीच में यहाँ पर ये बोलना गलत नहीं होगा कि जैसे हम अपने गुरु के निर्देश का पालन करते हैं, उनके सामने योगाभ्यास करते हैं, जैसे हमारे ट्रेनर्स होते हैं या हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग हमें कुछ सिखाते हैं, उसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे परिजनों की तरह एक शिक्षक की नजर से सभी को देखते हुए और सभी को वो सही तरीके से कैसे हमें आसन करना है ये भी बताते हुए बेहद सुंदर ये भाव, बेहद सुंदर ये दृश्य. कौशिक जी.
0: Yes, absolutely. And as we mentioned earlier also, the Honorable Prime Minister taking keen interest, especially among the teenagers and youngsters who are present here, and just guiding them how to do the asanas in the correct manner. And this is just as you rightly mentioned, how an elder of the family takes care of the youngsters. The Honorable Prime Minister is doing absolutely just that.
1: जी, and अब now about this asana, अभ्यास किया जा रहा है शशकासन का. खरगोश की स्थिति में हम आते हैं जब हम शशकासन करते हैं. और यहाँ पर जब भी बैक बेंडिंग के आसन किए जाते हैं उसके बाद, शशकासन करने के बाद फॉरवर्ड बेंडिंग करके तुरंत बैलेंस किया जाता है. और यही है योग की बेहद सुंदर अनुभूति कि हमें वो संतुलन सिखाता है. और अब यहाँ पर उत्तान मंडुकासन का अभ्यास किया जाएगा सभी इस आसन की मुद्रा में आते हुए. उत्तान मंडुकासन, प्रतिमा जी इस आसन के बारे में आप हमें बताएं.
2: जैसे कि अभी आपने कहा कि शशांक आसन जो किया जाता है, शशांक आसन भी बोलते हैं उसको, उसके बाद उत्तान मंडुकासन. शशांक आसन जो है वो स्ट्रेस को रिमूव करने का काम करता है और इस पर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी हैं. उसके जस्ट बाद जो काउंटर पोस्चर किया जाता है वो बैठकर किया जाने वाला उत्तान मंडुकासन, ये स्पेशली लेडीज़ के लिए, फीमेल्स के लोअर बॉडी पार्ट्स के लिए, इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बेनिफिशियल होता है. साथ में आप देख रहे हैं कि जो बॉडी अलाइनमेंट है वो ऊपर की तरफ एल्बोज का डायरेक्शन रहता है, तो ये थोरेसिक कैविटी पर भी काम करता है. साथ में मन को भी शांत करता है और हमारे घुटनों के लिए और जो बटक्स हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल होता है. एंड नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं, साथ में मन को भी शांत करने वाला आसन है ये.
1: जी. और अगर हम अपने शरीर को थोड़ा समझने का प्रयास करें तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी तनाव होता है, हम किसी ऐसी परिस्थिति से

0: कर रहे होते हैं जो हमारे लिए जटिल है, हमारे लिए कठिन है, तो हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में स्ट्रेस जो है वो इकट्ठा हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता और बाद में किसी ना किसी बीमारी के रूप में वो सामने आता है। तो योग एक ऐसी स्थिति जिसमें पूरे शरीर का तनाव जो है वो दूर किया जाता है और साथ ही मानसिक तनाव भी दूर किया जाता है।
1: नाउ आई थिंक The enthusiasts are performing Vakrasan.
0: So, जी बिल्कुल, वक्र यानी तिरछा, तो थोड़े टेढ़े होकर हम ये आसन करते हैं जो हमें बिल्कुल सीधा कर देता है। प्रतिमा जी
2: बिल्कुल सही है कि हमें सीधा कर देता है, क्योंकि इस आसन को जो हमारा डायबिटीज है, शुगर जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल आसन है। ये मोड़ कर किए जाने वाले आसनों में से आप देखेंगे तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड से किया जाता है ये, और हमारे जो पैंक्रियाज है और लीवर दोनों के लिए पर प्रेशर क्रिएट करता है। तो ये पूरे हमारे जितने भी डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं उनके लिए ये आसन बहुत फायदेमंद है, इसीलिए इसको डायबिटीज वालों के लिए रामबाण कहा जाता है। साथ में ये आंखों के लिए भी बेनिफिशियल है, गर्दन भी इसमें ट्विस्ट होती है तो पूरी स्पाइन की ट्विस्टिंग करता है ये आसन।
0: और महिलाओं का बहुत इसमें इंटरेस्ट रहता है कि हमारा कटी प्रदेश जो है, हाँ, कमर वाला हिस्सा जो है वो लचीला रहे, पतला रहे, तो ये आसन उसमें बेहद लाभदायक होता है, क्योंकि हमें कॉलेज में बहुत करवाया गया ये आसन
2: और साइड फैट को भी रिड्यूस करता है
0: जी। और यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा कि हमने कहा कि एक शिक्षक की नज़र से सभी को देखते हुए और परखते हुए यहाँ पर एक अभ्यर्थी जो है, योग साधक जो है, उनसे जब ठीक से आसन नहीं हुआ तो
1: जस्ट गाइडिंग देम टू डू द आसन,
0: उन्हें बिल्कुल गाइड कर रहे हैं
1: परफेक्ट मैनर। एंड नाउ प्रतिमा जी, अबाउट दिस पर्टिकुलर आसना, इफ यू कैन शेयर विद आवर लिसनर्स।
2: मकरासन, ये पेट कर किए जाने वाले आसनों का शिथिलीकरण आसन है, और ये इसमें देखेंगे आप जब हम जनरली फीट के बल लेटते हैं, इसमें पेट के बल लेटना होता है, और ये हमारी पूरी जो स्पाइन, अभी तक किए जाने वाले आसनों में जो स्ट्रेच हुई है उसके बेनिफिट को बढ़ाने के लिए किया जाने वाला आसन है, और साथ में जो हमारा लेफ्ट और राइट बॉडी जो पार्ट्स हैं और लोअर लिम और अपर लिम है, इसमें आप देखेंगे हील्स अंदर की तरफ हैं, टोज बाहर की तरफ हैं, तो ये पूरी बॉडी को एक तरह से ट्विस्ट भी कर रहा है और अलाइन भी कर रहा है
0: जी।
2: तो इस आसन के और भी बहुत बेनिफिट्स हैं, साथ में ये जो सर्वाइकल जिन लोगों को होता है उनके लिए ये आसन बहुत फायदेमंद होता है, साथ में जो तनाव मुक्त है वो भी करता है ये
0: जी। और बेहद खूबसूरत बात यह है कि हम जिन आसनों के नाम ले रहे हैं, अर्ध उष्ट्रासन हो या मकर आसन हो जो अभी हो रहा है, ये हम अपने जीव जंतुओं से प्रेरणा लेते हुए ये आसन हमने अपनाए हैं। अगर हम वज्रासन की बात करें तो हमने पत्थर से भी प्रेरणा ली है, हम बात कर रहे हैं वृक्षासन की, ताड़ासन की, तो प्रकृति से प्रेरणा ली है। तो किस तरह से योग ने समाहित किया है अपने आप में पूरे ब्रह्मांड को और प्रेरित किया है हमें कि हम जिसमें जो अच्छाई है उसे लेकर उसका अनुसरण करके स्वयं को बेहतर करते चलें। मकर आसन, मकर यानी मगरमच्छ जिस तरह स्थिति में होता है बिल्कुल सीधा, उस तरह की स्थिति में रहते हुए हम आसन का अभ्यास करते हैं, और अब हम वो आसन कर रहे हैं जिसका नाम है भुजंगासन। यहां पर योग साधक भुजंगासन कर रहे हैं। भुजंग यानी सर्प से तो वैसे ही डरा जाता है, लेकिन हमने उससे भी सीख लिया है कि स्वयं को किस तरह से लचीला रखना है। इसके लाभ डॉक्टर प्रतिमा,
2: भुजंगासन और सर्पासन दो नाम सुने होंगे, ये भुजंगासन, भुजंग मतलब कोबरा पोज, और ये हमारे स्पेशली जो स्पाइन है उस पर काम करता है, और ये कुंडलिनी जागरण से संबंधित आसन है जो ग्रंथों में कहा गया है। साथ ही जो फीमेल्स हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल आसन है, स्पाइन भी फ्लेक्सिबल करता है, शोल्डर्स को भी स्ट्रेंथन करता है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स मसल्स को पर भी काम होता है
0: जी।
2: ये कहा जाए कि ये पूरे शरीर पर काम करता है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, सर्वाइकल वालों के लिए भी ये आसन बेनिफिशियल कहा जाता है। और
3: अभी आप सुन रहे थे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेड रोड कलकत्ता पश्चिम बंगाल में आयोजित 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का सीधा प्रसारण। ये कार्यक्रम हमने आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया। और अब आप सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में

भारत के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

दशहरा अब पूरे देश में अपनी जगह बना चुका है और मुहर्रम यहाँ जिस अनूठे अंदाज में मनाया जाता है उसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। और आज ये शहर मना रहा है 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग भारत की प्राचीन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का अमूल्य उपहार है। ये केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि बारहवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऐतिहासिक और गरिमामय समारोह में मैं चमन सालवार आकाशवाणी जबलपुर की ओर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उप महानिदेशक श्री वलीउल्लाह खान के कुशल निर्देशन और कार्यक्रम प्रमुख श्री श्यामलाल चहलानी और कार्यक्रम अधिकारी श्री विपिन यादव के मार्गदर्शन में आकाशवाणी की जिस क्रिएटिव टीम के माध्यम से ये प्रसारण आप तक पहुँच रहा है उसमें शामिल है वरिष्ठ अभियांत्रिकी सहायक श्री नित्यानंद त्रिपाठी और श्री आशीष पाल, सहायक श्री गुरुराज सिंह ठाकुर और कार्यक्रम अनुसारी श्री नीला बाजपेयी। जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास के इस कार्यक्रम में शामिल हजारों लोग इसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे शामिल हैं। पलक पावड़े बिछाए समारोह की मुख्य अतिथि देश की प्रथम नागरिक और भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वे कब आधारें और इस कार्यक्रम की गरिमा को और ऊंचाई प्रदान करें। मित्रों, संस्कार और संस्कृति का मतलब है शहर जबलपुर, जिसे भूदान आंदोलन के प्रणेता आचार्य विनोबा भावे ने यहाँ के लोगों की शालीनता संयम और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से प्रभावित होकर संस्कारधानी के नाम से विघोषित किया था। यहाँ से प्रदेश के जीवन रेखा माँ नर्मदा समृद्धि लुटाती हुई गुजरती है, जिसका परिणाम है कि रेवा के हर शंकर को शंकर का प्रतिरूप माना जाता है। पतित पावनी नर्मदा के तट पर बसा जबलपुर आस्था और भक्ति की नगरी है। ये शहर न सिर्फ पर्व त्योहारों को मनाता है वरन उन्हें जीता भी है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उस पर्व त्योहार को मनाने वाले शहर में कितने हैं, बस ये शहर उस रंग में खुद को रंग लेता है। अमन चैन और इंसानियत हर धर्म का मर्म है, जिसके बिना त्योहार और पर्व

रस्म अदायगी बनकर रह जाते हैं। जबलपुर एक ऐसा शहर है जो समय के साथ चलते हुए भी अपनी संस्कृति और परंपराओं को संजोकर रखे हुए है। यहाँ का दशहरा अब पूरे देश में अपनी जगह बना चुका है और मुहर्रम यहाँ जिस अनूठे अंदाज में मनाया जाता है उसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। और आज ये शहर मना रहा है 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग भारत की प्राचीन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का अमूल्य उपहार है। ये केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि शरीर मन और आत्मा के संतुलन का विज्ञान है। योग संपूर्ण जीवन शैली को परिष्कृत करने की विधा का नाम है। हजारों वर्षों से योग भारतीय पद्धति का अभिन्न अंग रहा है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने का श्रेय जाता है देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में अपने संबोधन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को अभूतपूर्व समर्थन मिला और 177 देशों ने इस प्रस्ताव का सह प्रायोजन किया, जो संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में सबसे अधिक समर्थित प्रस्तावों में से एक है। और अब हम सारे लोग सावधान की मुद्रा में खड़े होंगे इस पावन गीत के लिए।

0: राष्ट्रगान देश की अस्मिता और गरिमा का पर्याय है और ये पावन ध्वनि हम जहाँ पर भी हैं, जिस हालत में हैं, अगर हमारे कानों तक पहुँचती है तो हमें सावधान की मुद्रा में खड़े होकर उसे सम्मान देना चाहिए, क्योंकि ये देश की गरिमा और उसके सम्मान का पर्याय है। समारोह स्थल पर माननीय राष्ट्रपति महोदया का आगमन हो चुका है और समारोह के स्थल के दाहिनी ओर मीडिया को स्थान दिया गया, जिसमें आकाशवाणी की टीम भी है, और मंच के बिल्कुल सामने मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए स्थान आरक्षित है। मुझे दिखाई दे रहे हैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव, उनके बहुत सारे मंत्रिमंडल के सदस्य साथ में ट्रैक सूट में तैयार हैं योगाभ्यास के इस समारोह में और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। आज की भागदौड़ और तनाव भरी जीवन शैली में सेहत को बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है और योग एक ऐसा समाधान है जो हर चुनौती का समाधान लेकर हमारे सामने आता है। योग सिर्फ व्यायाम की पद्धति नहीं वरन पूरी जीवन शैली है, जिसमें मन की शुचिता का भी एक अहम रोल है, अहम भूमिका होती है। और योग के माध्यम से जीवन के बहुत सारे सवाल, जीवन के बहुत सारे तनाव और जीवन की बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन यादव,
1: आज के इस कार्यक्रम की उत्सव मूर्ति महामहिम माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय महामहिम राज्यपाल श्रीमान मंगूभाई पटेल साहब, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, माननीय मंत्री श्रीमान प्रहलाद सिंह पटेल जी, माननीय मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, माननीय मंत्री उच्च शिक्षा श्रीमान इंदर सिंह परमार जी, इस अवसर पर मौजूद सभी माननीय सांसदगण, विधायकगण, महापौर, अन्य गणमान्य अतिथिगण, जबलपुर के प्यारे भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, विश्व भर में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और इस वर्ष की थीम भी योग फॉर हेल्थी एजिंग, हमारे लिए स्वस्थ आयु के लिए योग इस वर्ष की थीम है। वैश्विक कल्याण, वैश्विक शांति, वैश्विक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता योग दिवस प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के सफलतम 12 वर्ष पूर्ण होने पर संयोग है ये 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। इस वर्ष योग दिवस के राष्ट्रीय आयोजन का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगरी कलकत्ता से बंगाल से किया जा रहा है। विश्व भर के लगभग 2500 स्थानों पर 210 से अधिक भारतीय दूतावास इस कार्यक्रम के भागीदार हैं। योग के रूप में भारत ने दुनिया को सौंपा है मानवता के कल्याण का उपहार। योग का अर्थ जोड़ना, भारत ने अपने ज्ञान, विवेक, विचार से सदैव विश्व को जोड़ा है। प्रधानमंत्री जी ने भारत की प्राचीन ऋषि परंपरा, आध्यात्मिक चेतना वैश्विक पटल पर स्थापित कर विश्व को हमारी समृद्ध सनातन संस्कृति से परिचित कराया है। प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस का प्रस्ताव रखा तो इसे रिकॉर्ड 175 से ज़्यादा देशों ने एक साथ ऐतिहासिक समर्थन करके 2015 में पारित कराया था। इस वर्ष दुनिया भर में 30 से 35 करोड़ लोगों ने एक साथ सामूहिक योग सत्रों में भाग लेने का हम सबको इसका एहसास है। मध्यप्रदेश के कोने कोने में यह आयोजन लोगों को योग से जोड़ने का और जागरूक करने के लिए हर घर योग अभियान सफलतापूर्वक संचालित किया गया है। और वैसे तो योग के प्रथम व्याख्याता आदिगुरु भगवान शिव को प्रणाम, अष्टांग योग के प्रणेता महर्षि पतंजलि के चरणों में भी प्रणाम, नर्मदे महारानी की यह नगरी संस्कारधानी जबलपुर में वैश्विक चेतना के महाकुंभ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर समस्त योग साधकों और प्रदेशवासियों को अनंत शुभकामनाएं। ये हमारा सौभाग्य है

में लाइए। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे से आगे की ओर झुकाइए। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाइए। श्वास छोड़ते हुए सिर को पीछे ले जाइए। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाइए। दाईं तथा बाईं ओर गर्दन को मोड़ने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए सिर को बीच में लाइए। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए वापस लाइए। पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं ओर ले जाइए। श्वास भरते हुए सिर को बाईं तरफ ले जाइए। पुनः श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आ जाइए। अगला अभ्यास है सिर को, गर्दन को दाहिने से बाएं और बाएं से दाएं घुमाने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की तरफ झुकाइए। श्वास भरते हुए सिर को घड़े की सुई की दिशा में दाहिने से बाईं तरफ घुमाते हुए वापस लाइए। एक बार पुनः इस अभ्यास को दोहरा जाइए। श्वास भरते हुए पुनः इसी अभ्यास को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में भी दो बार दोहरा जाइए। श्वास लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाइए और हाथों को वापस पुनः अपनी जगह पर ले आइए। अगला अभ्यास है स्कंध संचालन का अभ्यास। जिन्हें फ्रोजन शोल्डर की परेशानी है वे इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को बगल से ऊपर उठाइए, हथेलियां बाहर की दिशा में खुली हुई। श्वास छोड़ते हुए हाथ को वापस लाइए। पुनः श्वास लेते हुए भुजाओं को ऊपर उठाइए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में ले आइए। अगला अभ्यास स्कंध चक्र का अभ्यास है, शोल्डर रोटेशन। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को बगल से कंधे की ऊंचाई तक ले आइए। हथेली को पलटकर ऊपर की तरफ करिए। हाथ की उंगलियों को कंधे पर रखिए। कोहनी को सामने से जोड़ लीजिए। श्वास भरते हुए एक शून्य का आकार कोहनी से बनाइए। श्वास भरते हुए कोहनी ऊपर, श्वास छोड़ते हुए कोहनी नीचे। एक बार और इस अभ्यास को दोहरा जाइए। इसी प्रकार घड़ी की विपरीत दिशा में भी दो बार दोहरा जाइए। अगला अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए, भुजाओं को वापस लाइए। अगला अभ्यास है कटी चालन का अभ्यास। इसके लिए अपने पैरों में कंधे के बराबर दूरी बना लीजिए। दोनों हाथों को सीधे रखते हुए सामने की तरफ से उठाइए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाहिनी तरफ घुमाइए। श्वास भरते हुए शरीर को सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ घुमाइए। इसमें आपका दाहिना हाथ की हथेली आपके बाएं हाथ के कंधे के सामने आएगी। श्वास भरते हुए शरीर को सीधा कीजिए। पुनः श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाइए। श्वास भरते हुए शरीर को बीच में लाइए। पुनः श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं, लेफ्ट साइड घुमाइए। श्वास भरते हुए शरीर को सीधा कीजिए। दोनों हाथों को वापस लाते हुए विश्राम कीजिए। अब हम योगासनों के अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। यह प्रोटोकॉल विशेषतर आपके लिए 30 मिनट का बनाया गया है। पहला योगाभ्यास है ताड़ासन। ताड़ासन के लिए अपने पैर को मिला लीजिए या 2 इंच का फासला बना लीजिए। जिन्हें घुटने में दर्द है वे एड़ी ना उठाएं। दोनों हाथों को समस्थिति में नीचे रखें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से कंधे के स्तर तक लाइए।
श्वास छोड़ते हुए उंगलियों को आपस में फंसाते हुए हथेली को बाहर की तरफ उलट लीजिए।

श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। अब एड़ी को उठाते हुए पंजे के बल खड़े हो जाइए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में रहने से शरीर में संतुलन तथा दृढ़ता आती है। श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में वापस आ जाइए और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास पादहस्त आसन का अभ्यास। इसके लिए जिनकी भी कमर में दर्द है वे इसे सावधानी पूर्वक करें। दोनों पैरों में इसी प्रकार 4 इंच का फासला बनाकर रखिए। दोनों हाथों को सामने से ऊपर उठाइए और अच्छा खिंचाव पूरे हाथ में दीजिए। अब श्वास छोड़ते हुए पीठ को खींचते हुए सामने की तरफ से नीचे झुक जाइए और दोनों हाथ को अपने पैर के बगल रखने का प्रयास कीजिए। जितना संभव हो उतना ही कीजिए। यह आसन शरीर की रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है तथा पाचन शक्ति में सुधार करता है। धीरे से श्वास भरते हुए वापस आइए। दोनों हाथों को बगल से वापस लाइए और विश्राम कीजिए। अब हम अर्ध चक्र आसन का अभ्यास करेंगे। अर्ध चक्र आसन, दोनों हाथों को कमर पर रखिए, उंगलियां आगे की तरफ, अंगूठा पीछे। अब अपनी कोहनी को पीठ के पीछे की तरफ ले जाइए और समानांतर करने का प्रयास कीजिए। श्वास भरते हुए गर्दन पीछे ले जाइए और श्वास छोड़ते हुए जितना संभव है पीछे झुकने का प्रयास कीजिए। यह अभ्यास श्वसन क्षमता को बढ़ाता है। श्वास भरते हुए वापस आइए और दोनों हाथों को वापस लाते हुए विश्राम कीजिए। अपने स्थान पर दंड आसन की स्थिति में बैठ जाइए। दंड आसन अर्थात दोनों पैरों को सामने की तरफ फैला लीजिए। दोनों हाथों को नितंब के पास रखिए। कमर गर्दन एक सीध में रहे। यह है दंड आसन। भद्रासन बैठकर करने वाली सीरीज में पहला आसन है भद्र आसन। पैर को मोड़ते हुए दोनों तलवे को मिलाइए। अब श्वास छोड़ते हुए अपने पैर के पंजे को पकड़ लीजिए। एड़ी को शरीर के और पास लाने का प्रयास कीजिए। यह आसन घुटने और नितंब के जोड़ों को स्वस्थ रखता है और महिलाओं के लिए अत्यंत ही लाभदायक है। पुनः धीरे से दंडासन में वापस आइए और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास है वज्र आसन का अभ्यास। अपने पैर को मोड़ते हुए एड़ी के बीच में बैठने का प्रयास कीजिए। दोनों पैर के अंगूठे इस स्थिति में मिले हुए। दोनों हाथ घुटने पर रखिए। कमर गर्दन को सीधा रखिए। यह आसन पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है तथा पैर की मांसपेशियों को भी मजबूती प्रदान करता है। यहीं से अर्ध उष्ट्रासन करेंगे। इसके लिए अपने घुटने पर खड़े हो जाइए। दोनों हाथ कमर के पीछे रखिए। अब श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे और सिर को पीछे की तरफ ले जाइए। कमर के निचले हिस्से से श्वास छोड़ते हुए झुकने का प्रयास कीजिए। यह आसन कमर दर्द को ठीक करने में सहायक है। श्वास भरते हुए पुनः वज्रासन की स्थिति में आ जाइए और विश्राम कीजिए। यहीं से हम शशक आसन का अभ्यास करेंगे। शशक आसन, जिसके घुटने में दर्द है वे आराम से सुखासन की स्थिति में भी बैठकर शरीर आगे ले जाते हुए इस अभ्यास को कर सकते हैं। शशक आसन के लिए दोनों हाथों को, दोनों घुटनों को फैलाते हुए दोनों हाथों को अपने घुटने के बीच में रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए अपने शरीर को आगे इस प्रकार ले जाएंगे कि छाती और ठोड़ी जमीन से लगे हुए रहे। यह आसन तनाव और घबराहट को कम करने में मदद करता है। पुनः इसी स्थिति में बैठे रहें और धीरे से श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। शशक आसन में पैर जिस प्रकार खुले हुए हैं उसी में ही हम उत्तान मंडूक आसन करेंगे। उत्तान मंडूक आसन के लिए श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाइए। दोनों हाथों से अपोजिट

विपरीत कंधे को पकड़िए, दाहिने हाथ से बाएं कंधे को और बाएं हाथ से दाहिने कंधे को। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इसमें बने रहिए। यह आसन पीठ तथा गर्दन की तकलीफ से छुटकारा दिलाता है। श्वास भरते हुए पुनः वापस आइए और पेट के बल लेट जाइए। अब हम पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे, जिसमें पहला आसन है मकर आसन। मकर आसन के लिए अपनी हथेली के ऊपर हथेली को रखिए, ठोड़ी या गाल को टिकाते हुए पीछे दोनों पैरों में उचित दूरी बनाइए और विश्राम कीजिए। यह आसन शरीर और मन को विश्रांति देता है। अगला अभ्यास है भुजंग आसन का अभ्यास। भुजंग आसन के लिए अपने दोनों पैरों को मिला लीजिए। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए आगे की तरफ सीधा खींचिए। श्वास छोड़ते हुए हाथ को मोड़ते हुए हथेली को सीने के पास लाइए। अब श्वास भरते हुए ठोड़ी और छाती को नाभि वाले भाग तक उठा लीजिए। यह आसन श्वसन क्षमता में सुधार लाता है, पेट की चर्बी घटाता है तथा कब्ज से राहत दिलाता है। पुनः श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आकर मकर आसन की स्थिति में विश्राम कीजिए। शलभ आसन, दोनों पैरों को मिला लीजिए। दोनों हाथों को जंघाओं के पास ले जाइए या जंघाओं के नीचे हथेलियां जमीन की तरफ रखते हुए दोनों पैरों को बिना घुटना मोड़े उठाने का प्रयास कीजिए। इसमें ठोड़ी जमीन से लगी हुई रहे। यह आसन साइटिका तथा पीठ दर्द में आराम दिलाता है। धीरे से पैर को वापस लाइए और करवट लेते हुए अपने पीठ के बल किए जाने वाले आसनों की तरफ आ जाइए। इसके लिए करवट लेते हुए अपने पीठ के बल आ जाइए। अगला अभ्यास है सेतु बंध आसन का अभ्यास। जिन्हें गर्दन में दर्द हो वे इस आसन को सावधानी पूर्वक करेंगे। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए एड़ी को नितंब के नजदीक लाइए। अब दोनों हाथों से अपने टखने एंकल जॉइंट को पकड़िए। श्वास भरते हुए पीठ को उठाइए और पुलनुमा आकृति बनाइए। यह आसन अवसाद की रोकथाम में सहायक है। पुनः श्वास छोड़ते हुए वापस आइए और पीठ के बल ही विश्राम कीजिए। उत्तान पाद आसन, पैरों को मिला लीजिए। हाथों को शरीर के बगल सीधा रखिए। हथेलियां जमीन की तरफ रहेंगी। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर 35-45 डिग्री उठाइए। पैर के पंजों को खींच के रखिए। यह श्वसन क्षमता में सुधार लाने में सहायक है। पुनः यहीं से अर्ध हलासन करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों पैर को 90 डिग्री लाइए। कुछ क्षण के लिए सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इसी स्थिति में बने रहिए। यह अभ्यास उच्च रक्तचाप को में सहायक है। यहीं से पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए दोनों घुटनों को मोड़ते हुए जंघाओं को सीने के पास लाइए। दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाते हुए टखनों के नीचे पकड़िए। अपने घुटने के नीचे दोनों हाथों को फंसाते हुए पकड़िए। अब श्वास छोड़ते हुए अपने सर को उठाते हुए ठोड़ी को दोनों घुटनों के बीच में लगाइए। यह आसन पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है। श्वास छोड़ते हुए सर को नीचे रखिए और पैर को वापस ले आइए तथा शवासन में विश्राम कीजिए। शवासन, दोनों पैरों में उचित दूरी, दोनों हाथ की हथेलियां

आसमान की तरफ खुली हुई आंखें कोमलता से बंद, गहरा श्वास लीजिए, धीरे से श्वास छोड़िए, गहरा श्वास लीजिए, धीरे से श्वास छोड़िए। शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति सजगता का भाव रखिए और शिथिल हो जाइए। यह आसन चिंता और तनाव को दूर करने में सहायक है। किए हुए अभ्यास के प्रभावों को महसूस करिए। अब धीरे से दाईं या बाईं करवट लेते हुए अपने स्थान पर उठकर बैठ जाइए। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। दोनों हाथ की ज्ञान मुद्रा बनाइए। दोनों हाथों को अपने घुटने पर रख लीजिए। आंखों को कोमलता से बंद करिए। हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। गहरा लंबा श्वास लीजिए। उदर की मांसपेशियों पर दबाव डालते हुए झटके से श्वास छोड़िए। इसकी 15 आवृत्ति एक साथ करेंगे। गहरा श्वास छोड़ते हुए शांति का अनुभव करिए। कपालभाति का दूसरा चक्र करने के लिए शारीरिक मानसिक रूप से तैयार हो जाइए। पुनः गहरा लंबा श्वास भरिए। प्रारंभ।

गहरा लंबा श्वास छोड़िए। कपालभाति श्वसन अंगों का कार्य सुचारी पूर्वक करवाता है तथा कफ विकारों को दूर करने में मददगार है। अगला अभ्यास प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं, अनुलोम विलोम का अभ्यास। अपने दाहिने हाथ की राइट हैंड की प्राणायाम मुद्रा बना लीजिए। अंगूठे से अपने दाहिनी नासिका को बंद करिए। बाईं नासिका के माध्यम से धीरे धीरे श्वास भरिए। बाईं नासिका लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए दाहिनी नासिका राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे श्वास को छोड़ दीजिए। पुनः राइट नॉस्ट्रिल दाहिने नासिका रंध्र से धीरे धीरे श्वास को भरिए। दाहिना नासिका रंध्र बंद करके बाएं नासा रंध्र से धीरे धीरे श्वास छोड़ दीजिए। एक चक्र और कर जाइए। बाएं नासिका रंध्र से श्वास को भरिए। बाएं नासिका रंध्र को बंद करते हुए दाहिने नासिका रंध्र से श्वास को छोड़िए। पुनः दाहिने नासिका रंध्र से श्वास को भरिए तथा बाएं नासिका रंध्र से श्वास को छोड़िए। यह अभ्यास रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। धीरे से दोनों हाथ को वापस लाइए ज्ञान मुद्रा में और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास शीतली प्राणायाम का अभ्यास है। अपनी जीभ को बाहर निकालते हुए जीभ के माध्यम से श्वास को भरिए। जीभ को ट्यूब का आकार दीजिए। जीभ को अंदर ले जाते हुए नासिका से धीरे धीरे श्वास को छोड़ दीजिए। एक बार और इस अभ्यास को दोहरा जाइए। यह अभ्यास एकाग्रता शक्ति को बढ़ाता है तथा उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए लाभदायक है। भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए धीरे से लंबा गहरा श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए भ्रमर के समान मकार ध्वनि से गुंजन करिए। जिनको शांभवी मुद्रा या षणमुखी मुद्रा आती है वो उस मुद्रा के साथ भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। पुनः श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए भ्रमर के समान मकार ध्वनि कीजिए।

यह प्राणायाम तनाव को दूर करने में सहायक है तथा आंतरिक आनंद की प्राप्ति कराता है। दोनों हाथ को वापस लाइए। ध्यान मुद्रा अर्थात बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर गोदी में रखिए। दोनों हाथों को गोदी में रखिए। धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़िए। आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। कंधे को और शिथिल कर दीजिए। ध्यान योग का सबसे जरूरी अंग है। सारी प्राथमिक प्रक्रियाएं ध्यान के ही लिए हैं। ध्यान आत्मा का अमृत यात्रा है। ध्यान प्रातःकाल स्वर्णिम सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ रही हैं। हमारा रोम रोम सविता का तेज सूख रहा है। प्रखर तेजस्वी प्राणवान हम बन रहे हैं। ध्यान की गहराइयों में जब साधक प्रवेश करता है तो वह अनुभव करने लगता है कि समस्त सृष्टि एक ही चेतना प्रवाहित हो रही है। वह अपना आत्मस्वरूप है जिसे वेद अहम ब्रह्मास्मि, उपनिषद तत्वमसी कहता है। ध्यान की पूर्णता का परिणाम है मन की शांति, हृदय में करुणा तथा आत्मा का प्रकाश। यही भाव अपने मन में लाइए। अपने शुद्ध विचारों के प्रति और सजग होते जाइए। अब अपनी सामान्य श्वास प्रश्वास के प्रति सजग हो जाइए और मन ही मन संकल्प लीजिए, हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्मविकास समाया हुआ है। संकल्प लीजिए, मैं मानव मूल्यों का पालन करते हुए स्वयं के प्रति, समाज के प्रति, विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूँ। देश के विकास के लिए समर्पित हूँ। अब शांति पाठ के लिए अपने दोनों हाथ को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। ओमकार के लिए श्वास को भरिए।

0: दोनों हथेलियों को अपने आंखों पर रखिए। हथेली के अंदर आंखों को धीमे से खोलते हुए दोनों हाथ को वापस ले आइए। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय उज्ज्वलमय हो। धन्यवाद।
1: धन्यवाद। और अब हम बहुत ही आदरपूर्ण निवेदन करते हैं माननीय राष्ट्रपति।

0: महोदया जी से, माननीय राज्यपाल महोदय जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप पुनः मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आज संपूर्ण विश्व में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्सव मनाया जा रहा है और इसी उत्सव को मनाने हेतु आज हमारे बीच माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का मुख्य आतिथ्य। हम पुनः हृदय से स्वागत करते हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का। और जिस प्रकार से हम सभी जानते हैं कि योग की उत्पत्ति भारत की प्राचीन परंपरा है, हजारों वर्षों पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने योग के माध्यम से शरीर मन और आत्मा के संतुलन का मार्ग खोजा, जो आज संपूर्ण विश्व को स्वस्थ और सुखी जीवन का संदेश दे रहा है। योग है भारत की पहचान, स्वस्थ जीवन का है वरदान, तन हो निरोग मन हो प्रसन्न, योग बनाए जीवन धन्य। और जहाँ योग है वहाँ स्वास्थ्य है, जहाँ स्वास्थ्य है वहाँ उत्साह है। योग से जुड़े निरोग रहें, यही जीवन का सच्चा प्रवाह है। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, हमारे बीच योगाभ्यास के माध्यम से हम सभी को प्रेरित किया, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। और अब पुनः माननीय राष्ट्रपति महोदया जी मंच पर पधार रही हैं और आज मध्य प्रदेश के लिए परम सौभाग्य है कि योग दर्शन की प्रणेता महर्षि पतंजलि की कर्मभूमि के रूप में इस पावन धरा का उल्लेखनीय किया जाता है। महर्षि पतंजलि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निकट स्थित है और आज जबलपुर की भूमि एक और ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बन रही है, जब माननीय राष्ट्रपति महोदया जी इस धरती पर योग साधना कर समूचे विश्व के समक्ष भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और मध्य प्रदेश की आध्यात्मिक चेतना का संदेश देगी। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने की विधा नहीं, बल्कि जीवन को संतुलन, संयम और सकारात्मकता से भरने वाली जीवन पद्धति है। जनसेवा, सामाजिक समरसता एवं मानवीय मूल्यों के प्रति सतत समर्पित मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी से अब हम विनम्र निवेदन करते हैं कि आप अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सभी को लाभान्वित करने का कष्ट करें।
1: सभी को नमस्कार। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जबलपुर के कार्यक्रम में उपस्थित भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मंत्रीगण, सांसदगण, महापौर श्री, विधायक श्रीओ, अधिकारीगण, उपस्थित महानुभावों एवं भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, भारत की पहचान को विश्व मंच पर ऊंचाई पर करने वाले हमारे महान धरोहर योग के 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उत्सव में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का उपस्थित से मध्य प्रदेश का जन जन प्रसन्न और आनंदित है। माननीय द्रौपदी मुर्मू जी का प्रदेशवासियों की ओर से श्रद्धापूर्वक हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा मानना है कि योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का साधन नहीं है, बल्कि यह जीवन को संतुलित, सार्थक और आनंदमय मनाने की सरल जीवन पद्धति है। हमारी ज्ञान परंपरा ने हजारों वर्ष पूर्व योग के रूप में स्वस्थ जीवन का जो मार्ग दिखाया था, आज पूरी दुनिया उसे अपना रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मान्यता भारत की प्रचार परंपरा के वैश्विक सम्मान का प्रतीक है। इस अवसर पर भारत की गौरवशाली योग परंपरा को दुनिया में मान्यता और सम्मान दिलाने में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व, वैश्विक दृष्टि और अटूट प्रतिबद्धता के प्रति आभार व्यक्त करना हम सभी का कर्तव्य है। हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन का क्रम बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था है।

0: सभी अवस्थाओं में हम सुखी खुशहाल रहे, इसके लिए हमारे तन और मन का स्वस्थ रहना जरूरी है। प्राणायाम से माध्यम से हम केवल सांस नहीं लेते बल्कि नई ऊर्जा, नया उत्साह और सकारात्मक सोच का भी अपनाते हैं। ध्यान हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है तथा मन की चंचलता को शांत कर आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। प्रतिदिन केवल 20 से 30 मिनट का योग अभ्यास, प्राणायाम और ध्यान हमारे जीवन में प्रभावी और सकारात्मक परिवर्तन लाने का सबसे सरल रास्ता है। आज माननीय राष्ट्रपति महोदय की गरिमामयी उपस्थिति में हम सभी यह संकल्प करें कि योग को केवल एक दिवस के आयोजन तक सीमित नहीं रखेंगे, योग को जीवन भर स्वस्थ रहने, मानसिक संतुलन बनाए रखने और आत्मिक उन्नति प्राप्त करने का माध्यम बनाकर अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करेंगे। आइए एक स्वर में कहें, स्वस्थ तन प्रसन्न मन, योग बने जीवन का धन, यही विकसित और स्वास्थ्य भारत का पथ है। मैं महामहि राष्ट्रपति महोदया का बहुत बहुत आभार मानते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूं। आभार, भारत माता की जय।
1: धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय जी। आज योग के इस दिव्य बेला में जब संपूर्ण वातावरण स्वास्थ्य साधना और सकारात्मक ऊर्जा से अनुप्राणित है, तब हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है। हमें माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। मैं करबद्ध निवेदन करती हूं भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से कि आप अपने अमूल्य मार्गदर्शन और आशीषपूर्ण उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें।
2: बारहवीं योग शिविर के उपस्थिति में मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी सामने बैठे हुए, सरकार में शामिल सभी मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, छात्र छात्रागण, अधिकारीगण, सभी को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई। जबलपुर को विशेष पहचान देने वाले मां नर्मदा की पावन धरती पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। मैं देश विदेश में सक्रिय सभी योग साधकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम यहाँ भारत की उस महान परंपरा का उत्सव मना रहे हैं जिसने मानवता को स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाया। योग विश्व समुदाय को हमारी सांस्कृतिक धरोहर का अमूल्य उपहार है। ये हमारे ऋषियों और मुनियों की हजारों वर्षों की साधना का परिणाम है। हमारे शास्त्रों में शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को जीवन की सफलता का आधार माना गया है। योग उसी संतुलन को स्थापित करने के मार्ग है। योग शब्द का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। ये व्यक्ति को स्वयं से, समाज को प्रकृति से तथा संपूर्ण मानवता को व्यापक विश्व चेतना से जोड़ने का सशक्त माध्यम है। आज विश्व जब अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तब योग मानवता को शांति, संतुलन, समरसता और सामूहिक कल्याण का मार्ग दिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। देवियों और स्वजनों, वर्ष 2014 में भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इस पहल से पिछले 12 वर्षों से विश्व कल्याण के एक सशक्त माध्यम के रूप में योग पद्धति को पहचान और भी मजबूत हुई है। आज विश्व के अनेक देशों में करोड़ों लोग योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना रहे हैं। इसी महीने अहमदाबाद में आयोजित प्रथम वर्ल्ड योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप इसका एक अच्छा उदाहरण है। इस आयोजन पर कई देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिए थे। हम कभी कभी विदेशों में जाते हैं

योगा के बारे में पूछते हैं, क्योंकि योग अभ्यास विदेशों में भी किया जाता है और ये भारत का ही एक प्रेरणा के ये उदाहरण है। मुझे बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ये थीम समाज के वरिष्ठ सदस्यों के स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर एवं गरिमापूर्ण जीवन के लिए योग की उपयोगिता को रेखांकित करती है। आज हम जो जीवन शैली अपनाते हैं वही हमारे आने वाले समय के स्वास्थ्य एवं सुख का आधार बनती है। योग बढ़ती आयु से भी व्यक्ति के सक्रिय और आत्मनिर्भर बने रहने की सहायक होते हैं। मैं बहुत साल हो गया योग अवसर करती हूँ, आज इसीलिए आपके सामने मैं थोड़े देर के लिए योग करने का मुझे मौका मिला, मैं अच्छी तरह करने के लिए प्रयास किए। साथ ही मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन भी प्रदान करता है। देवी और स्वजन जीवन शैली से जुड़े बीमारियां हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है। आज इन बीमारियों की रोकथाम में समग्र चिकित्सा पद्धति का प्रयोग व्यापक रूप से हो रहा है। योग इस समग्र प्राणी का अहम हिस्सा है जो सरल, प्रभावी और सुलभ है। भारत सरकार योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए योग शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा जन जागरण के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रहे हैं। ये प्रसन्नता का विषय है कि अनेक संस्थाएं विश्व स्तर पर लोगों को योग पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना और समस्त मानवता के कल्याण का आधार स्तंभ है। मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ कि योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके वे स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे। इसी के साथ ही मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।

0: राष्ट्रगान के साथ ये कार्यक्रम अब अपनी समाप्ति की ओर अग्रसर है। श्रोताओ, आज योग भारत की सीमाओं से निकलकर विश्वव्यापी जन आंदोलन बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 190 से अधिक देशों में मनाया जाता है, जो मानव स्वास्थ्य, शांति और वैश्विक एकता का अद्भुत प्रतीक है। इस बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के उद्देश्य को लेकर ये दिन मनाया गया और बहुत जल्द परिणाम हमारे सामने होंगे। आकाशवाणी की जिस क्रिएटिव टीम के माध्यम से आज का ये प्रसारण आप तक पहुंचा, उसमें शामिल हैं वरिष्ठ अभियांत्रिकी सहायक श्री नित्यानंद त्रिपाठी और श्री आशीष पाल, सहायक श्री हुबराज सिंह ठाकुर और कार्यक्रम अधिशासी श्री नीलाभ वाजपेयी के साथ मैं चमन सालवार अब आपको आकाशवाणी के स्टूडियोज वापस लिए चलता हूँ।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है
2: अभी आप सुन रहे थे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में भारत के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित किया गया।
3: ये है निमाड़ की सुरीली धड़कन
4: आकाशवाणी खंडवा।
5: ये

0: आकाशवाणी खंडवा से प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके मीत ये गीत।
1: आपके मीत ये गीत।
0: आपके मीत ये गीत कार्यक्रम लेकर हाजिर है रेडियो सखी ममता, स्वीकार करे प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज की फरमाइश हमें भेजी है हमारे पहले श्रोता हैं पांडर कवड़ा यवतमाल महाराष्ट्र से, अनिल बुरांडे, उषा अनुश्री धनश्री बुरांडे, बुलढाणा महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार, बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, सुमेध कुमार, उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रियान, समरीन परवीन, माहिना नूर, इनेपा नगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुलशल शाह, नीति शाह, सुरभि

अश्विन, मंगलाबेन वरकट बकाल बुलढाणा से, नारायण हागे, कमल हागे, दिव्या हागे, जय हागे, ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल, दिव्यांशी, तालुका करजत से इकबाल अहमद बागवान, शमीम अहमद, रफत अहमद, इमरान अहमद और इनके मित्रगण, नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश पाटिल, निवृत्ति क्षीरसागर, संजय चौहान, उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गमहाणकर, सरिता गमहाणकर, प्रणीता, अर्जुन टुक टुक, प्रिंस एकांश गमहाणकर, प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा से आनंद जोशी, तनुजा जोशी, ध्रुवी, फाल्गुनी जोशी, शिव कोठी ओंकारेश्वर से राकेश पप्पू सेन, निशा सेन, सपना, ओम और दारिकाबाई सेन। इसी गीत को सुनना चाहा इंदौर लिम्बोदी से गिरधारीलाल चौधरी, मनीषा भाई चौधरी, कुम्हार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, प्रतीक्षा, प्रथमेश, पांडुरंग कुम्हार, जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े, दिल्ली शहर से अस्मा परवीन, आमना परवीन, वल्ली भाई अंसारी, गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल, जगदीश चौरी। इसी गीत की सुनने की फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता है मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायड़े, वसंतराव भोजने, पीएस नवाड़कर, तुषार क्रांगले, गंगजला सहसरा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजन, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी साक्षी। हरियाणा से ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा, प्रिंस बोर्ड सीताराम कांगड़ा, साहिल कांगड़ा, दुल्लापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरार, नरगिस खातून, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी, निमित आहूजा, धनोरी तेलीवाला से निशार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया आयान, पोटिया कला दुर्ग से हमें ईमेल भेजने वाले श्रोता हैं संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू, छत्तीसगढ़ से प्रभा रानी गोड़िया, आशा जटोलिया, देवशंकर जटोलिया, उमरखेड़ से सिराज खान, बावी खान, कोटवा नारायणपुर बाबी पट्टी वलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी और प्रांजल रॉय, चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला ओम कुमार सुरलकर, बठिंडा पंजाब से परेश प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, अभिजीत, राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामन शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि, प्रतिभा गोंडाने, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये। इसी गीत को सुनने की फरमाइश मिलने वाले श्रोता हैं झांसी से सुमित मोगा, देव राधिका और कबीर मोगा, सहारनपुर से सुरेश पासवान, आशा डुकर, पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, पालदा नाका इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी मंसूरी, मोहम्मद रफी मंसूरी, ग्राम लोहगढ़ ठाकुरवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरपाल, अविराज, कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर येमेकर, प्रमोद और प्रदीप येमेकर। और इसी गीत की फरमाइश हमें भेजने वाले श्रोता है शिव मंदिर मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, बड़ाबम चौक खंडवा से ममता मारकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान, पूजा परिहार, ग्राम बाघमुड़ा कोमाखान से प्रज्ञानंद देवांगन, नंदनी देवांगन, प्रकाश देवांगन। लीजिए पेश है आप सभी की पसंद का फिल्म कुछ कुछ होता है का ये गीत, जिसे आवाज दी उदित नारायण और अलका याग्निक ने, गीत समीर ने लिखा है, धुन बनाई है जतिन ललित ने।

0: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।

0: बैंक के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
2: Awesome!

0: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म माशूक से, जिसे आवाजें दी हैं अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति ने। गीतकार हैं गोहर कानपुरी और संगीतकार श्याम सुरेंदर। और इस गीत को सुनने की फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं आकोट से विनायक बेंडे, मंगला और विजय शुभम, कुंडलेश्वरवार खंडवा से योगेश गुजराती, अभय गुजराती, चांदनी चौक गंढई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू, रविन्द्र रौनक, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से PS नवाकर, निर्मला विशाल नवाकर, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान आशीष मुरहेकर, वंदना नगर इंदौर से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक परी, स्वाति प्रयाग चौधरी। अगले ईमेल हमें भेजने वाले श्रोता हैं किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सनमती पंचोलिया, ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचित वायल कुमार, प्रथमेश देशमुख कुमार, सर्वद देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख, कुमारी हर्षदा देशमुख, महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वकील वाल्मीक धाड़े, नीनाजी धाड़े, स्वप्निल धाड़े, जिर्निया रतनपुर से जितेंद्र सिंह गौड़, नरेंद्र सिंह गौड़, सचिन, प्रीति, भावना, अंतिम, पलक, श्रुति, यशराज सिंह गौड़, देवराज, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। इसी गीत को सुनना चाहा है ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से भेजने वाले हमारे श्रोता हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह, दहीगांव नांदुरा से धोंडू भातुरकर, मंगला भातुरकर, विवेक कुमार भारती, प्रतीक्षा, कोमल, समाधान भातुरकर। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से हमें ईमेल भेजने वाले श्रोता हैं राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी, यवतमाल महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी, शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल मनवर, चेतन मनवर, रोशनी मनवर, बेबी प्रियांशी, तेलंगाना निजामाबाद से ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता हैं शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना। अगला ईमेल हमें भेजा है भेजने वाले श्रोता है नवान शहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, प्रियंका थांदी, प्रशांत थांदी, प्रियम थांदी और इनके परिवार के सदस्य, हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, श्रीमती नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे, उत्तम जगदाड़े, गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवान, हसन नवाज, बाबू अहद, विफ्रा नवाज, बेबी चाहत, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, सुरेत रमेश साहू, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा, दानिश अंसारी, गोलाबाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, सारिमपुर बक्सर से ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता है राज SD अंसारी, आसमा खातून अंसारी। इसी गीत को सुनने की फरमाइश हमें भेजिए दतरंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा ने। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करुण राहुल साहू, चंपा साहू, जमशेदपुर से हमारे श्रोता हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी, MLB रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण खुराना, लव्या, आरव खुराना, SK पप्पी, कल्याण मुंबई से किशोर हिवराले, सुजाता हिवराले, प्रतीक हिवराले, सागर लखनादून मध्य प्रदेश से हमें ईमेल भेजा है भेजने वाले श्रोता हैं लाडला जी चौबे, लाडली चौबे, रिमझिम चौबे, सक्षम चौबे, नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे, सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमस खत्री, रमेश, जामा मस्जिद रोड गोगावा से हाजी इफ्ताक लोलामानी, मोहम्मद उमर कासमी, हाजी अयूब शेरी, हरियाणा से अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा, प्रिंस बोट, सीताराम कांगड़ा, साहिल कांगड़ा, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगनेजा, पूनम गंगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा, कोटवार नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित और हैप्पी राय, दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक, रोशनी और प्रांजल राय। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर लीजिए पेशे फिल्म माशूक का

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी मीत ये गीत एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये है निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा। अब आप सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

माधुरी दीक्षित नेने और अनुपमा राग की आवाजों में गुलाब गैंग फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। चित्रलोक कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं।

उदित नारायण और साथियों की आवाज़ों में ये गीत आप सुन रहे थे। इस गीत को मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा था और आनंद मिलिंद ने इस गीत की धुन बनाई थी। आज फादर्स डे है, पिता दिवस। हमारी संस्कृति में पिता को देवता के समान माना गया है। पिता का स्नेह, पिता का अनुशासन और प्रेरणा हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है।

पूरी राह दिखाता है। पिता के स्नेह और मार्गदर्शन से ही हमारे जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है। यूं तो हर दिन हमें अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ और श्रद्धा समर्पण का भाव होना चाहिए, और यदि कोई विशेष अवसर आए तो उस अवसर को हमें कभी नहीं चूकना चाहिए। इस अवसर का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। और विश्व फादर्स डे हमें अपने पिता के प्रति सम्मान, श्रद्धा और प्रेम व्यक्त करने का ये सुंदर अवसर प्रदान करता है। आइए हम उन सभी पिता को नमन करते हैं जो अपने परिवार की खुशियों के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। यही पिता का स्नेह, यही पिता का प्यार हमारे जीवन को संवारता है, सजाता है, आगे बढ़ाता है।

में प्रेम की दीवानी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान, करीना कपूर और साथियों की आवाजों में। देव कोहली ने इस गीत को लिखा था, अनु मलिक ने इस गीत की धुन बनाई थी।

फिर स्वागत आप सभी का चित्रलोक कार्यक्रम में। श्रेया घोषाल की आवाज में लापता लेडीज फिल्म का ये गाना। ये संगीत है राम संपत का। स्वानंद किरकिरे ने इस गीत को लिखा है।

0: श्रेया घोषाल की आवाज में स्वानंद किरकिरे का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे। राम संपत का संगीत था। लापता लेडीज फिल्म का ये गाना आपने सुना।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: लीजिए अब सुनिए धुरंधर फिल्म का ये गीत।

0: चिंतन। उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
0: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
0: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जैस्मिन सैंडल्स और सतिंदर सतराज की आवाजों में आप धुरंधर फिल्म का गीत सुन रहे थे।
1: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन

श्रेया घोषाल की आवाज़ में ये तूतक तूतक तूतिया फिल्म का गाना है। प्रणव वात्स का ये गीत लिखा है इन्होंने और विशाल मिश्रा का संगीत है।

इस गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत सविता सिंह को। नमस्कार, आपका दिन बहुत शुभ हो, मंगलमय हो और आप सुखी, समृद्ध, ऊर्जावान रहें। इसी के साथ ही एक बार फिर से इजाजत, नमस्कार।

जाने माने अभिनेता टॉम ऑल्टर का 29 सितंबर को निधन हो गया। उन पर केंद्रित विशेष आज के फनकार कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर कर...

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान।
1: सदमा ना पहुंचे कोई मेरे जिस्म-ए-ज़ार पर, आहिस्ता फूल डालना मेरे मजार पर। हर चंद खाक में था मगर ता फलक गया, धोखा है आसमान का मेरे गुबार पर।
0: ये थे थॉमस बीच ऑल्टर, जिनका जन्म 22 जून 1950 को मसूरी उत्तर प्रदेश में हुआ था। दरअसल टॉम ऑल्टर एक अमेरिकन क्रिश्चियन मिशनरीज के बेटे थे। बचपन का उनका समय हिमालयन हिल स्टेशन लैंडोर में बीता था। वैसे आपको बता दें, टॉम ऑल्टर ने हाल ही में एक लेख में बताया था कि उनके जो परदादा थे वो ओहायो यूनाइटेड स्टेट्स से सन 1916 के ज़माने में भारत में आए थे और उसके बाद भारत में उनका परिवार अलग अलग जगहों पर रहा। टॉम ऑल्टर के पिता इलाहाबाद के इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाया करते थे। इसके बाद वो सहारनपुर की एक सेमिनरी में पढ़ाने लगे थे। बाद में उनके माता पिता ने राजपुर में एक आश्रम शुरू किया था जिसका नाम था मसीही ध्यान केंद्र। फिर जबलपुर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर राजपुर में रहने के बाद देहरादून और फिर वो मसूरी में जाकर बस गए।
2: मैं जल्दी से एक बात बताता हूँ, अमर प्रेम दिल्ली में लगी थी, हम मसूरी में थे उस टाइम। तो मसूरी में फिल्में बहुत बाद में लगती हैं, पहले देहरादून आती है, फिर धीरे धीरे मसूरी आ जाती है। तो हम लोग रात की बस पकड़ के मसूरी से रात का सफर करके दिल्ली गए थे ये फिल्म देखने के लिए, अमर प्रेम, मुझको याद है। 3 बजे का शो देखकर फिर थोड़ा सा खाना वाना खा के वापस आकर हमने ये 6 बजे के शो देखा, फिर रात वाली बस से हम वापस आए मसूरी। तो ये अमर प्रेम से इतना हमारा अमर प्रेम था उस टाइम। तो इस फिल्म के भी गाने मतलब एक के बाद एक सब सुपर हिट थे और बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन एक जो गाना है जो जिसका इस फिल्मी दुनिया से एक खास ताल्लुक है, वो मैं पेश करना चाहूँगा। उस गाने का नाम है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।

बचपन से ही चूंकि उत्तर प्रदेश के इलाकों में रहना हुआ तो उनकी हिंदी बहुत ही अच्छी थी। मसूरी के वुडस्टॉक स्कूल में अपनी शुरुआती पढ़ाई करने के बाद टॉम अमेरिका चले गए थे। तब उनकी उम्र 18 साल की थी। एक साल तक वो येल यूनिवर्सिटी में रहे। 19 बरस की उम्र में टॉम टीचर बनकर आ गए जगाधरी हरियाणा में। ये वो दिन थे जब वो टीचर तो थे ही एक स्कूल में जिसका नाम सेंट थॉमस स्कूल था, लेकिन चूंकि स्पोर्ट्स से उनका गहरा लगाव था तो वो वहां बच्चों को क्रिकेट भी सिखाया करते थे। 2.5 बरस तक टॉम ऑल्टर जगाधरी में रहे। इसके बाद वो उसी स्कूल में चले गए जहां उनकी खुद पढ़ाई लिखाई हुई थी, यानी मसूरी का वुडस्टॉक स्कूल। यहां भी उन्होंने थोड़े दिन पढ़ाया। जब वो जगाधरी में रह रहे थे तब हिंदी फिल्मों से उनका ज्यादा लगाव हुआ। इसी दौरान उन्होंने आराधना फिल्म देखी।

0: ये फिल्म उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने एक हफ्ते में 3 बार इसे देख डाला। यहां से टॉम ऑल्टर की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। उन्होंने सोचा कि वो फिल्मों में काम करेंगे। इसके तकरीबन 2 बरस के बाद टॉम ऑल्टर फिल्म्स एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी पुणे में एक्टिंग का डिप्लोमा लेने के लिए आ गए। सन 1972 से 1974 तक वो पुणे में रहे।
1: मैंने सन 72 में फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था और एक्चुअली इस जगत का सफर तब शुरू हुआ था सन 72 से। 2 साल वहाँ रहा मैं पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में, बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा लिया, बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर 74 में 74 में मैं यहाँ आया था, मेरे ख्याल से मई का महीना था, और मैं अपनी मोटरसाइकिल पर पुणे से बॉम्बे आया था। मुझको याद है, अच्छी तरह याद है, जेब में 44 रुपये थे और एक पुरानी मोटरसाइकिल थी मेरे पास, उसके अलावा सपनों के अलावा कुछ नहीं था मेरे पास। ये सपनों का सफर तब शुरू हुआ था। काफ़ी तकलीफें भी झेलनी पड़ी, आज भी झेल रहा हूँ, बट एक संघर्ष जो है ना, ये बहुत जरूरी है हर आदमी के जीवन में, और संघर्ष आज भी जारी है और एक मजेदार संघर्ष है।
0: टॉम ऑल्टर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो राजेश खन्ना बनना चाहते थे, वो एक रोमांटिक हीरो बनना चाहते थे। हालांकि फिल्मों में उनका जो करियर रहा वो बतौर हीरो नहीं बल्कि बतौर चरित्र अभिनेता रहा। सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी।
1: राज कपूर की एक बहुत ही मशहूर फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली, में मैंने मंदाकिनी के ब्रदर का रोल किया था, एक पहाड़ी आदमी है, वो भी हिंदुस्तानी रोल, और ये जुनून से बहुत पहले, लेकिन जिस तरह मैंने कहा लोग जल्दी भूल जाते हैं, खैर कोई बात नहीं, कोई शिकायत नहीं है। वो रोल मुझे बहुत बहुत पसंद आया क्योंकि वो अपनी जान की कुर्बानी देता है अपनी बहन के लिए, तो वो एक रोल था। फिर एक फिल्म आई थी शतरंज के खिलाड़ी मिस्टर सत्यजीत रे की, उसमें मैंने अंग्रेज का रोल किया था ज़रूर, लेकिन उस अंग्रेज को शेर व शायरी में दिलचस्पी थी और हिंदुस्तान से बेहद प्यार था और उर्दू में बात करता था वो, तो वो बहुत ही एक दिलचस्प किरदार था शतरंज के खिलाड़ी में।
2: We are most grateful to His Majesty for granting us this interview.
3: इस मुलाकात के लिए हम सुल्तान आलम के बेहद शुक्रगुजार हैं।
2: We also appreciate his gesture in disarming his soldiers.
3: हम फौजियों की उनकी अच्छी कदर करते हैं।
2: We regard it, we hope rightly, as evidence of his concern to negotiate a peaceful conclusion for the treaty.
3: हम समझते हैं अलीजा अहदनामे के बारे में दोस्ताना बातचीत के लिए तैयार है।
2: I would like, if I may, to add a personal request to his majesty that he please sign this treaty and formalize his abdication.
3: हमारी दरख्वास्त है सुल्तान आलम अहदनामे पर दस्तखत फरमा के अपनी जिम्मेदारियों से दस्तबरदार हो जाएं।
2: His Majesty shall have a maximum of 3 days for deliberation.
3: इस मसले पर फरमाने के लिए सुल्तान आलम को ज्यादा से ज्यादा 3 दिन की मोहलत मिलेगी।
2: After which the company will assume the administration of Oud.
3: बाद इस मुद्दत के कंपनी बहादुर अवध का सारा इंतजाम अपने हाथ में ले लेगी।
2: I hope the king has understood what I've said.
3: हमने जो कुछ कहा है उम्मीद है सुल्तान आलम समझ गए होंगे।
2: What is this? Please tell His Majesty that I have no use for that.
3: ये रेजिडेंट साहब की किसी काम की नहीं है।
4: आप हमारी दस्तार तो ले सकते हैं रेजिडेंट साहब, दस्तखत नहीं ले सकते।
1: और अब जहाँ तक हिंदी या हिंदुस्तानी का सवाल है, मैं तो मेरी पैदाइश तो मसूरी के है, यूपी की है। जिस जमाने में मेरी पैदाइश हुई यूपी के उस इलाके में लोग या तो हिंदुस्तानी में बात करते थे या तो उर्दू में। हिंदी तो उस इलाके में बाद में आई, मैं वेस्टर्न यूपी की बात कर रहा हूँ, मसूरी देहरादून की बात कर रहा हूँ। बचपन में मेरे वालिद साहब उर्दू लिखते भी थे, पढ़ते भी थे, बात भी करते थे उर्दू में, तो शुरू से मेरे अंदर एक बहुत ही एक दिलचस्पी रही, एक शौक रहा उर्दू सीखने का। हिंदी तो हमने स्कूल में सीखी थी। तो मैं जब पुणे आया था सन 72 में फिल्म इंस्टीट्यूट में, मैंने कहा मैं इस शौक को अब मतलब उसको एक अंजाम भी दूँ। मेरे एक दोस्त वहाँ बने मोहम्मद रफीक, तो उन्होंने मुझको उर्दू सिखाना शुरू किया पुणे में 2 साल तक। फिर मैं यहाँ आया तो मेरी खुशनसीबी ये रही कि उस्ताद जालिब साहब से मेरी एक मुलाकात हुई। बहुत जाने माने उस्ताद थे उर्दू के, उनका इंतकाल हुआ कुछ 6-7 साल पहले। तो 5 या 6 साल तक मुसलसल मैं जालिब साहब के साथ उर्दू सीखता रहा। और जालिब साहब के बारे में इस वक्त कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत ही

0: जज्बाती मामला है, लेकिन अगर कुछ हद तक मुझको उर्दू आती है वो सिर्फ जालिब साहब की वजह से। लेकिन उर्दू का शौक मेरे अंदर इसलिए आया क्योंकि मेरे फादर बोलते थे, लिखते थे, पढ़ते थे उर्दू।
1: अच्छा।
0: और उस जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि यूपी के उस इलाके में जहाँ मेरी परवरिश हुई उस जमाने में उर्दू या हिंदुस्तानी जबानें चलती थी, हिंदी बाद में आई। शकील बदाउनी का एक शेर है, अगर वो बहुत ही जाने माने शायर थे, उन्होंने लिखा कि शकील दिल हूँ मैं हूँ मोहब्बतों का राजदान, मुझे फख्र है मेरी शायरी मेरी जिंदगी से जुदा नहीं। यानी कि शायरी और जिंदगी अगर जुदा यानी कि अलग अलग रहे तो तब आदमी शायरी नहीं कर पाता, शायद शायरी लिख पाता लेकिन कर नहीं पाता।
2: आज के इस कार्यक्रम में आप टॉम ऑल्टर की जो रिकॉर्डिंग सुन रही हैं वो बहुत बरस पहले विविध भारती के एक इंटरव्यू के दौरान कही गई बातें हैं।
0: उस तरह से एक और फिल्म का नाम लूंगा मैं जरूर, उसका नाम था चमेली मेम साहब, जिसमें मेरा हीरो का रोल था, वो भी बहुत ही सिंपथेटिक रोमांटिक बहादुर इंसान था वो, तो मुझे वो रोल शायद सबसे ज्यादा पसंद है। वो फिल्म भी पसंद है लेकिन वो रोल मुझे बहुत पसंद है, और वो जो हीरो का रोल था वो मुझको उस फिल्म के अलावा बस और एक फिल्म में मिला था हीरो का रोल, जो कभी कंप्लीट नहीं हुई थी फिल्म। तो मेरी जो तमन्ना थी ना, जो एक मसूरी से लेकर जो मैं तमन्ना लेकर यहाँ बम्बई आया था, उस फिल्म में जाकर वो तमन्ना जो है वो पूरी।
2: फिल्म क्रांति में उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर का रोल किया था।

0: सन 1993 में उन्होंने फिल्म सरदार में काम किया।
1: आज इस मीटिंग में जो फैसले लिए जाएंगे उनका असर सिर्फ इस मुल्क ही पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर होगा। इसलिए मौजूदा हालात को देखते हुए और आप सब लीडरों के साथ बात करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हुकूमत जल्द से जल्द सौंप दी जानी चाहिए आपके हाथ में। हमें पूरी उम्मीद है कि आपके इन फैसलों से पैदा होने वाले हालात को संभालने के लिए आप सब तैयार होंगे।
0: टॉम ऑल्टर न केवल फिल्मों में सक्रिय थे बल्कि बरसों बरस तक वो टेलीविजन के लिए भी काम करते रहे।
2: प्रोफेशनली मैं सबसे पहले सिनेमा से जुड़ गया था क्योंकि उस टाइम में टेलीविजन था लेकिन बस उसकी ज्यादा अहमियत नहीं थी। तो और हम आए थे बम्बई में फिल्मों में काम करने के लिए, टेलीविजन में काम करने के लिए नहीं, या नहीं तो थिएटर में काम करने के लिए। तो सिनेमा से मैं जुड़ गया था और एक सपना था हीरो बनने का फिल्मों में, और कुछ एक छोटी सी हद तक वो सपना साकार भी हुआ। लेकिन आज भी, हालांकि टीवी में बहुत काम करता हूं मैं और टीवी से मुझे कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन आज भी मैं अपने आप को फिल्म आर्टिस्ट मानता हूं। प्रेफरेंस में रखना बहुत मुश्किल है। प्रोफेशनल तौर पे तो टीवी को मैं ज़्यादा पसंद इसलिए करता हूं कि टीवी में एक मुसलसल आपको काम मिलता रहता है, और अगर आपकी सीरियल हिट हो गई तो जिस तरह जुनून हिट हो गया है, 5 या 5.5 साल तक लगातार आप एक ही किरदार को निभा रहे हैं तो बहुत उसमें मज़ा आता है। तो प्रोफेशनली आजकल मैं टीवी को ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन जो एक मज़ा आता है काम करने में, या जब आपकी पिक्चर हिट होके रिलीज़ हो जाती है या रिलीज़ हो

0: हिट हो जाती है, वो जो मजा है जब आपकी पिक्चर हिट हो जाती है और लोग, मतलब बेशुमार लोग थिएटर हॉल में जाते हैं आपकी फिल्म देखने के लिए, तो वो जो मजा है वो सिर्फ सिनेमा में है, वो टीवी में नहीं है। तो उसका एक अलग मजा है फिल्मों का। और जहां तक थिएटर का सवाल है, वो एक नॉन प्रोफेशनल तौर पे मुझे थिएटर बेहद पसंद है, क्योंकि थिएटर में आराम है, फुर्सत है, कोई जल्दी नहीं है, और एक चीज़ को आप बाकायदा 3-4 महीने तक रिहर्सल कर सकते हैं, उसके बाद आप पेश कर सकते हैं, ऑडियंस भी सामने बैठे हैं। तो हर चीज़ का एक अलग पहलू है, हर एक अलग मज़ा है। तो प्रोफेशनली जिस तरह मैंने कहा, शायद प्रेफरेंस मैं टीवी को दूँ, और जहाँ तक मज़े का सवाल है तो शायद प्रेफरेंस को मैं सिनेमा को दूँ, और जहाँ तक पर्सनल एक तसल्ली या सेटिस्फेक्शन का सवाल है, तब मैं शायद प्रेफरेंस दूँ थिएटर को।
1: तो आपने उसे अपने ही साए के घटने बढ़ने से परेशान कर दिया।
2: और क्या करते हुजूर, क्या है कि वहां से निकलने का रास्ता में और कोई मिल नहीं रहा था, और वो बेचारा इतना परेशान था कि उसके दिमाग में इतनी सी भी बात नहीं आ रही थी कि हम उस लाइट को कभी आगे खिसका रहे थे तो कभी पीछे, जिससे उसका साया कभी बढ़ रहा था तो कभी घट रहा था।
3: आपने कभी अपने साये को घटते बढ़ते देखा है?
2: मैडम, हम दूसरों के सायों को नापते रहते हैं, अपनी फिक्र कहाँ। मिस्टर धनराज, आप इतने खामोश क्यों हो गए?
4: नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस
5: आप ये सोच रहे होंगे कि इस केशव कलसी से पहले आपकी मुलाकात क्यों नहीं हुई, क्योंकि अगर होती तो वो जमीन का टुकड़ा आपके हाथों से नहीं जाता।
6: मेरे दोस्त मुझे प्यार से के कहते हैं, काम का कलसी। आप भी मुझे के कहें तो बहुत मुसर्रत हो।
0: और शुरू में मैं ये कहूँ कि मेरी मदर को ये रोल बिल्कुल पसंद नहीं आया, कि वो अपने बेटे को ऐसे रूप में देखना पसंद नहीं करती थी। तो उससे मुझको एक अंदाज़ा मिला कि हाँ, शायद ऐसा हो सकता है कि कैरेक्टर या किरदार जो है वो अपनी निजी ज़िंदगी के ऊपर हावी हो जाए। लेकिन अंत में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये ज़रूर है कि आदमी जब कोई किरदार निभाता है तो वो अपनी निजी ज़िंदगी से कुछ ऐसे पहलू, कुछ ऐसी बातें निकाल कर उस किरदार के अंदर डालने की कोशिश करता है। तो ये ज़रूर है कि केशव कलसी का जो किरदार है, मेरे अंदर जब मैंने वो शुरू किया था कैरेक्टर, तो मेरे अंदर कुछ थोड़ा सा गुस्सा था और एक ज़िद थी मेरे अंदर दिखाने की कि मैं इस तरह का रोल कर सकता हूँ। तो ये थोड़ा सा गुस्सा था, थोड़ी सी ज़िद थी, तो मैंने अपनी ज़िंदगी से ये चीज़ें निकाल कर उस कैरेक्टर के अंदर डाल दी। लेकिन मेरे ख्याल से वो जो कैरेक्टर है वो मेरी निजी ज़िंदगी के ऊपर हावी नहीं हुआ, बल्कि 5.5 साल तक इस कैरेक्टर को निभाते निभाते बीच में कभी कभार ये मुश्किल हुआ कि उस कैरेक्टर के अंदर वही गुस्सा, वही ज़िद, उसको बरकरार रखना मुश्किल हो गया था मेरे लिए 5.5 साल तक। तो बीच में एक बार मैंने उसको थोड़ा सा ढीला भी छोड़ दिया था जानबूझकर, और मुझको लगा कि कोई नोट करेगा नहीं। लेकिन 2-3 लोग मेरे पास आए थे पब्लिक में से, और उनने बाकायदा मुझको गालियां दी कि ये तुमने क्या किया, अचानक तुमने नरम क्यों बना दिया। तब वापस मुझे अपने आप को बिल्कुल कस के रखना पड़ा। तो बहुत ही दिलचस्प रहा ये सफर केशव कलसी के साथ, और मेरे ख्याल से इस सफर से बहुत कुछ सीखने को मिला मुझको।
7: शीलू से टॉम ऑल्टर का बड़ा गहरा लगाव रहा। जैसे कि हमने आपको बताया, टॉम ऑल्टर जब जगाधरी के एक स्कूल में पढ़ाया करते थे, उन दिनों में बच्चों को वो क्रिकेट भी सिखाया करते थे। अगर आप यूट्यूब पर खोजें तो आपको महान सचिन तेंदुलकर का एक बहुत पुराना, लगभग शुरुआती दौर का इंटरव्यू नजर आएगा। वो टॉम ऑल्टर ने ही लिया था। खेलों से अपने जुड़ाव के बारे में टॉम ने हमें बताया था।
0: एक्चुअली खिलाड़ी बनना चाह रहा था, खासकर क्रिकेट का, तो मैं उतना अच्छा खिलाड़ी नहीं था, तो मैं बन नहीं पाया। स्पोर्ट्स में, मतलब शुरू से बचपन से स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, ये यूँ कहना चाहिए कि एक जुनून सवार रहा मेरे ऊपर स्पोर्ट, आज भी है। स्पोर्ट्स से, स्पोर्ट्स की दुनिया से, खिलाड़ियों से बहुत गहरा है मेरा एक रिश्ता रहा है शुरू से बचपन से। क्रिकेट के साथ धीरे धीरे जो है मेरा रिश्ता और गहरा होता जा रहा है, और लेकिन स्कूल में ऐसा कोई खेल, ऐसा कोई स्पोर्ट था ही नहीं जिसमें मैंने हिस्सा नहीं लिया, स्कूल और कॉलेज में दोनों। और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल तक मैंने बास्केटबॉल में भी हिस्सा लिया, तो बास्केटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, क्रॉस कंट्री, इन सारे जो खेल हैं इन सब में मैंने हिस्सा लिया। आजकल मैं खेलता हूँ क्रिकेट, और थोड़ी बहुत रनिंग भी करता हूँ। मैं लिखता भी हूँ स्पोर्ट्स के बारे में, पेपर्स में, मैगजीन्स में स्पोर्ट्स के, मैंने कई प्रोग्राम्स भी बनाए हैं टीवी के लिए, और कमेंट्री भी मैंने दी है। तो मालूम नहीं, स्पोर्ट्स से मुझे एक हमेशा एक प्रेरणा मिलती रहती है कि स्पोर्ट्स जो है हमको बहुत कुछ सिखा सकता है ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी का संघर्ष जो है।

0: किस तरह लड़ना चाहिए वो आदमी स्पोर्ट्स से सीख सकता है। तो इसलिए स्पोर्ट्स ने शुरू से लेकर आज तक मुझको बहुत सहारा दिया है, सुकून भी दिया है, राहत भी दी है और मुझको सिखाया बहुत कुछ है स्पोर्ट्स ने।
1: टॉम ऑल्टर का थिएटर से गहरा लगाव रहा है, इस बारे में उन्होंने बताया।
0: थिएटर में इसलिए मैं करता हूँ, ज्यादातर पैसे के लिए तो मैं करता नहीं हूँ थिएटर। पूरा जो सिलसिला है थिएटर का, एक आपने पहले दोस्तों के साथ प्ले को आपने जांचा, फिर आपने पढ़ा, फिर उसके बाद आपने रिहर्सलें की, रिहर्सलों के अंदर इतनी तब्दीलियां आ जाती हैं हर चीज़ में, फिर आखिरकार एक परफॉर्मेंस भी होता है वो भी ऑडियंस के सामने। तो एक लंबा एक सफ़र है ये थिएटर का, तो मुझे वो सफ़र बेहद पसंद है। वो सफ़र आपको थिएटर इसमें सिनेमा और टीवी में नहीं मिलता है, तो वो मुझे बहुत पसंद है। लोगों के साथ दोस्ती कायम करना, नए रिश्ते पैदा हो जाते हैं रिहर्सल करते करते परफॉर्मेंसेस का, और हर परफॉर्मेंस में कुछ नए रंग आ जाते हैं। तो ये मज़ा है थिएटर का कि आपको फुर्सत मिलती है, एक टाइम मिलता है आपको, एक अरसा पूरा आपको मिल जाता है। जो सिलसिला है थिएटर का, एक आपने पहले दोस्तों के साथ प्ले को आपने जांचा, फिर आपने पढ़ा, फिर उसके बाद आपने रिहर्सलें की, रिहर्सलों के अंदर इतनी तब्दीलियां आ जाती हैं हर चीज़ में, फिर आखिरकार एक परफॉर्मेंस भी होता है वो भी ऑडियंस के सामने। तो एक लंबा एक सफ़र है ये थिएटर का, तो मुझे वो सफ़र बेहद पसंद है। वो सफ़र आपको थिएटर इसमें सिनेमा और टीवी में नहीं मिलता है, तो वो मुझे बहुत पसंद है। लोगों के साथ दोस्ती कायम करना, नए रिश्ते पैदा हो जाते हैं रिहर्सल करते करते परफॉर्मेंसेस का, और हर परफॉर्मेंस में कुछ नए रंग आ जाते हैं। तो ये मज़ा है थिएटर का कि आपको फुर्सत मिलती है, एक टाइम मिलता है आपको, एक अरसा पूरा आपको मिल जाता है। मैंने मेरे ख्याल से 15-20 प्लेस किए हैं बॉम्बे में आके। एक प्ले है जो मैं अपने दो बहुत ही अजीज दोस्तों के साथ किया करता था, नसीरुद्दीन शाह और बेंजामिन गिलानी के साथ। उस प्ले का नाम है वेटिंग फॉर गॉडो। इंग्लिश का प्ले है, बहुत ही कठिन प्ले है समझने के लिए भी और समझाने के लिए भी, लेकिन हम लोगों ने कम से कम 50-60 उसके शोज किए हैं और वो प्ले मुझको बेहद पसंद है, वेटिंग फॉर गॉडो।
1: संगीत में अपनी दिलचस्पी के बारे में टॉम ऑल्टर ने विविध भारती को अपने एक इंटरव्यू में ये बात बताई थी।
0: क्लासिकल संगीत से कोई खास मेरा रिश्ता नहीं रहा है, ना तो हिंदुस्तानी क्लासिकल ना तो इंग्लिश क्लासिकल, लेकिन हाँ पुराने, अब तो खैर पुराने हैं, उस टाइम तो नए थे हमारे लिए, पुराने फिल्मी गीत मुझे बेहद पसंद है। और जहाँ तक इंग्लिश म्यूजिक का संबंध है तो बीटल्स के गाने, फिर ईगल्स के गाने, उससे पहले एक और फोक ग्रुप था पीटर पॉल एंड मैरी, उनके गाने ये मुझे आज तक मतलब बेहद पसंद है। इंडियन म्यूजिक में हाल ही में कुछ पिछले मैं देख रहा हूँ 1-2 साल से, कहीं से मालूम नहीं कहाँ से मेरे अंदर एक क्लासिकल म्यूजिक में एक दिलचस्पी पैदा हुई है जो पहले बिल्कुल नहीं थी मेरे अंदर। अभी हाल ही में मैं भोपाल में था तो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का एक वहाँ पर कार्यक्रम था, तो फर्स्ट टाइम जिंदगी में मैंने ध्यान से बैठ कर किसी एक इस तरह के प्रोग्राम को सुना और मेरी आंखों में तो आंसू आ गए सुनते सुनते। तो शायद इस बुढ़ापे में क्लासिकल म्यूजिक में भी एक दिलचस्पी मेरे अंदर पैदा हो रही है, लेकिन अब तक जो है मेरी इंटरेस्ट रहा है या तो फोक म्यूजिक में या तो पॉपुलर म्यूजिक में, रॉक में उतना इंटरेस्ट नहीं है। तो फिल्मी गाने बस वही हमारे 3 जो सितारे हैं, किशोर जी, रफ़ी साहब और मुकेश जी, उनके गाने तो घंटों तक, क्या मैं दिनों महीनों तक सुन सकता हूँ। मैं सच बताऊं कुछ इसका कारण क्या है मैं बता नहीं सकता हूं, लेकिन आजकल जब गाने मैं सुनता हूं तो मुझको 10 बार सोचना पड़ता कि आवाज़ किसकी है। शायद मेरे अंदर दिलचस्पी कम हो गई या शायद कुछ आवाज़ें जो हैं वो सेम टू सेम होती जा रही हैं, मुश्किल है। मुझको याद है हम आशिकी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे जिसमें फर्स्ट टाइम कुमार शानू ने कुछ गाने पेश किए थे, अब मैंने उनकी आवाज़ पहली बार सुनी थी जब नया नया था वो, तो मैंने प्रोड्यूसर से कहा कि ये जो आदमी है कुमार शानू ये बहुत सक्सेसफुल रहेगा। उस टाइम में कुमार शानू की आवाज़ मुझको बहुत अच्छी लगी। बाकी जो नए नए हैं वो अब क्या बताऊं मैं, कुछ उनकी आवाज़ को पहचानने में मुझको तकलीफ, शायद इसलिए कि मैं पुराने ज़माने में खोया रहता हूँ। ये गीत मुझे इतना पसंद है कि नाम लेते वक्त भी मज़ा आता है। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: बॉम्बे टॉकीज में आइए आज सुनते हैं कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे के फिल्मी गपशप। आइए सुनते हैं इस गपशप का तीसरा भाग।
2: दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी का बॉम्बे टॉकीज में। आज फिर एक बार डांस से जुड़े एक बेहद मकबूल फनकार हमारे बीच हैं, डांस रियलिटी शोज के जज, डांस गुरु।
3: बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में जिला प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। 203 हितग्राहियों को ऋण वितरित किया गया है। इससे कई युवाओं ने अपना कारोबार शुरू कर दूसरों को भी रोजगार देना शुरू किया है। दूसरी तरफ खरीफ सीजन की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। जिले में किसान पिछले साल की तुलना में अधिक मात्रा में खाद खरीद रहे हैं। अब तक करीब 7,000 किसान खाद ले चुके हैं। कृषि क्षेत्र से जुड़ी एक और अच्छी खबर सामने आई है। इस वर्ष समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी निर्धारित लक्ष्य से अधिक हुई है। जिले में 25,000 मीट्रिक टन लक्ष्य के मुकाबले 29,244 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया। अधिकांश किसानों को उनकी उपज का भुगतान भी कर दिया गया है। जल संरक्षण की बात करें तो जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत लाखों जल संरचनाओं और सोकपिट का निर्माण कराया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और स्वसहायता समूहों की महिलाओं ने भी इसमें भागीदारी निभाई है। महिलाओं ने प्लास्टिक बोतलों से ड्रिप इरिगेशन मॉडल बनाकर पानी बचाने की पहल की है। वहीं पीएम स्वनिधि योजना के तहत पात्र स्ट्रीट वेंडरों को जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। जिले को 11,000 से अधिक ऋण प्रकरणों का लक्ष्य मिला है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक नई पहल सामने आई है। कलेक्टर निवास के पास महिला स्वसहायता समूहों के लिए विशेष व्यावसायिक परिसर बनाया जाएगा। करीब 3.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस परिसर में 32 दुकानें होंगी। यहां महिलाएं अपने उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री कर सकेंगी। शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए सरकारी स्कूलों में रियल टाइम ई अटेंडेंस प्रणाली लागू की गई है। शिक्षकों की उपस्थिति अब सीधे ऑनलाइन दर्ज की जा रही है। वहीं साक्षरता के क्षेत्र में भी जिला तेजी से आगे बढ़ रहा है। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत अब तक 1,49,000 से अधिक लोग साक्षर हो चुके हैं। अगले वर्ष मार्च तक जिले को पूर्ण साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए विशेष अभियान लगातार जारी है। स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए जिला चिकित्सालय में अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब बनाई जा रही है। करीब 1.25 करोड़ रुपए की लागत वाली यह लैब अगस्त से शुरू होने की उम्मीद है। यहां मरीजों को एक ही स्थान पर 134 प्रकार की जांच सुविधाएं मिलेंगी। समाज सेवा के क्षेत्र में भी शहडोल के युवाओं ने प्रेरणादायक उदाहरण पेश किया है। श्रीराम रक्तदान समिति के करीब 150 सदस्य पिछले एक दशक से जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। ये टीम अब तक 3,000 यूनिट से अधिक रक्तदान कर चुकी है। जिले की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए ज्ञान भारतम मिशन के तहत जैन मंदिर से प्राप्त प्राचीन अभिलेखों और पांडुलिपियों का पंजीयन पूरा कर लिया गया है। इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आगे जिले के अन्य ऐतिहासिक स्थलों का भी सर्वेक्षण इसी प्रकार से किया जाएगा। शिक्षकों की दक्षता बढ़ाने के लिए MLB कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन बीते दिनों किया गया। इसमें जिले के 30 विद्यालयों के रसायन शास्त्र के शिक्षक शामिल हुए। श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए श्रम विभाग ने नागरिकों से श्रम प्रहरी बनने की अपील की है। जागरूक नागरिक श्रमिकों से जुड़ी समस्याओं और श्रम कानूनों के उल्लंघन की जानकारी विभाग तक पहुंचा सकेंगे। जिले में आकाशीय बिजली गिरने से पिछले 2 दिनों में 3 लोगों की मौत हो गई है। पपौंद क्षेत्र में महुआ बीनने गई 2 युवतियों की बिजली गिरने से जान गई, वहीं पर एक अन्य महिला भी घायल हुई। वहीं गोहपारू क्षेत्र में भी एक युवक की बिजली गिरने से मौत हो गई। और अंत में पुलिस विभाग से जुड़ी खबर। शहडोल जिले में 110 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं। लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ कर्मियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। शहडोल जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। इसमें आज आपने सुनी शहडोल जिले की चिट्ठी। आलेख अरविंद पांडे का था, वाचन था अभिषेक कटियार का, और इसका प्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित जिले की चिट्ठी FM एंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। यह है निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा। प्रस्तुत है बच्चों का मनपसंद कार्यक्रम बाल जगत।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है आज के आपके अपने कार्यक्रम बाल जगत में। बच्चों, आज का प्यारा सा बाल जगत लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी दीदी मोना दफ्तरी। स्वीकार करें हमारा ढेर सारे प्यार के साथ साथ नमस्कार, ढेर सारा प्यार दुलार, साथ ही उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाओं के साथ आज कुछ बातें और कुछ गीत हम आपके साथ साझा करेंगे। बच्चों, आज का दिन 21 जून वर्ष 2026, हम सभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। आपने भी अपनी स्कूल में, कॉलोनी के गार्डन में या फिर अपने घर के आंगन और छत पर आज सुबह योग जरूर किया होगा, हम सब यही समझ रहे हैं। आज का योग दिवस 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और इस वर्ष की थीम है योगा हेल्दी एजिंग, यानी स्वस्थ आयु के लिए योग। यह थीम बच्चों इस बात पर जोर देती है कि योग केवल युवाओं के लिए नहीं बल्कि बढ़ती उम्र में भी बेहतर स्वास्थ्य, सक्रिय जीवन शैली और आत्मनिर्भरता बनाए रखने का जरिया है। रोजाना योग का अभ्यास शरीर को लचीला बनाता है, आप सभी जानते ही हैं, साथ ही तनाव कम करके और लाइफस्टाइल सुधारने में हमारी मदद करता है। बच्चों, 21 जून इस दिन को आखिर क्यों चुना गया, आपके मन में भी यह प्रश्न आता होगा। तो आज का दिन यानी 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन यानी समर सोल्स्टिस होता है। योग परंपरा में जो दिन सबसे लंबा होता है इस दिन का विशेष महत्व होता है, इसीलिए आज का दिन विश्व पटल पर विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चों, आप तो इतना समझते ही हैं कि किसी भी दिन को मनाने के पीछे एक उद्देश्य होता है, तो यहाँ पर भी कुछ विशेष उद्देश्य हैं। लोगों की जीवन शैली में सुधार, तनाव व बीमारियों से मुक्त रहना यानी स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, बीमारियों से बचाव और वैश्विक एकता। जब हम समुदाय में योग करते हैं तो कहीं न कहीं एक दूसरे के विचार साझा होते हैं, एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ता है, जिससे तनाव से मुक्ति हमें कुछ पलों के लिए ही सही पर मिलती है, जहां मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता हमारी बढ़ती है लगातार योग के माध्यम से। तो यह सारी बातें हैं हमारे सामने, तो फिर क्यों न हम योग करें, अपने लिए कुछ समय निकालें। सिर्फ आज ही के दिन नहीं बल्कि हर दिन हमारा योग से शुरुआत हो और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर योग करें निरोग रहें का जो सार्थक हमारा नारा हम अक्सर लगाते हैं वह अपने जीवन में उतारें। बच्चों, हर वो बात, हर वो कर्म जो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और परिणाम लेकर आता है उसे अपनाना हमारी खुद के प्रति गहरी जिम्मेदारी बनता है। इसे समझना और जीवन में अपनाना और औरों के लिए भी प्रेरणा बनना हमारी सकारात्मक एक ऐसी पहल है जो खुद के साथ अपनाकर सुखद जीवन की कल्पना हमारी साकार होती है। बच्चों, आइए अब सुनते हैं आपके साथ साथ हम भी कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

प्यारे बच्चों, इस संदेश के पहले हमने एक प्यारा सा गीत सुना और आप सभी जानते हैं कि आज विश्व संगीत दिवस भी है और हम यह भी बखूबी जानते हैं कि गीत संगीत भी कहीं ना कहीं एक तरह का हमें दिमागी रूप से जो है ऊर्जा प्रदान करता है और हमारे तनाव को घटाने में काम करता है। तो गीत संगीत मनोरंजन के साथ साथ अपनी यात्रा जारी रहे। और बच्चों, अब हम बात करते हैं प्राणायाम के लाभ इस विषय के साथ। बच्चों, योगासन प्राणायाम के लाभों की बात की जाए तो अपने स्तर पर जब लाभदायक स्थिति बनती है वह है एकाग्रता, स्थिरता, याददाश्त की मजबूती, तनाव का नियंत्रण, यानी मानसिक स्वास्थ्य के लिए हर वो जरूरी बात जो आपकी पढ़ाई लिखाई में आपकी मदद करती है। प्राणायाम मन को शांत करता है और कोर्टिसोल यानी तनाव हार्मोन्स के स्तर को कम करके हमारे मूड व्यवहार को नियंत्रित करने का काम करता है। मस्तिष्क में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ने से मानसिक स्पष्टता और निर्णय लेने की जो हमारी क्षमता है वह बढ़ती है। बच्चों, प्राणायाम करने से फेफड़ों की कार्य क्षमता तो बढ़ती है, आप सभी जानते हैं, और शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बेहतर होता है। यह तंत्रिका तंत्र को शांत करके तनाव और चिंता को कम करता है, जिससे मानसिक स्पष्टता, बेहतर आरामदायक, बिना तनाव के हमें नींद आती है। और अगर हमें बेहतर नींद आ रही है, तनाव रहित नींद आ रही है, तो हमारा पाचन तंत्र, हमारी पाचन शक्ति भी अच्छी रहती है। मानसिक लाभ तो हमें समझ में आया बच्चों, लेकिन शारीरिक लाभों में भी कमी नहीं है। देखा ना आपने कि तनाव से अगर मुक्ति है तो बेहतर नींद, और बेहतर नींद हमारी पाचन शक्ति को बढ़ा रही है। प्राणायाम में हमें पाचन तंत्र के साथ साथ श्वसन तंत्र भी मजबूती स्थिति में मिलता है, यानी फेफड़ों की कार्य क्षमता हमारी बढ़ती है। नियमित अभ्यास से रक्त संचार बेहतर होता है, रक्तचाप नियंत्रित होता है। साथ ही बच्चों, सबसे अच्छी बात जो हम बार बार आपसे साझा कर रहे हैं, गहरी नींद और भ्रामरी और अनुलोम विलोम जैसे प्राणायाम अनिद्रा को दूर करने में सहायक होते हैं। और आप अगर नियमों के पालन के साथ अच्छे टीचर यानी प्रशिक्षक की मदद से यह आसन और प्राणायाम सीखते हैं तो आपको फिर क्या ही बात है ना, आप हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। हम यहाँ आपकी मदद करते ही हैं, आपकी बात भी रखते हैं कि आप कहेंगे दीदी आखिर हमारे पास समय ही कहाँ है। तो हम यहाँ आपको याद दिलाते बच्चों, जो काम घंटों में होता है आप अगर अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखेंगे तो वह फिर मिनटों में हो जाएगा। जहाँ बार बार पढ़ने पर भी याद नहीं होता है, योग प्राणायाम के साथ आपकी याददाश्त की मजबूती वह समय को बचाती है। प्रतिस्पर्धा के युग में पढ़ाई के अत्यधिक भार को कम करना है तो 15 से 20 मिनट खुद के लिए बच्चों निकालें। रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ साथ अपनी स्मरण शक्ति की क्षमता बढ़ाएं और फिर देखिए टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा और आप हमेशा तरोताजा रहेंगे। बच्चों, हम जानते हैं हमारे आज के जो बच्चे हैं ना, बहुत ही होशियार है, खुद को संभालना, खुद को तंदुरुस्त रखना बहुत ही अच्छे से जानते हैं। साथ ही समय की ताल से ताल मिलाकर चलना भी उन्हें बेहतर से आता है। और बच्चों, फिर बस अब इतनी सी बात के साथ आगे जुड़ेंगे गीत संगीत के साथ कि खुद से दोस्ती करिए, खुद को अपना दोस्त बनाइए और समय की जो ताल है उससे ताल मिलाकर चलिए। आइए सुनते हैं आपके साथ साथ हम भी यह गीत।

प्यारे बच्चों, इस गीत के बाद हम जानते हैं कि अब आपको इंतजार है कि आखिर इतना समय हो गया, दीदी ने हमें कहानी क्यों न सुनाई। आइए अब सुनते हैं यह कहानी।

बच्चों, आज की जो हमारी कहानी है ना, उसका शीर्षक है समय का महत्व। यह कहानी है यामिनी की, आपकी ही तरह 14-15 वर्ष की बच्ची यामिनी। ताजा शुद्ध हवा, सुबह की सैर को पसंद करने वाली यामिनी की कहानी लेकर आज हम कुछ पल आपके साथ हैं। यामिनी नाना नानी दादा दादी दोनों ही परिवारों में इकलौती लाडली सबकी बिटिया। दोनों तरफ भाई, मामा, काका, दादा, नाना के बीच इकलौती बच्ची। स्वाभाविक है कि जब बहन बेटी के रूप में इकलौती बेटी है तो थोड़ा सा जिद्दीपन तो आ ही जाएगा ना। ऐसे में सब आगे पीछे घूमते रहते हैं और यामिनी के नखरे उठाने वाले। प्यारी सी सूरत, घर ननिहाल के साथ साथ स्कूल परिवार में भी सबकी चहेती, पढ़ने में होशियार तो थी ही हमारी यामिनी। मिडिल शिक्षा के बाद स्कूल का बदलाव, कक्षा 9वीं में अब गाँव से थोड़ी दूर स्कूल जाना होगा, साइकिल से जाना ही पड़ेगा, अब कोई साधन ही नहीं। अब नई नई सहेलियों से दोस्ती। मम्मी ने समझाया, स्कूल की दूरी है बेटा, सुरक्षा भी जरूरी है, अकेले साइकिल से न जाओ, अपनी सहेलियों के साथ साइकिल से जाओ और कुछ बातें, कुछ अनुभव भी साझा करते जाओ, सुरक्षित आओ। यामिनी को कुछ अटपटा सा लगा, लेकिन मम्मी की बात तो फिर यामिनी को माननी ही थी। अब रितु अगले गाँव में रहती थी, कुछ किलोमीटर दूर जब अगला गांव पड़ता था यामिनी के घर से, तब उस गांव में रितु के साथ उसकी दोस्ती सहेली बनी और उन्हीं की स्कूल में भी साथ साथ। परिवार में सबसे बड़ी रितु, अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल की जिम्मेदारी भी रितु पर थी। आखिर कई बार ऐसा होता कि रितु भाग

0: गम भाव के साथ यामिनी के साथ होती। कुछ देर यामिनी को उसके घर बाहर रुकना पड़ता। अब समय का तालमेल तो यामिनी रितु के साथ बिठा लेती थी, लेकिन एकदम से खुलकर बातचीत के साथ बोल न पाती थी। अभी तक यामिनी अपने स्वयं के निर्णय लेती थी, अपने हिसाब से सब दूर आती जाती थी। अब थोड़ा सा उसे रितु का भी सुनना पड़ता था और उसके जरा ही काम करना पड़ता था। एक बार यूं हुआ, 6 माह परीक्षा का पहला दिन, यामिनी की तो साइकिल ही खराब हो गई। अब क्या करे, समय पर स्कूल भी पहुंचना है और कोई साधन भी साथ नहीं। यामिनी ने रितु से कहा कि मैं धीरे धीरे आती हूँ, तुम पहुँचो, तुम्हारा पेपर भी देर हो जाएगा। पर आखिर रितु यामिनी को छोड़ के कैसे जा सकती थी। बच्चों, रितु परिवार में छोटी उम्र से ही अपने परिवार में छोटे भाई बहनों को संभाल रही थी और समय की नज़ाकत को समझती थी। यामिनी की साइकिल को चलाना अब मुश्किल था। उसे ताला लगाकर एक दुकान पर सुरक्षित रखा, अपनी साइकिल पर यामिनी को बिठाया और निकल पड़ी। थोड़ी मेहनत रितु को लगी, लेकिन समय से स्कूल पहुंचकर दोनों ने एग्जाम दी। थकान लेकिन रितु पर हावी थी। यामिनी एग्जाम के बाद जब बाहर निकली तो एग्जाम के साथ साथ उसने इस बात को भी अनुभव किया कि आखिर समय का क्या महत्व होता है। यामिनी तो कभी न कर सकती थी ऐसा जो रितु ने किया। अब रितु को तो आदत थी बच्चों, अपने छोटे भाई बहनों को वह साइकिल पर घुमाती थी, लेकिन इतना लंबा सफ़र उसने भी कभी तय नहीं किया था। अब यामिनी को मम्मी की बात समझ आई, समय का क्या महत्व होता है और क्या मैं छोटी छोटी बातों पर झल्ला जाती थी और रितु के लिए अंदर ही अंदर गलत सोचती थी। जिसे मैं अपनी दोस्त भी नहीं मान रही थी, उसने अपनी दोस्ती कितना परेशान होकर भी अच्छे से निभाई। बच्चों, इस छोटी सी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? समय का महत्व लेकर निर्णय सकारात्मक रूप से त्वरित लें। कभी कभी हमें जल्दबाजी में निर्णय लेना पड़ता है जो समय की मांग होती है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, जो आपके समय को महत्व दे उसे आप समझे, उसके भी समय को महत्व दें। वही समय की तरह आपके सच्चे साथी हैं। बच्चों, इस कहानी के बाद हम आपके लिए लेकर के आए हैं रेखा सरवर दीदी की एक वार्ता, जो आपके लिए है विशेष, विषय बाल मनोविज्ञान और योग।
1: मुझे सुनने वाले सभी बच्चों को मेरा ढेर सारा प्यार और स्नेह। बच्चों, मेरा नाम रेखा सरवर है और मैं पिछले 10 वर्षों से योग से जुड़ी हुई हूँ और 2 वर्षों से योग का प्रशिक्षण भी दे रही हूँ। बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे माइंडफुलनेस एंड स्ट्रेस रिडक्शन के साथ बाल मनोविज्ञान और योग को जोड़ना। बच्चों, आज की इस भागदौड़ और तनाव भरी जिंदगी में आप लोगों को अपने स्वास्थ्य पर कैसे ध्यान देना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। अगर आप पढ़ाई के साथ साथ प्रतिदिन योगाभ्यास करते हैं तो आपका भविष्य भी उज्जवल बनेगा। आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे तो अपने साथ साथ आप अपने दोस्तों का और अपने घर वालों का भी अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। अगर आप प्रतिदिन नियमित रूप से आधा घंटा भी अगर अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए निकालते हैं तो इसका आपके स्वास्थ्य पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा, आपको इसका बहुत लाभ प्राप्त होगा। जैसे प्राणायाम हम करते हैं, भ्रामरी प्राणायाम, अगर आप जैसे कि भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो इससे आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। और ऐसे कई प्राणायाम हैं जैसे कि अनुलोम विलोम, कपालभाती, उद्गीत, प्रणव प्राणायाम, जो कि हमें रोज करना चाहिए। और कुछ ऐसे आसन भी हैं जो कि आप सभी बच्चों को अवश्य करना चाहिए, जैसे कि ताड़ासन, वृक्षासन। ताड़ासन और वृक्षासन करने से बच्चों की हाइट बढ़ती है और प्रतिदिन योगाभ्यास करने से आपका शारीरिक स्ट्रक्चर भी अच्छा बनता है, सही बनता है। और यही

0: नहीं, इसमें आप अपना करियर भी बना सकते हैं। तो बच्चों, मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी, बल्कि मैं तो निवेदन भी करूँगी कि आप सभी को नियमित प्रतिदिन अपने शरीर के लिए आधा घंटा ज़रूर निकालें और योगाभ्यास और प्राणायाम करें, जिससे कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। नमस्कार बच्चों, धन्यवाद बहुत बहुत।
1: प्यारे बच्चों, ये छोटी सी वार्ता के साथ हमारे साथ थी दीदी रेखा सरवर, जो कि योग प्रशिक्षक हैं और पिछले 10 वर्षों से योग का प्रशिक्षण दे रही हैं निशुल्क, और विषय बाल मनोविज्ञान और योग। अब इसके बाद आज की जिज्ञासा।

प्यारे बच्चों, आज की हमारा जिज्ञासा का विषय है योग के कितने आयाम हैं। तो बच्चों, महर्षि पतंजलि अष्टांग योग के 8 अंगों का जिक्र करते हैं, यानी योग के 8 अंग होते हैं। पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठवा धारणा, सातवां ध्यान और योग की अंतिम अवस्था यानी समाधि।

बच्चों, विश्व संगीत दिवस इस गीत के साथ हमने आपके साथ साथ अनुभूति की ना, कितनी गर्मी उमस में भी संगीत ही ऐसा माध्यम है जो हमारी मानसिक शांति को सुरक्षित रखने में हमारी मदद करता है। लेकिन इसके लिए भी हमारे मन का शांत होना और निर्णय लेना जरूरी है कि हम क्या करें और क्या न करें। बच्चों, विश्व योग दिवस, आज हम सभी संकल्प लें, जिसके साक्षी हम स्वयं होंगे, हमें किसी को जवाब नहीं देना है, बल्कि खुद को ही परिणाम बनाना और रिजल्ट खुद को ही देना है। कुछ समय खुद के लिए निकालें, सूक्ष्म व्यायाम के साथ साथ जो आसन आप प्रशिक्षक की मदद से सीखकर कर सकते हैं अपनी शारीरिक क्षमताओं के साथ, वह करें, अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल। योग शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक क्षमताओं का उचित दोहन हमसे करवाता है। और बच्चों, अब हमारी बातचीत को देते हैं विराम, क्योंकि अब समय हो रहा है आज के बाल जगत कार्यक्रम को संपन्न करने का। आज आपके साथ थी आपकी दीदी मोना दफ्तरी। अनुमति दे, जय हिंद।

0: अभी बाल जगत कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। ये है निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
1: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव

0: 10 संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आकाशवाणी खंडवा से अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम।
2: ये आकाशवाणी खंडवा है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में श्रोताओं, आज हम आपको सुन पा रहे हैं विदुषी किशोरी अमोनकर का गायन। आइए सुने राग भिन्न षड्ज।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे विदुषी किशोरी अमोनकर का गायन और आपने सुना राग भिन्न षड्ज। शास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: एहसास की जो जुबान बन गए,
2: ध्वनि तरंगों से जुड़ा है ये मोहब्बत का एहसास, उफ की दूर होने नहीं देता।
1: आप हमारी जान बन गए।
2: सुनते रहे निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।

0: द्विविधा के सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर
1: और मनीषा जैन का
0: नमस्कार।
1: आज की जो द्विविधा है इसमें फुहारों की बात होगी, लेकिन ये जो वर्षा है ये सुरों की वर्षा है और सुरों की इस रस वर्षा में हम भीगेंगे। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में दो महान संगीतकारों की बात, एक ऐसे संगीतकार की बात जिन्होंने हिंदी फिल्म संगीत को बहुत कर्णप्रिय की थी, और एक और संगीतकार की बात जिनके बारे में सिर्फ एक ही शब्द निकलता है और वो है वर्सेटाइल। तो हमारे श्रोता समझ रहे हैं हम किनकी बात करने जा रहे हैं।
0: दो संगीतकारों की हम बात करने वाले हैं, इनमें जो सीनियर है, वरिष्ठतम है, उनकी बात पहले करते हैं।
1: जी,
0: कल्याण जी वीर जी शाह।
1: वाह, एक से एक सुंदर मीठे धुनों के रचयिता कल्याण जी वीर जी शाह।
0: मूलतः ये शाह परिवार गुजरात का जो कच्छ इलाका है
1: जी जी,
0: वहाँ के कुंद्रोड़ी गांव का रहने वाला था, और कल्याण जी के पिता मुंबई आ बसे थे व्यापार करने के लिए
1: जी।
0: और दोनों भाई कल्याण जी और आनंद जी उन दिनों व्यापार में अपने पिता का हाथ भी बटाते और संगीत सीखा करते।
1: हाँ, और बड़ी दिलचस्प बातें उस समय से जुड़ी हुई हैं जो कई बार हमारे श्रोताओं ने भी सुनी है, मुझे लगता है उन्हें भी पता है। लेकिन ये जरूर है कि उनके जो शॉप थी, उनकी जो दुकान थी, वहाँ एक संगीत रसिक आया करते थे
0: जी जी।
1: और उनके साथ ये बातचीत जुड़ी हुई है।
0: वो संगीत शिक्षक थे असल में, वो कल्याण जी के पिता की उसी दुकान के ग्राहक थे, बहुत पुराने ग्राहक थे, और सौदा ऐसे ही तय हुआ करता था हमेशा कि जो पैसे उन्हें देने होते हैं उसके बदले वो कल्याण जी और आनंद जी को संगीत सिखाया करते थे।
1: क्या बात है, देखिए कहां कहां कैसे कैसे संगीत रचा बसा है। एक दुकान है जहां पिता के साथ दो पुत्र हैं और वहां संगीत का जो है माहौल बना हुआ है। क्या ही सुंदर दृश्य होगा और क्या ही सुंदर बातें हैं ये जो हम सुनते हैं।
0: और जिस इलाके में ये लोग रहा करते थे शाह परिवार, वहां बहुत से गुजराती और मराठी संगीत प्रेमी बसते थे।
1: हाँ।
0: जी, पूरा माहौल ऐसा था कि गणेश उत्सव हो या दुर्गा उत्सव हो, अलग अलग अवसरों पर संगीत के कार्यक्रम वहां हुआ करते थे, और कल्याण जी और आनंद जी को बचपन से ही मौका मिलता रहा संगीत वो सुना करते, सीखा करते, बहुत से वाद्य वो बजाया करते। और चूंकि कल्याण जी बड़े भाई थे, वो पहले इंडस्ट्री की तरफ आए, और 1954 की बात है कि एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, या हम ये कह सकते हैं कि वो भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जो विदेश से आया था, उसका नाम था क्लेवियोलाइन, और इसमें किसी कीबोर्ड या पियानो की जैसी कीज थी
1: जी जी,
0: और उस कीबोर्ड पे इन्होंने वो धुन बजाई थी जिसे हम नागिन धुन के नाम से जानते हैं।
1: हाँ, हेमंत दा ने अपनी फिल्म नागिन में उसी धुन का प्रयोग किया है, और हमारे श्रोता बखूबी जानते हैं कि कल्याण जी भाई ने इस धुन को बजाया और अमर धुन हो गई ये।
0: बिल्कुल, और फिर तो सिलसिला चल पड़ा। पहले वाद्य बजाते थे, बाद में कल्याण जी भाई असिस्ट किया करते थे हेमंत कुमार जी को
1: जी जी,
0: और फिर उन्हें मौका मिला स्वतंत्र रूप से एक फिल्म के संगीतकार बनने का, और वो फिल्म थी सम्राट चंद्रगुप्त।
1: और क्या ही मीठे गीत उस फिल्म के हैं। तो श्रोताओं, आज हम इतनी बातें कर रहे हैं कल्याण जी वीर जी शाह की, उनकी पहली फिल्म सम्राट चंद्रगुप्त तक की जो यात्रा है उसका एक संक्षेप में विवरण अभी तक जयंत जी ने दिया, और मुझे लगता है ये समय आ गया है जब बाकी की बातें जो हैं या इसके अलावा जो बातें हैं वो स्वयं हम कल्याण जी के स्वर में ही क्यों न सुने। और आज श्रोताओं, कल्याण जी वीर जी शाह जी को हम याद कर रहे हैं हमारे कार्यक्रम विविधा में। 30 जून उनका जन्म दिवस है, तो आज विविधा में जो सबसे पहली प्रस्तुति है वो यही है। श्रोताओं, संगीतकार कल्याण जी वीर जी शाह से बातचीत की ये रिकॉर्डिंग जिसे हम अपने संग्रहालय से लेकर आए हैं, और कल्याण जी से बातचीत की है गणेश शर्मा ने।
2: ये सब जानते हैं कि नागिन की वो मशहूर बीन आपने, कल्याण जी भाई ने ही बजाई थी, उसकी कुछ यादें हमें बताइए।
3: शॉर्ट में कहूँगा कि वो क्लेवलिन इंस्ट्रूमेंट था, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट था, जो उस टाइम फर्स्ट सिंथेसाइजर आया था, उसके बाद तो अभी सिंथेसाइजर की दुनिया हो गई, और उसमें वो कॉम्बिनेशन था नहीं एक्चुअली नागिन बीन, क्योंकि फॉरेन में तो बीन समझते नहीं, तो हमने कुछ कॉम्बिनेशन बना के वो एक नाग पंचमी करके एक पिक्चर थी, नाग कहीं जा बसी हो रही मेरे पिया को न दसी हो रही। उसके बाद ये सुन के वो मुझे लगता है जालान साहब ने सुना था, और उनके बाद हेमंत कुमार जी ने वो नागिन

बन रही थी, उसके लिए मुझे बुलाया गया। और फिर उसमें नागिन भी बसाई मैंने, और वो आप पूछेंगे कि उसमें कोई कोई इंटरेस्टिंग बात सुनाइए, तो मुझे याद है बरोबर कि लता जी उस टाइम ही कह रही थी कि प्रियांश जी कुछ भी बोलो, मुझे लगता है कि ये गाना ऐसा सुपरहिट होने वाला है कि आप याद करेंगे, मेरी बात याद करना, आज भी हम याद कर देंगे। सही, लता जी ने कहा था उससे।

0: कलंजी भाई, फिल्म सम्राट चंद्रगुप्त आपकी पहली फिल्म थी जिसमें आपने संगीत दिया, और उस फिल्म में लता मंगेशकर ने आपके लिए गीत गाए। उसके बाद तो आपका लता जी के साथ में एसोसिएशन बहुत सारे गानों में रहा, कुछ बताइए।
1: लता जी के बारे में कुछ कहना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उनका गाना ही कह रहा है कि वो क्या थे। अभी हमें लता मंगेशकर अवार्ड मध्य प्रदेश का होता है, वो हमें इस साल का मिला, तो वहाँ भी मैंने कहा कि इंदौर में जन्म हुआ उनका, और इंदौर में जन्म हुआ उसी टाइम से लगा कि फिल्म संगीत का जन्म हुआ, इससे ज़्यादा अवार्ड मेरे पास नहीं है। और एज ए म्यूजिक डायरेक्टर मैं कह सकता हूँ कि जब भी हम गाना रिकॉर्ड करके आते हैं तो वही गाना हम जब सुनते हैं तो, और किसी भी सिंगर का गाना जब भी सुना था ऐसा लगता है कि ज़रा और यहाँ कुछ करते तो और अच्छा हो सकता था। लेकिन ये एक ऐसी सिंगर कि जब भी हम गाना लिखे कभी ऐसा लगा नहीं कि नहीं नहीं नहीं अभी कुछ कम रह गया, कम रह, बस यही, बस इनकी खूबी, ऐसे आगे कुछ नहीं।

0: कलंजी भाई, स्टेज प्रोग्राम्स आपने सबसे ज्यादा किए हैं। एक खास बात यह भी रही है कि उसमें सभी स्टार्स, सभी फिल्म स्टार्स आपके स्टेज शोज में रहे हैं। तो स्टेज आपने कब से शुरू किया और कुछ बातें उस बारे में बताइए हमें।
1: एक्चुअली क्या था कि हम फिल्म लाइन में आए उसके पहले स्टेज की दुनिया में थे। हमारी एक पार्टी चलती थी कल्याण जी विजयन पार्टी, तो उसमें काफ़ी शो करते थे हम। मतलब उसमें क्या, उस टाइम के रतन और इस टाइप के गाने पॉपुलर होते थे, वो गाने बजाने के और पब्लिक को खुश करना। उसके बाद तो नागिन की बीन आई, उसके बाद तो स्टेज की दुनिया हमारे लिए बहुत ईजी हो गई। लेकिन हमारे माइंड में ऐसा हमेशा चलता था कि अगर कोई पॉपुलर सिंगर और पॉपुलर एक्टर अगर स्टेज के ऊपर आ जाएं तो बहुत ही बड़ी बात बन सकती है, क्योंकि पब्लिक उनको सुनना चाहती है, देखना चाहती है। तो सिंगरों को उस टाइम हेमंत कुमार, अपने मुकेश जी, पहले वो शर्माते थे क्योंकि आदत नहीं है ना, जो रिकॉर्डिंग करते हैं उनको स्टेज पे ज़रा प्रैक्टिस नहीं होती है ना, कुछ बोलना भी पड़ता है कभी कुछ भी। लेकिन सबको प्रैक्टिस डालते डालते और सभी अच्छे हो तो उस टाइम फिर आए किशोर कुमार। किशोर कुमार तो पहले एकदम डरते थे ऑडियंस के सामने आना करना, पर बड़ा उनको ऐसे, तो उनको कुछ प्रॉब्लम हो गए थे फिनेंशियल, तो उनके जो एडवाइज़र था वो बोले किशोरदा आप स्टेज पे आ जाइए तो बहुत पैसे मिलेंगे। हम भी बोल दे तो बोले नहीं, स्टेज के ऊपर मैं जाऊँगा तो मैं गिर जाऊँगा। तो हम उनको कैसे समझाते थे, एक दिन मैंने समझाया उनको, बोले किशोरदा आप क्यों डर रहे, मेरे को समझाइए कि आपके सामने जो भी बैठे हैं वो 7 जन्म तक किशोर कुमार नहीं बन सकते। क्यों कि सामने कोई बैठे हुए ऐसे तो नहीं है कि लता मंगेशकर बैठी हैं, कि बड़े गुलाम अली बैठे हैं, कि आमिर खान बैठे हैं, कि आपको डर लगे कि अरे बात पॉइंट अच्छा अच्छा है, फिर से बोलो मेरे को अच्छा लग रहा है। मतलब वो अगर हो तो ठीक है भाई, हमको डर लगे कि भाई वो क्या होने, ये तो बेचारे ऑडियंस है एकदम, जिसने गाना खाली आपके इतने फैन है यार, एक दो दफ़े बोलते रहो बहुत अच्छा यार, मैं क्यों डर रहा हूँ नहीं डरूंगा, ऐसे करके उनको स्टेज पे ले जाते थे और डरते थे। पर बाद में तो वो ऐसे मास्टर हो गए कि ओहो आप बिलीव नहीं कर सकते, उनके तो इतने किस्से हैं, कभी मैं सुनाऊंगा आपको तो लगेगा। एक दिन क्या हुआ, हम कलकत्ता में गए, उनके प्रेजेंटेशन में बताता हूँ, तो योडलिंग उन्होंने निकाली, मतलब योडलिंग, तो हम लोग बैठे कोई प्लान बना थे, मतलब किशोरदा एक सवाल मैं पूछूंगा फिर आपने, तो हम बोले तो मेरा किशोरदा आप जो ये योडलिंग जो निकाले वो कैसे आपको आइडिया आया। वो बोले मैं छोटा था बच्चा एकदम, तब मैं बहुत शरारती था, मेरी माँ बहुत मारती थी मेरे को, तो बाद में क्या हुआ मैं अच्छा हो गया, फिर भी मेरे को पिट रही है। तो मैं बोला ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है, मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्यों मार रही है मेरे को माँ कुछ। तो वो बोले तुम रोते हो तो एक आवाज़ निकलती है हमको बहुत अच्छी लगती है। तो मैं बोला कि किशोरदा अभी वो आवाज़ निकाली आप, इतने अच्छे आप बात कह रहे थे। तो बोले नहीं ऐसे नहीं निकलेगी, मेरे को मारो तुम। अरे मैंने कैसे मारेंगे इतने ऑडियंस के बीच में, मैं आपको मारूं ऐसे? तो बोले तब मैं तो नहीं निकलूंगा। तो हमने ऐसे प्लान किया था, मैं ऐसा एक जोर से एक ऐसे लाफा मारा, तो हमने धड़ करके और उसमें से रो के फिर उसमें आवाज़ निकल के उन्होंने गाना शुरू किया, बस ये स्टाइल।

0: को बहुत बड़े बड़े अवार्ड से, पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति पुरस्कार, पद्मश्री। कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट किसी अवार्ड फंक्शन का अवार्ड लेते हुए आप श्रोताओं को बताइए।
1: कोई भी अवार्ड मिलता खुशी तो होती है, उसमें कोई सवाल नहीं उठता, लेकिन मुझे लगता है कि जनता का जो अवार्ड है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि जब भी हम काम करते हैं और पहला ही जनता के सामने जाते हैं और उनकी क्या खुशी हुई है, वहीं हमें अवार्ड मिल जाता है। बाकी तो फिर किसने रिकग्नाइज़ किया कि नहीं किया उसमें नहीं, लेकिन जब भी कोई अवार्ड लेते हैं तो एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है हमारी, क्योंकि हम चाहते हैं कि कितने प्यार से लोगों ने हमें अवार्ड दिया है, तो हम इस संगीत के ज़रिए क्या समाज की सेवा कर सकते हैं, क्या देश की सेवा कर सकते हैं, क्या हमारे आने वाले भाइयों के लिए हम कुछ कर सकते हैं, ये हमारा हमेशा माइंड में रहता है। इसलिए जब भी कोई अवार्ड लेते हैं हमारी जिम्मेदारी तो बढ़ जाती है, बस यही है। फिर आप अगर मजाक की बात करें तो जैसे फिल्म फेयर अवार्ड बहुत बड़ा अवार्ड है, तो हमें कोरा कागज़ के लिए मिला, लेकिन बहुत लेट मिला था, 27 साल इंडस्ट्री में रहने के बाद हमें मिला था। तो वहाँ पूछते हैं कि ये अवार्ड मिलने से आपको क्या महसूस हो रहा है आप, तो मतलब भाई बहुत खुशी हो रही है, क्यों नहीं खुशी हो, क्योंकि बड़ी उम्र में लड़का हुआ है।
2: कल्याण जी भाई, इस तरह के जो जोक्स हैं, जो एक चुटकुले और आप बातों बातों में कहते हैं, जो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर है वो भी बहुत मशहूर है, आप जोक्स बहुत अच्छा बोलते हैं और चुटकुले आप बहुत अच्छा बोलते हैं।
1: जब ये ह्यूमर का सब्जेक्ट निकाला है तो मुझे लगता है कि ह्यूमर को मैं बहुत महत्व देता हूँ, कि वो क्या कि जाम जाएँ कोई लोग हंसते नहीं हो सब है, तो और इसमें सबसे ज़्यादा अगर मुझे किसने इंस्पायर किया हो तो आचार्य रजनीश जी ओशो, उन्होंने मुझे बोला था कि कल्याण जी आप में जो आर्ट है इसको आप डेवलप कीजिए, वो कमाल का आर्ट है, बिल्कुल अगर हमारे में भी हो जाता तो मैं तो जो मेरा सब्जेक्ट है वो प्रीचिंग ना लगे, इसलिए मैं आपसे काफ़ी चीज़ें एडॉप्ट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। और उन्होंने बहुत इंस्पायर किया, इसलिए मैंने बहुत स्टडी किया, मैंने ह्यूमर की क्लासेस भी शुरू किए थे। अभी आप बोलेंगे कोई जोक सुनाई, जैसे मैंने बोला अभी बड़ी उम्र में लड़का, पिक्चर साइन की थी नन्ना फरिश्ता, तो हमको पहली मद्रास की फिल्म थी हमारे पास, तो वहाँ स्टोरी राइटर बड़ी सीरियस स्टोरी सुना रहा था कि हमारी स्टोरी देखो ये है ये, और उसमें लास्ट में बोला कि इसमें एक लोरी आती है, बस दिस इज द बेस्ट आके पिक्चर में, वो लोरी बहुत काउंट करती है, लोरी लोरी लोरी बहुत अच्छी, कल्याण जी भाई बस बनाना बनाना। तो मैंने ऐसे बोला कि हमारे तो ऑर्डिनरी गाने में लोग सो जाते हैं, तो लोरी में तो हम जान लड़ा देंगे, सवाल ही नहीं। तो इतना बड़ा लाफ्टर आया, तो बोले वो क्या वो समझे नहीं, बाद में उनको समझाया गया कि हम सही नहीं बोल सकते।

0: मुकेश जी को आपने उनके करियर के सबसे ज्यादा गाने गवाए हैं, बहुत से हिट गाने मुकेश जी के आपके द्वारा संगीतबद्ध हैं।
1: मुकेश जी के बारे में कुछ कहना हो तो हम इतना ही कह सकते हैं कि जब भी वो गाते थे तो सीधे हार्ट तक पहुंच जाते, सीधा हृदय, कोई दिमाग के ऊपर गाना नहीं जाता था कि मेरे टूटे हुए दिल से अगर गाते हैं तो ऐसा लगता है कि सही इनका दिल टूटा हुआ है, बस ये इनकी एक खूबी थी। तो फुल ऑफ एक्सप्रेशन, और जितने वो अच्छा गाते थे इतने ही अच्छे इंसान थे, ग्रेट आर्टिस्ट। सभी गाने उन्होंने बहुत प्यारे गाए, लेकिन शमीम जयपुरी जिनका पहला ही गाना हमने उन्होंने लिखा था, मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज़ न दो, अर्जुन हिंगोरानी की पिक्चर दिल भी तेरा मेरा,

0: कल्याण जी भाई, गायक गायिकाओं की बात हम कर रहे हैं और मोहम्मद रफ़ी का जिक्र अगर ना हो तो प्रोग्राम पूरा नहीं कहलाएगा।
1: मुझे लगता है कि रफ़ी जी एक हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लिए गिफ्ट जिसको बोल सकते हैं। रफ़ी जी वॉज ए ऑलराउंडर आर्टिस्ट। जैसे क्रिकेट में हम चाहते हैं कि भाई बैट्समैन भी हो, विकेट कीपर भी हो, बॉलर भी अच्छा हो, अच्छा फील्डर भी हो, किसी भी रंग का गाना गवा लीजिए आप, क्लासिकल से लेके कॉमेडी गाना, पैथोस गाना। और एक हीरो के लिए कोई भी हमें दूसरा सिंगर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि भाई अभी इसके लिए और सिंगर ढूंढ, बस ये इनकी खूबी थी और बहुत प्यार से गाते थे, बस यही।

0: भाई कोई ऐसे संगीतकार हमारे और वरिष्ठ संगीतकारों में जिनके काम ने आपको इंस्पायर किया हो?
1: कोई भी आदमी किसी भी सब्जेक्ट में जब आगे बढ़ता है तो उस सब्जेक्ट के जो टॉप लोग होते हैं उनको ज़रूर सुनता है, देखता है क्या किया है उन्होंने। तो हमारा म्यूज़िक का सब्जेक्ट रहा, तो हमने अपने टाइम में देखा कि नौशाद जी ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा फिनिशिंग, क्या बात है। फिर उस टाइम के सी रामचंद्र उन्होंने बहुत अच्छा किया, मदन मोहन उन्होंने अच्छा किया, शंकर जयकिशन उन्होंने अपना एक रंग अलग दिखाया था, संजय चौधरी, अनिल विश्वास, ये सब ने। लेकिन अगर हमें पूछे कि भाई आपको ज़्यादा में ज़्यादा किसने इंस्पायर, तो मैं एस डी बर्मन को बहुत मानता हूँ। काहे के लिए कि एक 4-5 मिनट का हमारा गाना होता है, उस 4-5 मिनट के अंदर 2-2.5 मिनट सिंगर गाता है, बाकी ऑर्केस्ट्रा बजता है, तो उसमें ऐसा एक एटमोसफियर पैदा करो कि सिर्फ कानों से दिखाई देने लग जाए कि ये बनाया, वो बहुत मुश्किल है। और वो बनाते थे तो हम उसको बहुत स्टडी करते थे, क्या किया कि इन्होंने, कि अगर कोई सीने के बादल है तो लगता है कि बादल गरज रहे हैं, ये गरज रहे हैं, ऐसे हर रंग में उन्होंने अपना अपना रंग। सुन मेरे बंधु, उनका जो अपने स्टाइल से गाया है वो सुनाइए, बहुत मज़ा आया।

0: कल्याण जी भाई, हम सब जानते हैं कि बच्चों के लिए एक ग्रुप जिसका नाम है लिटिल वंडर्स, वहाँ बच्चों को, छोटे बच्चों को परफॉर्म करते देख, गाते देख, बजाते देख, विश्वास ही नहीं होता कि बच्चों में इतना टैलेंट हो सकता है। आप मुझे ये बताइए कि ये ग्रुप को फॉर्म करने में ऐसी कौन सी बात थी जिसने आपको ये सोचने के लिए मजबूर किया कि बच्चों के साथ कुछ काम किया जाए?
1: फिल्म की दुनिया और स्टेज की दुनिया, तो उसमें देखा कि जब भी कल्याण जी आन जी नाइट होती थी तो सबसे ज़्यादा अगर कोई स्कोर कर जाए तो बाल कलाकार कर जाता था। कितने भी बड़े आर्टिस्ट आए हों, लेकिन जब भी एक छोटा कलाकार आ जाता था तो भले वो इतना उसका अच्छा नहीं भी परफॉर्मेंस हो, फिर भी इतनी क्लैपिंग ले जाता। तभी सोच रहे थे कि क्यों ना ऐसा हो कि पूरा शो अगर बच्चों का हो जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग बन सकता है। और फिर बच्चों में क्या है कि मैं दिखाऊँ कि वो बहुत फास्ट डेवलपिंग, उनको कोई टेंशन नहीं होता ना, उनको जो काम दिखा देंगे बस वही काम करना है उनको। तो देखा कि ट्राई करें हम, और आज देखते हैं कि मुझे लगता है कि सभी लोगों का ये कहना है कि शो की दुनिया का सबसे बड़े बड़ा शो है, क्योंकि तीन पीढ़ियों को बच्चे संभालते हैं। एक तो छोटे बच्चे आते हैं, फिर उनके पेरेंट्स, फिर उनके पेरेंट्स, ये तीन पीढ़ियाँ एक ही, और वो तीन घंटे बच्चे ऐसे परफॉर्म करते हैं कि अगर जिसने शो देखा हो कोई बता सकता है कि वो बहुत है। और हम बहुत लकी रहे कि बड़े बड़े जितने आर्टिस्ट हैं, अमिताभ जी, दिलीप कुमार जी, सुनील दत्त, वहाँ से लेके जितने अभी गोविंदा जी आए थे, अमरीश पुरी आए थे, सभी ऐसे सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल काम छोड़ के अपने बिल्कुल आते हैं और बिल्कुल सिखाते हैं। ये एक शो देखा हमने कि कोई की आदमी को जेलसी नहीं होती है, सब एक दूसरे को तारीफ कर रहे हैं, बस यही एक खूबी है।
0: बच्चों की बात चली है, मैं चाहता हूँ एक कोई ऐसा गाना आप सुनवाएं श्रोताओं को जो आप ही का कंपोजिशन हो और बच्चों के लिए हो। जो गाना
1: बजाइए, एक बट्टा दो, दो बट्टी चार, कालीचरण में था, जिसमें अनुराधा पौडवाल और कंचन जी ने गाया था, और वो मुझे लगता है वो दोनों का पहला ही गाना था उसे।

0: कलन जी भाई, संगीत सिर्फ एक क्षेत्र नहीं है जिस पे आप काम कर रहे हैं। बहुत सी सामाजिक संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं और बहुत से साधु संतों का सत्संग भी आपको मिला है, तो आपकी जिंदगी की फिलॉसफी, जिंदगी का फलसफा क्या है, हमें बताइए।
1: अच्छा सवाल है ये, और मुझे लगता है कि सभी लोगों को इस पे ध्यान देना चाहिए कि हम बचपन में जब भी कोई ज़्यादा तो एजुकेटेड है नहीं, लेकिन पिताजी मेरे वो भी कोई ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन बहुत अच्छी बातें करते थे और प्रैक्टिकल में ना आचरण उनका बहुत स्ट्रांग था। तो कहते थे बेटा देखो, कोई भी लाइन में जाना, लेकिन जीवन की ज़रूरत कुछ ज़्यादा नहीं है, और वो ज़रूरत से अगर आगे निकल गए तो बाकी का चीज़ है वो बांटना। ऐसा होना पैसा काम कर रख के बैठे हुए कुछ बड़े, वो भी बात हमें अभी भी माइंड में है बिल्कुल, और बड़ों की इज्जत करना, ये करना, तो वो सब हमारे बचपन में जो डाले हुए संस्कार हैं वो अभी तक हैं। तो हमने देखा कि हम संगीत में आगे बढ़ गए तो मनी तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो बाकी सोचा कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो हमने देखा कि अगर आदमी को निजी आनंद लेना हो तो दूसरों के लिए हम कुछ करते हैं तो ये अच्छा लगता है। तो ये उनकी वजह से हम जितना भी कुछ अपना जो भी कुछ है तो चैरिटी में डालने की कोशिश की, फिर अपने शो की दुनिया में जो भी अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं उनके लिए जो भी कुछ कर सके तो ये करते हैं। तो ये इसका एक आनंद है, वो एक बहुत ही बड़ा आनंद है और सभी को इसमें लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।

0: चलना।
1: मनीषा जी, इस रिकॉर्डिंग को सुन करके कैसा अलग सा आनंद महसूस कर रहे हैं? हमारे श्रोता भी निश्चित रूप से इसको अनुभव कर रहे होंगे।
2: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा जयंत जी आपने। और संगीत में वो ताकत है, वो शक्ति है कि वो इंसान के मन मस्तिष्क को शीतल कर देती है, ठंडा कर देती है। बहुत परेशान अगर कोई इंसान है, डिप्रेशन में है, तो वो एक मधुर संगीत

0: सुन के आनंदित हो उठता है, और अगर आनंद में है तो उसका आनंद जो है वो द्विगुणित हो जाता है।
1: बिल्कुल
0: ये
1: सही कहा
0: तो
1: आपने।
0: संगीत का सौंदर्य है। जिन कलाकारों को ये गुण मिला है, जिनको माँ सरस्वती ने ये आशीर्वाद दिया है, वो वाकई बहुत पुण्यात्मा होंगे जिन पर ये आशीर्वाद माँ सरस्वती का है। एक ऐसे ही कलाकार हैं
1: जी
0: जिनका नाम मैं लेना चाहूंगी, और वो हैं राहुल देव बर्मन,
1: वाह क्या बात है,
0: जिनके लिए मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था ना शुरुआत में, वर्सेटाइल।
1: वर्सेटाइल वैविध्यतापूर्ण कलाकार।
0: जी हाँ, और
1: जी
0: आपको नहीं लगता जयंत जी कि राहुल देव बर्मन जी की संगीत की जो विशेषता है ना, वो ये है कि वो नित युवा संगीत है हमेशा।
1: जी जी
0: आज तक भी जो आज की जो नई पीढ़ी है, वो भी आरडी बर्मन के संगीत को लेकर उतनी ही उत्साही है जितनी पुरानी पीढ़ी थी, या 60, 70 और 80 के दशक में उस संगीत को जितना पसंद किया उस पीढ़ी ने, उतना ही पसंद आज की पीढ़ी भी कर रही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और
1: और विविधता ये जो शब्द है इसको सार्थक किया है आरडी बर्मन के संगीत ने।
0: जी हाँ, चाहे
1: आप उनका
0: वो
1: पहला गाना ले लीजिए या उनका आखिरी गीत कंपोजिशन ले लीजिए।
0: जी
1: हाँ
0: एक लंबा दौर आरडी बर्मन साहब का रहा संगीत में, और पहला गीत जिसका जिक्र भी है जयंत जी कर रहे हैं, छोटे नवाब का
1: बिल्कुल
0: गीत जो
1: बिल्कुल।
0: उनकी पहली फिल्म थी, घर आ जाए घेराए बदरा सावरिया।
1: हाँ
0: आहा
1: रोंगटे
0: हा,
1: खड़े हो गए
0: जी हाँ,
1: देखिए।
0: शास्त्रीय संगीत की छाप उसमें स्पष्ट दिखाई देती है। और फिर उसके बाद तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, सर्वाधिक प्रयोगधर्मी संगीतकार भी राहुल देव बर्मन रहे।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। न केवल संगीत रचनाओं में जिस तरह के वाद्य इस्तेमाल किए जाते थे, वो कई बार ऐसे वाद्य होते थे जो लोक गीतों में हमें सुनाई देते हैं,
0: बिल्कुल
1: या कई बार नए तरह का वाद्य वो बनाते थे, यानी कि बाल्टी में किसी यंत्र को डुबा करके और उसमें से आवाज निकालना, लोहे की किसी चीज को पानी में डुबा करके उससे आवाज निकालना, ऐसे कई प्रयोग उन्होंने किए थे।
0: बहुत इनोवेटिव जिसे कहा
1: जी
0: जाता
1: जी
0: है,
1: जी
0: बहुत नए नए प्रयोग करने वाले आरडी बर्मन साहब के बारे में हम आपको क्या बताएं। हमें तो ऐसा लगता है जैसे राहुल देव बर्मन संगीत नहीं रचते थे, संगीत का एक अनुष्ठान करते थे, और उस अनुष्ठान का जो उद्यापन है वो हुआ था 1942 अ लव स्टोरी के
1: वाह
0: साथ,
1: वाह
0: जो उनकी आखिरी फिल्म थी। जयंत जी,
1: जी
0: एक ऐसे प्रयोगधर्मी संगीतकार राहुल देव बर्मन जिनका जन्मदिन।
2: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। ये है निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अवसर पर जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में भारत के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के संबोधन का सीधा प्रसारण। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: करके तो पाँच मिनट लग जाएगा
1: देना है
2: साइलेंट में रखो पहले नीरज
1: ये दरवाजा लटकवा देना भैया दरवाजा थोड़ा सा रहिएगा
3: नमस्कार श्रोताओं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के इस भव्य और ऐतिहासिक

36वें दीक्षांत समारोह में आपका स्वागत है। पंडित कुंजीलाल दुबे प्रेक्षागृह का पूरा माहौल इस समय उत्साह, ऊर्जा, शैक्षणिक गरिमा से सराबोर है। श्रोताओं, हम ये भी बतलाना चाहेंगे कि आज का दिन इस विश्वविद्यालय के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होने जा रहा है। लगभग दो दशकों यानी 20 साल के एक लंबे अंतराल के बाद देश की प्रथम नागरिक माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इस परिसर में कदम रखेंगी। हम अपने सुनने वालों को ये भी बतलाना चाहेंगे कि इससे पहले साल 2006 में मिसाइल मैन और तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यहाँ आए थे। आज विद्यार्थियों के चेहरे पर वो चमक और खुशी साफ देखी जा सकती है। समारोह में प्रतिभा, परिश्रम और उपलब्धियों का भव्य सम्मान होगा। 66 गोल्ड मेडल और 160 उपाधियां दी जाएंगी। हया नजर में दामन पाक जरूरी है, हया नजर में दामन पाक जरूरी है, जो भी है बात साफ साफ जरूरी है। हम सब बुलंदी पर पहुंचे, मगर इससे पहले माँ नर्मदे का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। माँ नर्मदे को हम प्रणाम करते हैं और आप सभी सुनने वालों का फिर से वंदन, अभिनंदन, स्वागत करते हैं। और ये कहते हैं कि सोच को बदलोगे सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदलोगे सितारे बदल जाएंगे, नज़रों को बदलोगे नज़ारे बदल जाएंगे। कश्ती को बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशाओं को बदलोगे तो किनारे बदल जाएंगे। आगे हम ये भी कहना चाहेंगे कि तूफानों में किनारे मिल जाते हैं, तूफानों में किनारे मिल जाते हैं, ज़िंदगी में सहारे मिल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी में बहुत प्यारे मिल जाते हैं। आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर यानी RDU के 36वें ऐतिहासिक दीक्षांत समारोह की आयोजना है। हम सब यहाँ पर इस ऐतिहासिक समारोह का हिस्सा बनने जा रहे हैं। हम खुशकिस्मत हैं। हम ये भी बतलाना चाहेंगे कि इस दीक्षांत समारोह में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के माननीय राज्यपाल और कुलाधिपति श्री मंगू भाई पटेल करेंगे। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव और उच्च शिक्षा मंत्री माननीय श्री इंदर सिंह परमार विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। श्रोताओं, खास बात यह है कि इस बार रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में भारत शब्द का व्यापक उपयोग विशेष चर्चा का विषय बना हुआ है। समारोह से जुड़ी डिग्रियों, स्वर्ण पदकों, प्रमाण पत्रों, आमंत्रण पत्रों और अन्य आधिकारिक दस्तावेजों में इंडिया के स्थान पर भारत शब्द को प्रमुखता दी गई है। कुलगुरु प्रोफेसर राजेश कुमार वर्मा का इस संबंध में कहना है कि विश्वविद्यालय के साथ भी भारत जोड़ा गया है, जिससे समारोह की पहचान भारतीयता, सांस्कृतिक मूल्यों और राष्ट्रीय गौरव से जुड़ती दिखाई दे रही है। प्रोफेसर वर्मा हमें ये भी बता रहे हैं कि अंग्रेजी में तैयार दस्तावेजों में भी भारत का उल्लेख किया गया है। यह पहल देश की सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय स्वाभिमान को सम्मान देने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास है। श्रोताओं, हम आपको ये भी बतलाना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय यानी RDVV की स्थापना 12 जून 1956 को हुई थी। मूल रूप से जबलपुर विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित इस संस्थान को 16वीं सदी की महान गौंड वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर 1983 में इसका नाम रखा गया है। श्रोताओं, रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को चंदेल राजा कीर्ति सिंह के परिवार में कालिंजर महोबा में हुआ था। उनका विवाह गौंड वंश के राजा संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह से हुआ था। पति की असामयिक मृत्यु के बाद उन्होंने अपने अल्पायु पुत्र वीर नारायण को गद्दी पर बैठाकर गढ़ा मंडला का शासन संभाला। रानी ने कई युद्ध जीते। 24 जून 1564 को रानी दुर्गावती ने मुगल सेनापति आसफ खां के खिलाफ एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा था। हार की संभावना देखकर और आत्मसमर्पण करने के

जाए उन्होंने खुद को कटार मारकर अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान दिया था। ऐसी ही वीरांगना के नाम पर हमारे जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय रखा गया है। जी हाँ, आज हम इस ऐतिहासिक 36वें दीक्षांत समारोह का हिस्सा हैं, ये हमारे लिए भी गौरव की बात है। श्रोताओं, हमें ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि 7वीं बार हमारी संस्कार धानी जबलपुर में माननीय राष्ट्रपति जी का आगमन हो रहा है। इससे पहले 6 बार माननीय राष्ट्रपति जी हमारे जबलपुर आ चुके हैं। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 28 अक्टूबर 1948 को शहर आए थे। उन्होंने शहीद स्मारक बनाने की आधारशिला रखी थी। हालांकि जब वे जबलपुर आए थे तब राष्ट्रपति के पद पर नहीं थे, लेकिन उनका नाम पहले राष्ट्रपति के लिए तय हो गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार शहर आए। पहली बार 1 मार्च 1958 को आए थे। उपराष्ट्रपति रहते हुए वे यहाँ जबलपुर विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल हुए थे। राष्ट्रपति बनने के बाद 20 फरवरी 1965 को वे जब नागपुर जा रहे थे उस दौरान कुछ समय के लिए जबलपुर रुके थे। हमारे देश के 9वें राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा वर्ष 1997 में शहर आए थे। वे जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के 50वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। हम यहाँ ये भी बतलाना चाहेंगे कि देश के 13वें राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी 27 जून 2014 को जबलपुर आए थे। वे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के 12वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए थे। हमें ये भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने राज्य न्यायिक अकादमी में आयोजित परिचर्चा में हिस्सा लिया था। वे मां नर्मदा की महाआरती में शामिल होने वाले देश के पहले राष्ट्रपति बने थे। श्रोताओं, हम यहां ये भी बतलाना चाह रहे हैं कि हमारा जबलपुर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 20 साल बाद माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय मौजूदगी में ये हॉल दमक उठेगा। आपको जानकर ये अच्छा लगेगा कि माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 3री बार जबलपुर आई हैं। इससे पहले वे 27 सितंबर 2023 को एक दिवसीय दौरे पर आई थीं। तब उन्होंने ट्रिपल ITDM परिसर से डिजिटली हाईकोर्ट की नई बहुमल्या इमारत का शिलान्यास किया था। वे पहली बार 30 अप्रैल 2017 को जबलपुर आई थीं। तब वे झारखंड की राज्यपाल थीं। इस दौरान आपने भेड़ाघाट की संगमरमरी वादियों में पंचवटी से बंदरकूनी तक के बीच नौका विहार किया था। हम फिर से आपको बतलाना चाह रहे हैं, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि हैं भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अध्यक्षता करेंगे मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल और कुलाधिपति श्री मंगूभाई पटेल। विशिष्ट अतिथि होंगे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उच्च शिक्षा मंत्री माननीय श्री इंदर सिंह परमार। विश्वविद्यालय का पंडित कुंजीलाल दुबे प्रेक्षागृह इस ऐतिहासिक समारोह का साक्षी बनेगा। इस समारोह में 20 चयनित विजेताओं को स्वर्ण पदकों से सम्मानित किया जाएगा। शेष पदक विजेताओं उपाधि धारकों को प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री माननीय इंद्र सिंह परमार द्वारा स्वर्ण पदक और उपाधियां बाद में प्रदान की जाएंगी। वाकई पदक विजेता प्रतिभावान छात्र छात्राएं आतुर हैं जिन्हें आज पदक और उपलब्धियां मिलेंगी। माना कि ये शहर पत्थरों का है, माना कि ये शहर पत्थरों का है, मगर बाशिंदों के दिल तो धड़कते होंगे। कलकल करती मां नर्मदे के किनारे बसी ऋषि जावाली की नगरी, आचार्य विनोबा की संस्कार धानी जबलपुर, जिसने कला, साहित्य, चिकित्सा, विज्ञान और धार्मिक क्षेत्र के लिए एक से बढ़कर एक विद्वान, मनीषी, आचार्य, कवि, साहित्यकार, संगीतकार दुनिया को प्रदान किए हैं। इसी संस्कार धानी में आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक विजेताओं को सम्मानित किया जाना वाकई गौरव की बात है। जीवन में अद्भुत संसार के लिए त्याग, श्रम की उड़ान बहुत आवश्यक होती है। शेष वक्त की पाबंदी, लगन और शौक

कामयाबी दिलाते हैं। वाकई स्वर्ण पदक विजेताओं ने अपनी मेहनत की उड़ान पर सफलता प्राप्त की है, जो आज सम्मानित हो रहे हैं, वाकई बधाई के पात्र हैं। इरादे नेक हो तो मंजिल आसान होती है, इरादे नेक हो तो मंजिल आसान होती है, सच्ची लगन हो तो रास्ते भी सरल होते हैं। इसलिए कहता हूँ, पीछे मत देख, ना शामिल हो गुनहगारों में, सामने देख के मंजिल है तेरे अपने पैरों में, बात बनती है गर दिल में हो इरादे अटल। कुछ ऐसे ही सच्चे अटल इरादे लेकर चलते ये पदक विजेता और अपने अपने क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं और कुछ नया कर राष्ट्र के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। हम आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश का एक प्रमुख NAAC ए ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय है। यह उच्च शिक्षा अनुसंधान और भिन्न भिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान करता है। यहाँ से तालीम लेने वाले छात्र छात्राएं देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हमने शुरू में श्रोताओं बात की कि भारत शब्द जोड़ा गया, और जब भारत की बात आती है तो हमें हमारा मन ये कहने को अग्रसर होता है, प्रफुल्लित होता है, और हम ये कह सकते हैं कि हमारा भारत देश एक आह्लाददायक अनुभूति और अपनेपन से भरा एक एहसास है। इसके वनों के पत्तों की मर्मर ध्वनि, पक्षियों का

0: है, नदियों का जल जैसे अमृत है, ऐसी अतुलित संपदा से परिपूर्ण अपने भारत को हम शत शत नमन करते हैं।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
0: हम अपने सुनने वालों को ये भी बतलाना चाहेंगे कि 36वें दीक्षांत समारोह में हमारे अतिथिगण कुछ ही समय पश्चात मंचासीन होने वाले हैं।

ये आकाशवाणी भोपाल है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का संबोधन। तब तक सुनते हैं ये देशभक्ति गीत।

0: जी हाँ श्रोताओं, 36वां दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि कुछ ही समय पश्चात मंचासीन होने जा रहे हैं।
1: वो भी वाला था। मॉडल मॉडल

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय क्यों रखा गया है? आरडीवीवी की स्थापना 12 जून 1956 को हुई थी। मूल रूप से जबलपुर विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित इस संस्थान को 16वीं सदी की महान गौंड वीरांगना रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि देने के लिए 1983 में इसका नाम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय रखा गया। श्रोताओ, रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1924 को चंदेल राजा कीर्ति सिंह के परिवार में कालिंजर महोबा में हुआ था। उनका विवाह गौंड वंश के राजा संग्राम सिंह के पुत्र दलपत शाह से हुआ था। पति की असामयिक मृत्यु के बाद उन्होंने अपने अल्पायु पुत्र वीर नारायण को गद्दी पर बैठाकर गढ़ा मंडला का शासन संभाला। रानी ने कई युद्ध जीते। 24 जून 1964 को रानी दुर्गावती ने मुगल सेनापति आरसब खान

बड़ा हर्ष का विषय है कि दीक्षांत यात्रा प्रेक्षागृह में दाखिल हो चुकी है, आ चुकी है। प्रेक्षागृह हॉल चमक रहा है, दमक रहा है। दीर्घा पंक्ति में मंत्रीगण, विधायकगण, मेयर सारे बैठे हुए हैं ड्रेस कोड के साथ। वे छात्र छात्राएं आतुर हैं, खुशी से झूम रहे हैं। और देखिए करतल ध्वनि से महामहिम राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी का स्वागत किया जा रहा है। और ये हाल इस गौरवमयी उनकी उपस्थिति का बन रहा है साक्षी।

माननीय राष्ट्रपति जी, कुलाधिपति जी, मुख्यमंत्री जी एवं सम्माननीय अतिथिगणों से सादर अनुरोध है कि दीप प्रज्वलन करने की कृपा करें।

0: देवी की आराधना के साथ आज का कार्यक्रम शुरू हो चुका है।
1: माननीय कुलाधिपति जी से सादर अनुरोध है कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के 36वें दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।
2: अनुमति है।
1: माननीय कुलगुरु जी से विनम्र अनुरोध है कि 36वें दीक्षांत समारोह का स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें।
3: रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में आज के मुख्य अतिथि भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, समारोह की अध्यक्षता कर रहे मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री मंगूभाई पटेल जी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मध्य प्रदेश के माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी का मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ।

साथ ही समारोह में पधारे हमारे मध्य प्रदेश शासन के माननीय मंत्री महोदय, राज्यसभा सांसद जी, लोकसभा सांसद जी, सभी विधायक गण, विभिन्न विश्वविद्यालय से पधारे हुए कुलपति गण, मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न सम्मानित अधिकारी, स्वर्ण पदक प्रदान करने वाले विभिन्न दानदाता, विश्वविद्यालय के कोर्ट के, कार्य परिषद के, विद्या परिषद के सभी सम्मानित सदस्य, अन्य गणमान्य नागरिक, समस्त अतिथिगण, प्राध्यापकगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मीडिया के सभी साथी एवं आमंत्रित जो कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, साथ ही वे छात्र छात्राएं जो गोल्ड मेडल शोध उपाधि प्राप्त करने वाले हैं, उन सबको मैं राजेश कुमार वर्मा कुलगुरु हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। अत्यंत गौरव का विषय है कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जी का जो दुर्गा विश्वविद्यालय का नाम उनके नाम पर संचालित है, 24 जून को 462वां बलिदान दिवस है। मैं रानी दुर्गावती जी के अद्भुत शौर्य पराक्रम का स्मरण करते हुए उनके चरणों में सादर वंदन करता हूं। 27 जुलाई 2024 का दिन विश्वविद्यालय के इतिहास का एक स्वर्ण दिन लिखा गया, जिस दिन विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार नेक द्वारा विश्वविद्यालय को एक ग्रेड प्रदान किया गया, जो कि ए प्लस से केवल 0.04 दूर रहा, अन्यथा ए प्लस ग्रेड प्राप्त होता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में विश्वविद्यालय ने रोजगार उन्मुख शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत कौशल विकास आधारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आरंभ किए, जिसमें प्रमुख रूप से बांस से विभिन्न प्रोडक्ट तैयार करना, हस्तशिल्प, शिल्पकला, इंटीरियर डिजाइन, मूर्ति निर्माण, सिलाई प्रशिक्षण, फैब्रिक प्रिंटिंग, ज्वेलरी मेकिंग की कार्यशालाएं, रोजगार मेला आदि आयोजित किए गए। शिक्षा मंत्रालय राज्य भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालय में संचालित डिजाइन इनोवेशन सेंटर को अब तक 10 करोड़ की ग्रांट मिल चुकी है व 6 पेटेंट प्राप्त कर चुका है। नीति आयोग द्वारा विश्वविद्यालय को अटल कम्युनिटी इंक्यूबेशन सेंटर के भी प्रदान किया गया, जिसमें 2.5 करोड़ की ग्रांट प्राप्त होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालय को भौतिक विज्ञान का नोडल बनाया गया है, जिसके अंतर्गत भौतिक विज्ञान का पाठ्यक्रम तैयार करना और उसकी कार्यशालाएं आयोजित करना और पुस्तकें तैयार करना विश्वविद्यालय के टीम के हाथ में है। वैदिक गणित के लिए शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास एवं अन्य संस्थान सी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और अन्य संस्थानों से विश्वविद्यालय द्वारा MOU किए गए हैं। नए पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय में 2024-25 से लगातार आरंभ किए गए। BTech, कंप्यूटर, BSc, BCom के अंतर्गत परंपरागत पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय में आरंभ किए गए और इन पाठ्यक्रमों के कारण 2024-25 में विश्वविद्यालय में प्रवेश में विद्यार्थियों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। इन दो वर्षों में 2023 की तुलना में लगभग 100% बढ़ाते हुए विश्वविद्यालय की संख्या दोगुनी हो गई विद्यार्थियों की संख्या। विश्वविद्यालय के प्रति विद्यार्थियों का बढ़ता हुआ विश्वास विश्वविद्यालय का बढ़ता हुआ गौरव है। हमें विश्वास है कि 2026-27 के प्रवेश में हम पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। 2024 में हमने कुछ लक्ष्य स्थापित किए थे, समय पर परीक्षा, समय पर परिणाम। इसमें हमने कुछ परिणाम जिस दिन सुबह परीक्षा समाप्त हुई उसी दिन शाम को परिणाम घोषित कर दिए। ऐसे कुछ परिणाम 2025 में परीक्षा समाप्ति के दिन शाम को 3 दिन में और 5 दिन में घोषित कर दिए और आने वाले वर्षों में हम इस रिकॉर्ड को बनाए रखते हुए नए रिकॉर्ड स्थापित करने का संकल्प लेते हैं। जुलाई 2025 में विश्वविद्यालय ने PhD प्रवेश परीक्षा आयोजित की। 28 विषय की परीक्षा में 11 विषय के परिणाम परीक्षा के दिन शाम को हमने घोषित कर दिए और 17 विषय के परिणाम दूसरे दिन जारी कर दिए। इसका मतलब ये हुआ कि 28 घंटे में विश्वविद्यालय ने 28 परिणाम जारी किए, जो कि एक रिकॉर्ड है विश्वविद्यालय के लिए। डिजिटल गवर्नेंस के अंतर्गत विश्वविद्यालय की प्रवेश फॉर्म, परीक्षा फॉर्म, प्रवेश पत्र, फीस जमा करना, परीक्षा परिणाम, प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन पूर्णतया ऑनलाइन किया गया है और भविष्य में हम उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन डिजिटल ऑनलाइन कराने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। विज्ञान भारती द्वारा महाकौशल मेले में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के स्टॉल को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ था, यह विश्वविद्यालय के लिए उपलब्धि का विषय है। युवा कार्यरत अतिथि विद्वानों की सक्रियता से आधुनिक शैक्षणिक पद्धतियां, डिजिटल संसाधनों का उपयोग, अध्ययन अध्यापन के अनुरूप वातावरण निर्माण के द्वारा विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता में वृद्धि हुई है। आज विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर माननीय अतिथियों की उपस्थिति में हम यह घोषणा करते हुए बड़े गर्व की अनुभूति हो रही है कि विश्वविद्यालय के 142 छात्र छात्राओं को 240 स्वर्ण पदक प्राप्त हो रहे हैं और 179 PhD धारकों को और 3 डीलिट शोधार्थियों को 1 DSc और 1 मानद उपाधि आज दी जा रही है।

0: विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में एक विशेष बदलाव चर्चा का विषय बना हुआ है, जो 3 दिन से राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेंड कर रहा है। समारोह से जुड़ी लगभग सभी आधिकारिक सामग्री इंडिया के स्थान पर भारत शब्द का प्रयोग किया गया है। डिजिटल डिग्रियां, स्वर्ण पदक, प्रमाण पत्र, दस्तावेजों में सब में भारत का शब्द का उपयोग किया गया, इंडिया शब्द का उपयोग हटाया गया। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालय के नाम के साथ भी भारत शब्द जोड़ा गया है, जिससे समारोह की समग्र पहचान भारतीयता, राष्ट्रीय गौरव के भाव से जुड़ाई देती है। मैं एक बार पुनः माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय कुलाधिपति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी और आप सभी अतिथियों का इस कार्यक्रम में सादर वंदन अभिनंदन करता हूं और उपस्थित छात्र छात्राओं को हृदय से शुभकामना देता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम।
1: माननीय कुलगुरु जी से सादर अनुरोध है कि माननीय भारत के राष्ट्रपति जी, माननीय कुलाधिपति जी, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत करें।

0: प्रतीक चिन्ह से सम्मानित करते हुए विश्वविद्यालय की ओर से डॉक्टर मोहन यादव जी प्रतीक चिन्ह लेते हुए, विश्वविद्यालय की ओर से प्रतीक चिन्ह दिया जा रहा है राज्यपाल कुलाधिपति माननीय श्री मंगू भाई पटेल जी को।
1: गौरव की अनुमति से मैं डॉक्टर रविशंकर सोनवाल, कुल सचिव रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के 36वें दीक्षांत समारोह की कार्यवाही प्रारंभ करता हूं। माननीय कुलगुरु जी, कृपया कला संकाय के अंतर्गत श्री विजय दत्त श्रीधर को डीएड उपाधि एवं वर्ष 2023-24 एवं 24-25 में स्नातक एवं स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थियों विद्यार्थियों को उपाधि, शोधार्थियों को शोध उपाधि एवं वर्ष 2021 एवं 21-22 के छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक प्रदान करने की अनुमति माननीय कुलाधिपति जी से प्राप्त करने की कृपा करेंगे।
2: माननीय कुलाधिपति जी, कृपया अनुमति प्रदान करें।
1: माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, अब मैं आपके सम्मुख उन छात्र छात्राओं को प्रस्तुत कर रहा हूं जिन्होंने विभिन्न संकायों में एक से अधिक स्वर्ण पदक प्राप्त करने की योग्यता अर्जित की है। आपसे अनुरोध है कि कृपया इन छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक एवं योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करेंगे। स्वर्ण पदक वर्ष 2021, दीपांशु मिश्रा एमए हिंदी साहित्य परीक्षा 2 स्वर्ण पदक। कल्याणी त्रिपाठी एमए संस्कृत महिला परीक्षार्थी। तारियां बजती रहें। कल्याणी त्रिपाठी एमए संस्कृत महिला परीक्षार्थी 2 स्वर्ण पदक। ऋषिका तिवारी एमए दर्शन शास्त्र परीक्षा 3 स्वर्ण पदक। शिवानी साहू बीए हिंदी परीक्षा 2 स्वर्ण पदक। नितिन तिवारी एमए इतिहास 2 स्वर्ण पदक।

पलक सोनी एमएससी भौतिक शास्त्र महिला परीक्षार्थी 2 स्वर्ण पदक। प्रियंका साहू एमएससी कार्बनिक रसायन परीक्षा 2 स्वर्ण पदक।

श्री शिवेंद्र सिंह एमए दर्शन शास्त्र परीक्षा 3 स्वर्ण पदक। देवेंद्र मिश्रा बीए दर्शन शास्त्र परीक्षा 2 स्वर्ण पदक।

मुक्ता मिश्रा एमए प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व महिला परीक्षार्थी 2 स्वर्ण पदक। सैजली नायक एमए राजनीति विज्ञान परीक्षा 2 स्वर्ण पदक।

0: प्रदेश के मुखिया हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वे हम उनको आशीर्वचन प्रदान करें।
1: रानी दुर्गावती की नगरी, मां नर्मदा की जिस नगरी पे विशेष कृपा हो वो अद्भुत जबलपुर, जिसकी कारण से मां की कृपा से काले पत्थर की चट्टान भी संगमरमर की हो जाती है, इतना सौभाग्यशाली नगर ये जबलपुर आज गौरवान्वित हो रहा है हमारे बीच, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के सबसे बड़े शासन के उच्च पद पर विराजमान माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, आज एक नया इतिहास बन रहा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आप

वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दो कारणों से ये खुशी डबल हो रही है। आज हमारे बीच मंच पर विराजमान माननीय राज्यपाल श्रीमान मनमोहन पटेल साहब, शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी और बीते समय माननीय राष्ट्रपति जी, हमने अपने उस गौरवशाली 5000 साल पुराने इतिहास को जीवंत करते हुए कि भगवान कृष्ण और सुदामा की ये प्रदेश की एक विशेष आती रही है कि हमारे यहाँ गुरु परंपरा से कुलपति गुरु आश्रम को गौरवान्वित करते रहे हैं। ऐसे में हमने देश के अंदर मध्यप्रदेश के सभी कुलपतियों के नाम कुलगुरु पर रखने का निर्णय किया। इसलिए इस रानी दुर्गावती के कुलगुरु माननीय राजेश जी, सभागार में मौजूद सभी आमंत्रित अतिथिगण, प्राध्यापकगण, प्यारे मित्रों, पत्रकार साथियों और सबसे ज्यादा बधाई वो सारे युवा मित्रों जिनके भरोसे से हमारा ये राज्य और अपनी आपकी प्रतिभा क्षमता से न केवल राज्य बल्कि देश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और ताकत से आगे बढ़ेगा। ये आज सौभाग्य की बात, दीक्षांत समारोह और दीक्षांत समारोह दोहरी खुशी लेकर के आया। हमारे बीच हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी स्वयं अपने हाथों से नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दे रही, वहीं दूसरी ओर रानी दुर्गावती का वो गौरवशाली अतीत जो मुगल सत्ता के बीच अपने जीवन की इस देश की आजादी के लिए हमारी इस आदिवासी संस्कृति का भी वो सूर्य के समान नक्षत्र की भांति अपनी क्षमता बुद्धि योग्यता से उस समय के बहुत बड़े शासनकर्ता अकबर के सामने भी अपनी क्षमता से 50-50 युद्ध लड़ करके हर बार जीत हासिल करके पूरे देश को गौरवान्वित करने का गौरवशाली अतीत लेके चलती और उससे आगे बढ़ करके एक युद्ध ऐसा होता है जो आज के दौर में हमको समसामयिक होगा। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब नवाचारों के बलबूते पर टेक्नोलॉजी का नुकसान क्या होता है और टेक्नोलॉजी का फायदा क्या होता है, ये उस दौर के समय हमारे अपने देश के लिए इतिहास बना था जब टेक्नोलॉजी के अभाव में तोपों के सामने युद्ध करने में हाथी सहित सेना को युद्ध करने में जो कठिनाई होती है, ऐसे अजय योद्धा को जब युद्ध पहली बार हो रहा और तोपों की गर्जना से हाथी भड़क करके युद्ध के नकारात्मक पक्ष की तरफ ले जा रहे हैं, ऐसे में रानी दुर्गावती ने जो अपनी बात अपने महावत सिंह सैनिकों को कहा था कि किसी भी हालत में मेरा शरीर ये स्वाधीनता के लिए, मेरा शरीर भारत की अजर अमर लड़ाई के लिए, दुश्मनों के हाथों में मेरा शरीर न जाने पाए और ऐसे में कोई कारण से युद्ध के अगर हम हारने की तरफ पहुंचते हैं क्योंकि तोपों की लड़ाई से हमको लड़ने की आदत नहीं, अगर कोई कारण से ऐसी स्थिति बने तो अपने सैनिक जो हाथी पे बैठे उससे कहा था कि ये खंजर लेना और जैसे हम हारने के कगार पे पहुंचे तो मेरा प्राणांत कर देना। घटना ऐसी घटती है कि कोई कारण से वास्तव में स्थिति विकट हो जाती, रानी की जान संकट में पड़ जाती, एक तीर आता तो उनकी आंखें निकाल के ले जाता, दूसरा तीर उनकी दाहिनी आंख को तीर के निकाल के ले जाता, ऐसे में लगता है कि अब जीवन बचना मुश्किल है, युद्ध का परिणाम भी सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन कड़क करके रानी फिर अपने सैनिक से कहती, तेरे को क्या आज्ञा दी थी? सैनिक हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, महारानी मैंने आपका नमक खाया, मैं आपके बेटे समान हूँ, अपनी माँ पे मैं हथियार कैसे उठा सकता हूँ? कड़क करके रानी कहती है कि तुमको जो बताया वो बताया, उसको आज्ञा का पालन करो और उसकी घबराहट देखकर खुद अपने हाथ से अपना प्राणांत करके जबलपुर सहित पूरे देश को गौरवान्वित करती है कि दहय बलिदान देना पड़े। जन्म और मृत्यु के क्रम में जन्म तो एक बार होगा लेकिन जो मृत्यु को गौरवान्वित कर दे, वाकई वो रानी दुर्गावती का विश्वविद्यालय आज एक गौरवशाली इतिहास को लिख रहा है। जब 5-5 स्वर्ण पदक लेकर के बेटी हमको सीना 56 इंच का करने का मौका दे रही, कितना अच्छा लगता है। कोई 3 स्वर्ण पदक, कोई 2 स्वर्ण पदक, जो नई प्रतिभाओं के बलबूते पर विश्वविद्यालय अपना नया इतिहास लिख रहा है, ये हमारे लिए गौरवशाली क्षण है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब 12वां वर्ष उनकी सफलता के नए कीर्तिमान रच रहा है, ऐसे में विश्वविद्यालय में शिक्षा के प्रांगण, माँ सरस्वती के प्रांगण में आज ये नया सूर्य उगा है जब शासन के सर्वोच्च पद पर बैठी महामहिम राष्ट्रपति जी हमारे बीच मध्यप्रदेश की युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दे रही और हमारे अपने सरकार के माध्यम से

0: हमने पहले उच्च शिक्षा में सकल पंजीयक दर से आगे बढ़ते हुए हमने अपना जो सकल पंजीयक दर है उसको राष्ट्रीय प्रतिमान से भी आगे बढ़ते हुए 28.9% पे ले गए। आज स्कूल शिक्षा का ड्रॉप आउट भी जीरो की तरफ हम ले गए। सरकार बनने के साथ ही हमने 3 नए शासकीय विश्वविद्यालय खोलने का प्रयास किया। कई प्रकार से शासन की व्यवस्थाओं में ये वर्ष हमने किसान कल्याण वर्ष भी मनाया। इसके माध्यम से एग्रीकल्चर के अलग अलग संकायों के बलबूते पर हमारे विश्वविद्यालयों में भी, चूंकि कृषि प्रधान हमारा प्रदेश है, ऐसे में कृषि से रुचि बढ़े लोगों की, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर सब सेक्टर में बढ़ाते हुए तमाम प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने का उपक्रम हमने प्रारंभ किया है। मैं अपनी ओर से आज के इस अवसर पर सामने बैठी हमारी यहाँ की पूर्व मंत्री हमारी बनर्जी मैडम को भी आपको भी प्रणाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये क्रम और गौरवशाली इतिहास ये जारी रहेगा। आपका आशीर्वाद हमारा साथ सदैव रहेगा। मैं एक बार फिर आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मेरे साथ प्रेम से बोलो भारत माता की। अब मैं आमंत्रित करता हूँ माननीय कुलाधिपति श्री मंगू भाई पटेल जी को कि वे हमें आशीर्वचन प्रदान करें।
1: सभी को नमस्कार। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का 36वां दीक्षांत समारोह में अपने बीच उपस्थित भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मंत्री उच्च शिक्षा विभाग श्री इंद्र सिंह परमार जी, लोकसभा राज्यसभा के सांसद श्री विधायक गण, कुलगुरु राजेश वर्मा जी, अन्य कुलगुरु भी यहाँ उपस्थित है, सभी माता जयश्री बनर्जी, जो यह मैं कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नड्डा जी रहे उनकी सास है, कई बार उनको मिलना हुआ, आज यहाँ उपस्थित है, उपस्थित संकाय अध्यक्ष, विभिन्न परिषद के सदस्यगण, अधिकारीगण, उपस्थित अभिभावकगण एवं महानुभाव, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, माँ नर्मदा की पुण्य सलीला से पावन संस्कार धानी एवं संग मरमर नगरी जबलपुर में माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का आगमन हम सभी के लिए हर्ष, सम्मान और गौरव का अनुभव क्षण है। प्रदेशवासियों की ओर से आपका श्रद्धापूर्वक हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आपकी गरिमामय उपस्थिति विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को ऐतिहासिक गरिमा और भव्यता से आलोकित कर रही है। समारोह में उपाधि और पदक प्राप्त करता विद्यार्थी विद्यार्थिनियों, उनके गुरुजन और परिजनों को बधाई और शुभकामना देता हूँ। इस पावन अवसर पर गौड़बाना की सौरवशाली धरा की अमर वीरांगना, अदम्य साहस, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति की अनुपम प्रतीक महारानी रानी दुर्गावती को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ, जिनका जीवन जनजातीय अस्मिता, प्रजा कल्याण, नारी शक्ति के त्याग, पराक्रम, नेतृत्व, क्षमता और आत्मगौरव का अमर गान है, जो आज भी जनजातीय समुदाय सहित देश की प्रत्येक बेटी और युवा पीढ़ी की प्रेरणा का केंद्र है। कहते हुए गर्व का अनुभव होता है कि देश की सर्वोच्च और सर्वाधिक जिम्मेदारी का पालन कर रही श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की जनजातीय समाज की उस गौरवशाली परंपरा को नई ऊंचाइयां प्रदान कर रही है, जिसका उज्जवल प्रतीक रानी दुर्गावती है। इसी प्रेरणादायी परंपरा से साक्षी दीक्षांत समारोह में उपस्थित युवा छात्र छात्राओं से कहूंगा कि आपकी डिग्री भारत के भविष्य के निर्माण, नवाचार और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाली शक्ति है। आज जब आप जीवन की नई यात्रा प्रारंभ

0: कर रहे हैं, तब समय की पुकार है कि आप रानी दुर्गावती के शौर्य और लोक कल्याण के आदर्शों और जीवन संघर्ष में प्रेरणा प्राप्त करें। मैं यह कहना चाहूँगा कि यहाँ बहुत से ट्राइबल बच्चे हैं, जब हम आए अंदर तो कई जनजातीय जननायकों का फोटा भी हमने देखा। उन्होंने अपने जीवन में जो कार्य किए वो जनजाति समाज के लिए गौरवान है। मैं ये समझना चाहूँगा कि आप पढ़े लिखे, आज दीक्षांत समारोह आपका हुआ, कल अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, मगर जनजाति समाज के कई ऐसे काम है जो हमको करना है। हर एक यूनिवर्सिटी, जब मैं राज्यपाल पद पे आया तभी हर एक यूनिवर्सिटी को मैंने बोला कि आपको 5-5 गांव गोद लेना है, जिसकी वजह से बच्चे को भी सीधे गांव में जाए और परिस्थिति देखे कि जनजाति समाज का क्या क्या करना जरूरी है, और उसमें आदत बन जाए कि समाज को हमको कुछ करना है। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार की अनेक योजना है, मगर पीएम जनमन योजना अति पिछड़ा के लिए, बेगा, भारिया और सहारिया करीब करीब मध्य प्रदेश में 14 लाख से ज्यादा है, उनके लिए केंद्र सरकार ने 24,000 रुपये का प्रावधान किया था। 9 जितने डिपार्टमेंट का काम उसमें हो रहा था। कई ऐसे सहारिया, बेगा, भारिया के स्थान पे मैं खुद गया हूं कि सरकार की जो कामगिरी चल रही है वो ठीक से चल रही है कि नहीं। और मैं कहना चाहूंगा कि यहां महामहिम राष्ट्रपति जी खुद की यह योजना है, क्योंकि आज तक अति पछात के लिए कोई योजना नहीं बनी। बहुत सालों से मैं ये राजनीतिक जीवन में हूं, मगर पहली बार मैंने ऐसे अति गरीब जो है, अति गरीब आदिवासी है, उनके लिए भी एक योजना बनी और 3 साल चली, बहुत अच्छे काम हुए हैं। धरती आबा ग्राम विकास योजना केंद्र सरकार ने 80,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। मैं समझता हूँ आप पढ़े लिखे हैं, आपके गांव में, मैंने सरकार को भी बोला कि हर तहसील का ऐसा मैप बनाओ कि कौन से तहसील में जीवन जरियात कौन सी चीज करना अभी भी बाकी है, वो मैप बनाएंगे तो हर एक तहसील को और हर एक गरीब आदिवासी को सरकार की योजना का लाभ मिलेगा। इसलिए मैं विद्यार्थियों को आग्रह करूंगा कि आपने अच्छी तरह, आपका माँ बाप ने संस्कार दिया, पालन पोषण किया, ये यूनिवर्सिटी ने आपको अच्छी तरह पढ़ाकर आज डिग्री भी दिए, अच्छी प्लेसमेंट भी मिले, मगर समाज को कभी नहीं भूले, राष्ट्र को कभी नहीं भूले, इतना ध्यान रखते मेरे को अपेक्षा है कि आप उसमें सफल होंगे। आज जब जीवन की नई यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, तब समय की पुकार है कि आप रानी दुर्गावती ने जो हमको प्रेरणा दी है उसी तरह जीने का प्रयत्न करें। आइए हम सब मिलकर लोकतांत्रिक मूल्यों, नारी सशक्तिकरण, विकसित भारत के संकल्प को जीवन का ध्येय बनाकर राष्ट्र की प्रगति में अपना श्रेष्ठ योगदान दे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना देते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूं। आभार। भारत माता की जय।
1: अब मैं आमंत्रित करता हूं माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को कि वे अपना उद्बोधन प्रदान करें।

इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित मध्य प्रदेश के राज्यपाल तथा इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री मंगूभाई पटेल जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, राज्य सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी, विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर राजेश कुमार वर्मा जी, अध्यापकगण, अभिभावकगण, प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ जनप्रतिनिधिगण, देवी और स्वजन, सभी को नमस्कार। आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अवसर पर आप सबके बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही। रानी दुर्गावती जिनके नाम पर ये विश्वविद्यालय स्थापित है, वे अदम्य साहस, शौर्य

और पराक्रम की प्रतिमूर्ति थी। पिछले वर्ष गोंडवाना साम्राज्य की उस महान शासक और वीरंगना की 501वीं जन्म जयंती देशवासियों ने मनाए। संयोग से आज से दो दिन बाद 24 जून को उनकी 462वां बलिदान दिवस है। रानी दुर्गावती भारत के नारी शक्ति के शौर्य के प्रतीक, वे सदैव नारी शक्ति के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। मैं महान रानी दुर्गावती की स्मृति प्रति सादर नमन कर। देवियों और स्वजन, प्रकृति के मनोरम क्षेत्र में स्थित और पूर्ण सलीला माँ नर्मदा के जल से संप्रसित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की 70 वर्ष की यात्रा पर आप सबको गर्व हुआ होगा, हो रहा होगा। इस विश्वविद्यालय के आसपास के क्षेत्र में जनजातीय वनवासी संस्कृति की प्रचुर उपस्थिति है। इस विश्वविद्यालय से जुड़े रानी दुर्गावती के नाम की सार्थकता सभी सिद्ध होगी जो सभी भागीदारी जनजातीय समाज और वंचित तथा पिछड़े वर्ग, विशेषकर इन वर्गों की बेटियों की सशक्तिकरण के लिए प्रयास करें। जनजाति समाज स्वाभिमानी है। आज हम 80 साल स्वाधीनता के 80 साल के तरफ जा रहे हैं, 76 हो गया है, लेकिन वो अपने जगह पे खड़ा है क्योंकि वो स्वाभिमानी है। अपना दुख दर्द, अपना परेशानी दूसरों को बताते नहीं। खुद आके खुद के बारे में लोगों को बताना, सरकार को बताना, उनके भावना से परे, इसीलिए। लेकिन आज कुछ महिलाएं, कुछ बेटियां, कुछ बेटाएं उच्च शिक्षित हो रहे हैं। मैं राज्यपाल महोदय से सहमत, बड़ी बनना सरकार के सहयोग से या खुद के परिश्रम से, अच्छी बात। लेकिन एक अकेला चलना समाज को छोड़ के, ये शायद क्योंकि उसी समाज से हम यहां तक आए हैं, उनके लिए चिंता करना हम लोगों का कर्तव्य है। जो भी बेटियां, जो भी बेटाएं कोई भी बड़े पोस्ट पे रहे, उनके तरफ समय देना। कभी कभी पढ़ाई करके शहरों में रह जाते हैं, गांव जाते नहीं। मुझे लगता है उनके लिए ये सबसे बड़ा समाज के प्रति उपहार होगा, समाज के प्रति जो कर्तव्य होगा, बीच बीच में जाके उनको मार्गदर्शन देना। वो नहीं मानते, नहीं मांगते कि आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता के लिए सरकार बहुत सारे सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सुविधा को कैसे लिया जाए, कहाँ जाए, कैसे करे, वो भी बहुत लोगों को पता नहीं। इस चीज को मार्गदर्शन करना जो आगे बढ़ के उन लोगों का कर्तव्य होता है। गवर्नमेंट अपने हिसाब से वो कर रहे हैं, लेकिन एक जनजाति होने के नाते युवाओं का भी कर्तव्य है कि उन तक जाए, उनको मार्गदर्शन करें। और उनको भी जैसे कि हम सपने देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं 2047 तक देश विकसित होगा। मैं एक चीज को बार बार दोहराती हूं, उसको मैं अभी भी दोहराना चाहती हूं। हम सब जानते हैं पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बहुत बड़ा कवि थे। वो कहते थे भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जगता राष्ट्र। मैं समझती हूं एक राष्ट्रपति पुरुष का जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक, ये सभी प्रदेश का, सभी गांव का जैसे विकास करना जरूरी है, ऐसे ही उसी गांव में, उसी

प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति जो पीछे रह गए उनको आगे लाना शायद सर्वांगीण विकास होगा और 2047 का सपना शायद इससे ही परिपूर्ण होगा। शिक्षा ही किसी भी व्यक्ति या समुदाय के विकास का सबसे प्रभावी माध्यम, इसीलिए जनजातीय समुदाय के शैक्षणिक विकास के लिए प्रयास करना बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय में ग्रामीणों एवं वंचित वर्गों के विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु अनेक विशेष कौशल आधारित पाठ्यक्रमों चलाई जा रहा है। हम सबको मिलकर ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे जनजातीय युवाओं को आधुनिक विकास में भागीदारी करने का अवसर मिले और साथ ही उनकी जनजातीय पहचान व अस्मिता अपने सहज रूप से बनी रहे, क्योंकि अपना आइडेंटिटी, अपना धरोहर, अपना संस्कृति, अपना परंपरा को भूलना नहीं चाहिए। वो बहुत ही पवित्रता चीज है, क्योंकि असरलता और पवित्रता बनाए रखना जरूरी है। जनजातीय समाज के लोगों के कौशल एवं ज्ञान को आधुनिक माध्यमों से प्रसारित करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में इस विश्वविद्यालय जैसी शिक्षण संस्थानों को विशेष प्रयास करना चाहिए। जनजातीय ज्ञान एवं शिल्प परंपरा का व्यापक स्तर अध्ययन सभी देशवासियों के लिए लाभदायक होगा। उच्च शिक्षण संस्थान विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ नवाचार और अनुसंधान के प्रमुख केंद्र भी होते हैं। विद्यार्थियों में रचनात्मक सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और उद्यमिता का विकास करना शिक्षण संस्थान की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। साथ ही संस्थानों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे विद्यार्थियों में भारतीय संस्कृति, परंपरा और भाषाओं के प्रति गर्व के भाव को संचारित करें। ये हम लोग का भारत एक ऐसे देश है, विभिन्न भाषा, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न खान पान पहनाव, लेकिन वो आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी को समालोचित करना ठीक नहीं। आज विदेश से लोग आते हैं, हम राष्ट्रपति भवन में सभी स्टेट का व्यंजन उनको पेश करते हैं, वो बहुत उत्साह के साथ वो खाते हैं और प्रशंसा भी करते हैं। आधुनिकता और परंपरा के समन्वय से देश का संतुलित विकास संभव है। इस विश्वविद्यालय के शैक्षणिक ढांचे एवं पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान परंपरा को समाहित करने की पहल सराहनीय है। मुझे ज्ञात हुआ है कि ये विश्वविद्यालय वैदिक गणित एवं भारतीय शैक्षणिक मूल्यों के प्रचार प्रसार हेतु विभिन्न संस्थाओं के साथ सहयोग के लिए प्रयासरत है, जहां पर नवाचार को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि यहां पर कार्यरत डिजाइन इनोवेशन सेंटर द्वारा पेटेंट भी प्राप्त किए गए। प्यारे विद्यार्थियों के लिए दीक्षांत समारोह जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव। ये अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि आज दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक पाने वाले विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या बहुत अधिक। ये हमारी बेटियों के निरंतर आगे बढ़ने के संकल्प और देश के सर्वांगीण विकास का प्रतीक। आज हमारा देश नव युवकों का देश है। 55% युवा है जिनमें कुछ भी करने का अदम्य साहस है। देश और देशवासियों को आपसे बड़ी अपेक्षाएं हैं और ये अपेक्षाएं तभी पूर्ण होगी जब आपको योग्यता अनुसार रोजगार मिले। इसके लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारें प्रयासरत है। रूसा तथा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जैसी योजनाओं से विश्वविद्यालय को प्राप्त हो रही अनुदान से अधोसंरचना के विकास, अनुसंधान के क्षेत्र में नवाचार तथा शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हुई। अध्ययन एवं अनुसंधान उच्च शिक्षा के अभिन्न अंग है। हमें ऐसे अध्ययन एवं अनुसंधान पर बल देना होगा जो देश और

0: समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। देवियों और स्वजनों, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, वंचित वर्गों का विकास, स्वच्छता, सामाजिक समरसता आदि विषयों को अध्ययन एवं अनुसंधान में शामिल करने से समाज लाभान्वित होता है। साथ ही देश के विकास के लिए योजनाएं बनाने में सहायता मिलती है। हम सबकी ऐसी सोच और ऐसे प्रयास होना चाहिए कि मध्य प्रदेश सहित देश के सभी विश्वविद्यालय ज्ञान विज्ञान एवं अनुसंधान के उत्कृष्ट संस्थान के रूप में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि लाभ करें। प्यारे विद्यार्थियों, आज पूरा विश्व तेजी से बदल रहा है। हमारी भाषा, रहन सहन, जीवन शैली सब तेज गति से बदल रही, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे कुछ मूल्य शाश्वत है जो हमें सदैव शक्ति प्रदान कर। मेरा मानना है कि आप जैसे युवाओं को भारतीय संस्कृति के मूल्यों और आदर्शों को अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए। सत्य, अहिंसा, करुणा, सेवा और ईमानदारी जैसे मूल्य हर युगों की मूल चेतना का हिस्सा रहे। इन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाकर आप कठिन परिस्थितियों को भी दृढ़ता से सामना कर सकते हैं, एक आदर्श नागरिक बन सकते हैं, राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। आपके गुण अपने परिवार या विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि नहीं है, बल्कि राष्ट्र की आकांक्षाओं और भविष्य के निर्माता है। आपके कंधों पे देश का भविष्य निर्भर कर रहे हैं। आपके ज्ञान, ऊर्जा और संकल्प से ही विकसित भारत का सपना साकार होगा। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि अपने शिक्षा और प्रतिभा का उपयोग केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं, बल्कि समाज के व्यापक कल्याण के लिए होना चाहिए। अपने आसपास के वंचित और ग्रामीण समुदाय की समस्याओं को समझें, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप समाधान विकसित करें, उन्हें सशक्त बनाएं और विकास की मुख्य धारा से जोड़ने में अपनी भूमिका निभाएं। अपने कर्तव्य के साथ यहाँ से जाने के बाद आप एक बड़ा ऑफिसर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, लेकिन अपना कर्तव्य को अवहेला करके समाज सेवा नहीं, कर्तव्य के साथ समाज सेवा, दोनों काम को निभाना पड़ेगा। मुझे लगता है वो सामर्थ्य आप में है, वो जोश आप में है। देश के लिए काम करना आपका कर्तव्य में है, आपका शरीर में है, आपका धमनी में। आज देश डिजिटल प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, हरित ऊर्जा, आंतरिक अनुसंधान और आधुनिक अवसंरचना के क्षेत्र में नई ऊर्जाएं प्राप्त कर रहे हैं। इन अवसरों का लाभ उठाएंगे, नवाचार कीजिए, शोध कीजिए और वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाए। परंतु इस प्रगति के साथ पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभाना है। जल, जंगल और जमीन का संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग, जैव विविधता की रक्षा तथा सतत विकास के लिए प्रतिबद्धता अपनी जीवन यात्रा का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। आज जिस गर्मी, जिस तरह के वृष्टि बहुल, अनावृष्टि के हम झेल रहे हैं, उसका कारण पर्यावरण शायद इतना सुरक्षित नहीं। मुझे विश्वास है कि आप सब युवा अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का समझकर जीवन में आगे बढ़ेंगे और अपनी संस्थान, क्षेत्र और देश का नाम रोशन करें। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना कर धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: राष्ट्रगीत के लिए कृपया सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करेंगे।

द्रौपदी मुर्मू के प्रेरक उद्बोधन, कुलाधिपति माननीय श्री मंगूभाई पटेल के शुभाशीष और राष्ट्रगान के साथ ही रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर का यह ऐतिहासिक 36वां दीक्षांत समारोह अब संपन्न हो चुका है। दीक्षांत यात्रा उसी गरिमा के साथ हॉल से वापस लौट रही है। चलते चलते हम ये भी बतलाना चाहेंगे कि हमारी क्रिएटिव टीम में थे कार्यक्रम अधिशासी श्री प्रशांत परमार, सहायक अभियंता श्री सुनील पंडित, वरिष्ठ अभियांत्रिकी सहायक श्री नीरज श्रीवास्तव, रोहित कुमार कोड़ोपे, वरिष्ठ तकनीशियन श्री सूरज मेश्राम और मार्गदर्शन रहा आकाशवाणी के उप महानिदेशक अभियांत्रिकी श्री वलीउल्लाह खां सर का, कार्यक्रम प्रमुख श्री श्यामलाल टहलानी का, कार्यक्रम अधिशासी श्री विपिन कुमार यादव का।

रेशमा और शेरा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में, और ये किन अभिनेत्री पर फिल्माया गया ये आपको बताना है श्रोता। और बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आए हैं आज की जो ये इबारत है उसके विषय में। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि राजस्थान की मिट्टी की सौंधी महक लोक संस्कृति की रंगत और प्रेम की मधुर चुवन को बेहद खूबसूरती से समेटे हुए है चांदनी, केसरिया बालम, रंग बिरंगी चुनर, मीनाकारी के गहने और रेगिस्तान की मखमली रात मिलकर ऐसा दृश्य रचते हैं मानो लोक रंग स्वयं शब्दों में उतर आया हो। बींद और बींदनी का सहज संवाद केवल प्रेम नहीं बल्कि उस जीवन दर्शन को भी व्यक्त करता है जहां पानी की हर बूंद, हर परंपरा और हर भावना अनमोल है। ये इबारत राजस्थान की गलियों, महलों और रेत के धोरों के बीच ले जाकर प्रेम, संस्कृति और स्मृतियों के रंगों से सराबोर कर देती है। जी हाँ, और इनके बारे में आपको लिखना भी है। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज गद्यांश हमें रेगिस्तानी रेत के टीलों की ओर ले जाएगा और उसके मखमली स्पर्श को अनुभूत कराएगा। रेगिस्तान का सर्द आसमान, मखमली रेत और उस पर चांदनी की चादर ओढ़े थिरकते पानी की लहरें, ये किसी सम्मोहन से कम नहीं। चांदी से चमकती रेत के टीलों के बीच बनी पानी की लहरें जब उठती हैं तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने खुद कोई मखमली कविता लिखती हो।

रेगिस्तान की रातें जितनी शांत होती हैं उतनी ही मखमली। रात के सन्नाटे में जब पूर्ण चंद्रमा की किरणें पानी की सतह पर पड़ती हैं तो पानी की हर एक लहर मोती से चमकने लगती है। ऐसा लगता है मानो रेतीले समंदर में सितारों की बारात उतर आई हो। क्या ही बात है श्रोताओं। जी हाँ, बिल्कुल सही कि रेत की जो सुंदरता है और रात जो राजस्थान की होती है, रेत की रातें जो होती हैं वो बड़ी खूबसूरत होती हैं। इस बारे में हमारे एक श्रोता भी लिखते हैं, और अगर ऐसा कोई अनुभव आपके पास है, आप राजस्थान गए हैं तो वहाँ के बारे में हमें ज़रूर लिख सकते हैं। और रात के ही बारे में हमारे एक श्रोता लिखते हैं, रेगिस्तान में मखमली रात एक रहस्यमय मौन साइलेंस ऑफ डिवाइन के रूप में है, जहां सांसारिक कोलाहल शांत हो जाता है, जो प्रकृति के शांत कोमल और निश्चल रूप को दर्शाता है। रेत पर पानी की लहर, हवा द्वारा बनाई गई लहरें, ईश्वर की इच्छा डिवाइन विंड के बहाव का एक रूप है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य से बहते रहने की प्रेरणा देता है। ये दोनों वाक्यांश एक संकेत देते हुए प्रतीत होते हैं कि मनुष्य का मन रेगिस्तान की मखमली रात की तरह शांत होना चाहिए और रेत पर पानी की लहरों को सहजता से स्वीकार करना चाहिए। रेत कठोरता और लहर तरलता का मिलना जुलना द्वैत को मिटाकर अद्वैत की ओर ले जाता है।

बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने लिखा है। डोर फिल्म का ये गीत था करसन सरगतिया और मीर अली हुसैन की ये रचना थी, सलीम सुलेमान का संगीत था। श्रोताओं, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने आज के गीतों को पहचानना है, शब्दों को पहचानना है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में हमें राजस्थान के रेगिस्तान की सैर आज की इबारत करा रही है, तो गीत भी उसी के अनुसार होंगे। चांदनी ने चंदा से कहा, तू चंदा में चांदनी की सरिया बालम पिया तो से नैना लागे, बहुत सारे गीत इन्होंने लिखे हैं। और एक और श्रोता लिखते हैं पीतल की मुरी गागरी, और भी कुछ एक गीत इन्होंने सुझाए हैं, बताए हैं, पहचाने हैं। एक और श्रोता ने दिले नादा ये गीत पहचाना है। एक और श्रोता है सोना ले जा रे चांदी ले जा रे, ये गीत सुरीले सफ़र में हो सकता है शामिल। एक श्रोता और लिखते हैं कि राजस्थान की खूबसूरती तब देखने को मिली जब मैं अपने परिवार के साथ जैसलमेर घूमने गया। सचमुच राजस्थान की खूबसूरती अपनी समृद्ध संस्कृति, रेगिस्तान और शाही आभूषण के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। राजस्थान के थार जैसलमेर मखमली रेत का अनुभव होता है। चांदनी रात में जब पूर्णिमा की किरणें इन रेत के टीलों पर पड़ती हैं तो ये भी सोने चांदी की तरह चमक उठती हैं। केसरिया रंग राजस्थान के शौर्य, त्याग और संस्कृति का प्रतीक है। यहाँ के पारंपरिक परिधानों जैसे साफा, लहरिया और बंधेज में इस रंग का प्रयोग होता है। राजस्थानी आभूषण अपनी बारीकी नक्काशी और भारी डिजाइनों के लिए जाने जाते हैं। यहाँ की महिलाएं सिर से लेकर पैर तक चांदी और सोने के गहने पहनती हैं, जिनमें रखड़ी, माथा, गला, बाजूबंद और भारी पायल प्रमुख हैं। ऐसे चांदनी रातों और मखमली रेतों पर ऊँटों की सवारी करने का अलग कौतूहल है। तो क्या आपने ऊँटों की सवारी की है तो हमें ज़रूर लिख भेजिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि आइए चलिए मित्रों, चलते हैं विविध भारती के सुरीले सफ़र में, और आज दो बूंद पानी और रेशमा और शेरा के गीत की धूम होगी। तो जी हाँ, देखते हैं कि आज कौन कौन से गीत होते हैं। वैसे गीत की जहाँ तक बात होती है तो कविताएं भी याद आती हैं। चेतक कविता क्या आपको याद है और ये किस पर लिखी गई थी तो आप ज़रूर बताएं। और कौन कौन से किले आपने देखे हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट किसे कहते हैं ये भी आपको बताना है।

आप सुन रहे थे वीर दुर्गादास फिल्म का ये गीत। आपको बताना है कि ये किस की रचना थी। वैसे तर्ज थी SN त्रिपाठी की, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ें थीं, और आपको राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य भी बताना है कि कौन सा है श्रोताओं, और क्या आपने दाल बाटी चूरमा और घेवर का स्वाद चखा है, तो ये भी आप बता सकते हैं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज तो राजस्थानी रंग छा जाएगा, ऐतिहासिक किलों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा किले इस राज्य में मिलेंगे। शौर्य पराक्रम का जीता जागता उदाहरण है राजस्थान। ये राज्य तभी तो इसे कभी भी जीता नहीं जा सका, या फिर इस पे अलग तरीके के किले नहीं बनवाए जा सके। वैसे बहुत सारे किले हैं वैसे यहाँ पर श्रोताओं, और तमाम बहुत कुछ है इबारत पढ़ने से पता चलता है। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफ़र की इबारत में मेरे रंगीलो राजस्थान की महिमा का खूब बखान किया गया है, तो आप सब पधारो मारे धोरा रोर देश राजस्थान में। राजस्थान की संस्कृति, रहन सहन, परिधान, खान पान और वहाँ की भाषा बहुत मीठी है। व्यंजन में चूरमा बाटी, गट्टे की सब्जी और कैर सेंगरी की भाजी का क्या कहना। मारो राजस्थान सबसे निरालो, जयपुर की चुनरी का क्या कहना, ऐसा है मारा राजस्थान। धोरा की धरती, अब तो प्रकृति भी यहाँ खूब मेघ बरसा रही है। और गीत को भी इन्होंने चुना है, तू चंदा मैं चांदनी पीतल की गागरी। एक और श्रोता लिखते हैं, कहते हैं जीवन में एक बार ज़रूर कश्मीर जाना चाहिए। बात तो ठीक है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जीवन में एक बार राजस्थान भी जाना चाहिए। मैंने भी सब परिवार एक बार राजस्थान के दर्शन किए हैं, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर। ख़ास तौर पर मुझे राजस्थान की रेत के दर्शन करने थे, और कई वर्षों की इच्छा पूर्ति हुई जैसलमेर में। समुद्र में जहाज पर चलते समय जिस तरह चारों ओर पानी ही पानी दिखता है, वैसे ही यहाँ चारों ओर सिर्फ रेत दिखती है। एक नया अनुभव प्राप्त होता है, रेत पर जीप से घूमा जाता है, घूमते हुए इक्का दुक्का घर भी दिखते हैं। मैंने जीप रुकवा कर एक घर के अंदर जाकर उन लोगों के रहन सहन, भोजन इत्यादि के बारे में जाना। जी हाँ, और इन्होंने आगे भी बहुत लंबी चौड़ी इबारत लिखी है। तो एक और श्रोता लिखते हैं कि गीत संगीत सुनना, संगीत को महसूस करना, दोनों अलग अलग बातें हैं। कभी कभी एक ही धुन किसी के लिए सिर्फ संगीत होती है, और किसी दूसरे के लिए एक याद या भावना या एक कहानी की तरह होती है। आपको कलाकार पहचानने हैं श्रोताओं, और फिल्म

संध्या और प्रशांत पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे, फिल्म थी सेहरा। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें थी, हसरत जयपुरी के बोल थे। और इसके पहले जो गीत हमने आपको सुनवाया था वीर दुर्गादास का, आपसे गीतकार पूछा था, जी हाँ आपने ठीक लिखा है, भरत व्यास का लिखा नगमा था, एस एन त्रिपाठी की तर्ज थी। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि मैं एक महीना, श्रोता लिखती हैं कि एक महीना जोधपुर में मैं रही थी, तब जैसलमेर में घूमी थी। वहाँ का रहन सहन, खान पान, वहाँ की रंग बिरंगे बाजार ने बहुत मनमोहा था। बहुत तीखा खान पान है वहाँ के पकवान, घेवर, मावा, कचौड़ी, मिर्ची पकौड़ा, गट्टे की भाजी का मज़ा लिया था। जी हाँ, आपने रंग बिरंगे बाज़ार की बात की है श्रोताओं, तो राजस्थान में आप क्या बता सकते हैं मीना बाज़ार कहाँ लगता है, तो आप ज़रूर बताएं। एक और श्रोता लिखते हैं, हम जब छोटे थे सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ते थे तब राजस्थान गए थे मामा जी की बारात में। वहाँ का तापमान, पानी का स्वाद, तीखे भोजन की विविधताएं, अनोखी वेशभूषा, रेगिस्तान की गर्म रेत और कुछ विशेष स्थानों की याद अब तक मन मस्तिष्क में अंकित है, जिसमें मुख्यतः चौमुंडा देवी मंदिर, पुष्कर नाथ, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर, जहाँ यहाँ कौन सा मेला लगता है ये अगर आप जानते हैं तो ज़रूर बताइए, क्योंकि आपने इस मंदिर की बात की है। मंदिर के दर्शन भी किए और देवी के दर्शन किए और चमकीले पत्थर अब तक सहेज कर रखे हैं, जी हाँ आपने लाए होंगे। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं, घूमर, कलबीलिया नृत्य, भवाई नृत्य, राजस्थान के लोकप्रिय नृत्य और दाल बाटी चूरमा, के सांगरी की सब्जी, गट्टे की सब्जी और भी बहुत से लोकप्रिय व्यंजन हैं यहाँ के। जी हाँ, तो क्या आप श्रोताओं राजस्थान का कोई सुंदर सा पंछी बता सकते हैं? एक और श्रोता लिखती हैं कि रेगिस्तान में मीलों तक फैले रेत के टीले जिसे धूर कहा जाता है के साथ साथ चट्टानी पथरीले मैदान भी शामिल हैं। थार में कई खारे पानी की झील भी है। सब आप ही बता दे रहे हैं श्रोताओं, तो फिर बताइए खारे पानी की कौन सी मशहूर झील है ये भी आप बता दीजिए, जिसमें, जी हाँ इन्होंने लिखा है लेकिन मैं ये आगे नहीं पढ़ूंगी। एक और श्रोता लिखती हैं कि राजस्थान का सबसे प्रमुख और राज्य नृत्य घूमर है, इसे नृत्य का सिरमौर कहा जाता है। इसके अलावा राजस्थान में कई अन्य प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं जैसे कलबेलिया, तहताली, भवाई और गैर। राजस्थान का आधिकारिक राज्य नृत्य घूमर है, इसे राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर और राजस्थानी संस्कृति की आत्मा कहा जाता है। हालांकि राजस्थान अपनी समृद्ध संस्कृति विविधता के लिए जाना जाता है, इसीलिए यहाँ कई अन्य प्रसिद्ध लोक नृत्य भी प्रचलित हैं।

इस गीत में श्रोताओ एक दुल्हनिया हैं जिनके सर पे घूंघट है, आप क्या उन्हें पहचानते हैं? इस कलाकार का नाम आपको बताना है।

किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म राजपूत से। राजेश खन्ना और जो दुल्हन थी वो नज़र आती हैं हेमा मालिनी श्रोताओं, और इसका जवाब भी हमारे श्रोताओं ने खूब दिया है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि ये जून का महीना गर्मी ही गर्मी, पसीना ही पसीना, ऐसे में विविध भारती के सुरीले सफ़र जैसे प्रोग्राम मन को तसल्ली देता है। आज इबारत पढ़ते हुए हमारे राजस्थान के टूर की याद आई, रेगिस्तान राजस्थान का नाम सुनते ही गर्मी महसूस हुई, लेकिन हम दिसंबर महीने में गए थे इसलिए ठंडी उतनी ही थी जितनी गर्मी के दिनों में गर्म हवा होती है। पीतल की मुरी गागरी और मंगवा दे, और पीतल की मेरी मंगवा दे कहकर हमने वहाँ के लोकल ड्रेस में फ़ोटो खिंचवाए। जहाँ लोकल ड्रेस जहाँ की भी हम घूमने जाते हैं वहाँ की तो होती है, तो इसकी अगर कोई यादें आपके पास हों तो आप हमसे बांट सकते हैं। वैसे हमने आपसे पूछा था श्रोताओं कि चेतक कविता क्या आपने पढ़ी है, तो इस बारे में हमें ज़रूर लिखें, और चेतक कौन था। एक और श्रोता लिखते हैं, बींद इबारत में एक शब्द है, बींद मतलब राजस्थानी में दूल्हा, जी हाँ, और बींदनी बोलते हैं दुल्हन को। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज सुरीला सफ़र में राजस्थानी छटा के बिखेरेंगी रंग, यहाँ की संस्कृति पहनावा खान पान बहुत ही शानदार है, महिलाएं आज भी हाथों में सफ़ेद चूड़ियाँ पहनती हैं जो हड़प्पा सभ्यता से मेल खाती हैं। जब खुदाई हुई तो कई साक्ष्य मिले जो अब भी राजस्थान में मौजूद हैं, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है राजस्थान की संस्कृति।

आप सुन रहे थे ये गीत मेरा गांव मेरा देश है, जहाँ छोटी छोटी छतरियाँ दिखाई गई हैं श्रोता, और आशा पारेख होती हैं, धर्मेंद्र होते हैं, लेकिन राजस्थान में सबसे बड़ी एक छतरी है जो कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। कुछ हमने सवाल आपसे पूछे थे सोने की मीनाकारी के और कुंदन या और भी जेवरों के, तो ख़ास अगर बात की जाए सोने की मीनाकारी और कुंदन के जड़ाऊ जेवरों की, तो बीकानेर बड़ा ही प्रसिद्ध है यहाँ का और इन्हीं चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। वैसे लाख की चूड़ियों का भी कारोबार बहुत बड़ा होता है राजस्थान में, तो क्या इस शहर में आपने कुछ ख़रीदारी की है? ये लाख की चूड़ियाँ कहाँ मिलती हैं राजस्थान में ये आपको बताना है। और झीलों की नगरी के बारे में हमने आपसे पूछा था, तो राजस्थान में उदयपुर कहा जाता है, लेक सिटी पैलेस, ऐतिहासिक इमारतें, जग मंदिर और तमाम चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। और छतरी के बारे में आपको बताना है, और कठपुतली जो होती है यहाँ की बड़ी प्रसिद्ध होती है, तो कठपुतली की जब हम बात करते हैं तो सबसे प्रसिद्ध जो भारत की कठपुतलियों के नाम हैं वो आपको बताने हैं। और चेतक के बारे में हमारे श्रोता लिखते हैं कि क्षमा चाहूंगी, चेतक की वीरता कविता श्याम नारायण पांडे की है, मैंने सुभद्रा कुमारी चौहान लिखा था, कोई बात नहीं, लेकिन चेतक के बारे में तो सभी जानते हैं और हमने भी सबने कविता पढ़ी है। चेतक महाराणा प्रताप के जो घोड़े थे, इस बारे में लिखा है हमारे एक श्रोता ने, और हल्दी घाटी का युद्ध तो सभी को याद होगा, सबने पढ़ा होगा इस बारे में, तो चेतक की वीरता का क्या कहना। एक श्रोता लिखते हैं कि हमने चेतक कविता पढ़ी है, चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था। और एक और

पुता ने लिखा है कि महाराणा प्रताप सिंह जी का घोड़ा जिसका नाम चेतक है, रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। इसके आगे इन्होंने नहीं लिखा, तो रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। इस तरह की ये कविता थी। और एक और श्रोता ने लिखा है कि मेवाड़ के वीर योद्धा महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। एक और श्रोता लिखती हैं कि सूरत मेरे फ्लैट के सामने तपती नदी बहती है, सर्दियों में खास करके वहाँ साइबेरियन पक्षी आते हैं, 4 महीना बसेरा करते हैं, हमें ये नज़ारा देखने का मौका हर रोज़ मिलता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि राजस्थान का रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान बाड़मेर और जैसलमेर के बीच स्थित है, जो दुर्लभ जीवों जैसे चिंकारा, रेगिस्तानी लोमड़ी और गंभीर रूप से लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का घर है। जैसलमेर के सैम और खुरी के टीले डेरा डालने और ऊंट सफारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सफारी की कुछ यादें हो तो आप जरूर लिखिए हमें श्रोताओं। एक और श्रोता लिखते हैं कि चेतक राणा प्रताप के घोड़े का नाम था। ये कलाकार आपको पहचानने हैं और क्या ये इस गीत की शूटिंग के बारे में आप कुछ बता सकते हैं?

हेमा मालिनी और फिरोज खान पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे धर्मात्मा फिल्म से। वैसे इस गीत की शूटिंग के बारे में ऐसा बताया जाता है कि अफगानिस्तान के रेतीले इलाकों में शूट हुई ये पहली फिल्म मानी जाती है। एक श्रोता लिखते हैं कि जोधपुर कभी जाएं तो बिना रस के गुलाब जामुन ज़रूर खाएं, तो ये तो नई बात पता चली है। और पीतल की मोरी गागरी इस गीत के बारे में बहुत

श्रोताओं ने लिखा है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर राजस्थान में हम जो है वो घूमने जा रहे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि इन्होंने कुछ फादर्स डे के बारे में लिखा है। जी हाँ, फादर्स डे की आप सभी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने आज फादर्स डे के बारे में भी लिखा है। एक और श्रोता लिखती हैं, चेतक कविता स्कूल टाइम में पढ़ी है। चेतक राणा प्रताप का घोड़ा था, बहुत ही साहसी और फुर्तीला। ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी। और अगर बोलना शुरू करें शायद अभी तो आधी ही याद होगी इन्हें। और एक और श्रोता लिखते हैं कि रेगिस्तान की मखमली रात में चांद जब रेत पर उतरती है तो केसरिया रंग में रंगा राजस्थान अपनी पूरी खूबसूरती के साथ सामने आ जाता है। और मेले की रौनक, चुनर के रंग, महल, अटारियां, सबके बारे में इन्होंने लिखा है। और हमने आपसे पूछा था श्रोताओं कि मीना बाजार कहाँ लगता है राजस्थान में। जी हाँ, जयपुर में लगता है। और दो कठपुतलियों के बारे में हमने आपसे पूछा था जो राजस्थान की तो नहीं मानी जाती हैं लेकिन राजस्थान कठपुतलियों के लिए बहुत ही मशहूर है। और इस रिवाज को, इस परंपरा को हम सबको बढ़ाए रखना है, बनाए रखना है, ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये भारतीय कलाकारों की जो कलाकारी है बड़ी ही कम अब देखने में आती है। और कठपुतलियों के बारे में भी हम आपको बताएंगे। वैसे जयपुर में लगता है मीना बाजार।

कैफे आजमी का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे परवीन सुल्ताना मैन पुरुषोत्तम की आवाजों में दो बूंद पानी फिल्म से, जो सिमी ग्रेवाल और सिखियों पर फिल्माया गया। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर कई ऐतिहासिक छतरियां, स्मारकी गुंबद मौजूद हैं। हालांकि राजस्थान की कला संस्कृति में शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी सीकर जिले रामगढ़ में है माना जाता है। इसे सेठ राम गोपाल पोद्दार की छतरी के नाम से जाना जाता है। पंचकुला की छतरियाँ जो हैं वो बड़ी ही प्रसिद्ध हैं। श्रोताओं, आप इसके बारे में भी ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत बड़ी छतरी है और राजस्थान की सबसे बड़ी छतरियों में मानी जाती है। एक और श्रोता लिखते हैं कि चेतक कविता मैंने पढ़ी है, चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था, बहादुर वीर बहादुर योद्धा थे वो।

एक और श्रोता लिखते हैं कि चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था। हल्दीघाटी युद्ध के दौरान जब महाराणा प्रताप युद्ध में थे तो चेतक खुद गंभीर रूप से घायल था, तब उसने अपने स्वामी की जान बचाने के लिए बहुत गहरी खाई में छलांग लगाई थी। एक और श्रोता का ने लिखा है कि इन्होंने लिखा है पुष्कर मेले के बारे में। जी हाँ, इसके बारे में हमने आपसे पूछा भी था। पुष्कर का मेला लगता है और ब्रह्मा जी का मंदिर है यहाँ, और ये मेला बहुत अलग अलग चीज़ों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और जहाँ तक नमक के रेगिस्तान की बात हमने आपसे पूछी थी, कच्छ की रण जो गुजरात की तरफ है, वो नमक का रेगिस्तान बड़ा ही सुंदर है। ख़ासकर अगर इस जगह को आप चांदनी रात में देखेंगे तो आप को बड़ा ही अलग अनुभव होगा। ग्रेट इंडियन डेजर्ट हमने आपसे पूछा था। जी हाँ, थार का रेगिस्तान जो है राजस्थान से शुरू होता है और बहुत गुजरात, पंजाब और आगे भी फैला हुआ है, तो ये बड़ी ही सुंदर बातें हैं। और गुलाबो और शिताबो ये दो कठपुतलियाँ हैं, आप इनके बारे में जानते हैं तो हमें लिखें कहाँ की ये कठपुतलियाँ हैं।

ताजमहल फिल्म का ये गीत आपने सुना, मधुमति और हेलन का नृत्य बड़ा ही खूबसूरत इस गीत में नजर आता है श्रोताओं। और माउंट आबू जो राजस्थान का एक हिल स्टेशन है, यहाँ एक बड़ा ही सुंदर मंदिर है, आप जानते ही होंगे दिलवाड़ा टेंपल। क्या आपने ये टेंपल मंदिर देखा है तो आप यहाँ की कलाकारी के बारे में हमें बता सकते हैं, क्योंकि राजस्थान जो है वो तो कलाकारियों का शहर या प्रांत ही माना जाता है। और बहुत सारे श्रोताओं ने सांभर झील के बारे में लिखा है। एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है, जो मुख्य रूप से जयपुर और नागौर जिले की सीमा अजमेर के निकट पर स्थित है। और भी बहुत

सारे हमारे श्रोताओं ने यहाँ के सुंदर पंछियों के बारे में लिखा हुआ है श्रोताओं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि राजस्थान में मीना बाजार मुख्य रूप से जयपुर में आमेर के किले के बाहर और वर्ल्ड ट्रेड पार्क जैसे बड़े मॉल्स में स्थायी बाजार के रूप में मौजूद है। इसके अलावा राज्य भर में लगने वाले त्योहारों मेलों के दौरान समय समय पर विशेष अस्थायी मीना बाजार भी लगाए जाते हैं। यहाँ एक और इमारत है श्रोताओं, जिस इमारत के नाम पर विविध भारती का एक कार्यक्रम भी है, क्या आप बता सकते हैं?

रजिया सुल्तान फिल्म का गीत आपने सुना, जानिसार अख्तर का लिखा खयाम की तर्ज थी। इस गीत की डिटेल आपने बिल्कुल ठीक लिखी है श्रोताओं। और जिस इमारत की बात हम कर रहे थे, ये इमारत है हवा महल, जिस नाम पर हमारे विविध भारती का एक कार्यक्रम भी आता है। और आपसे हमने यहाँ के लोकवाद्य के बारे में पूछा था और हमने सुनवाया भी था उस पर एक गीत, रावण हत्था। जी हाँ, आज का सुरीला सफ़र कार्यक्रम अब सम्पन्न होता है। आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

योग भारत की प्राचीन संस्कृति की एक अनमोल देन, जिसे भारत ने नहीं आज पूरी दुनिया ने स्वीकार कर लिया है। इसे कई सारे नए नए नाम दे दिए गए हैं और उन नए नामों के साथ भी योग अखिल विश्व में अपना परचम लहरा रहा है। योग को कई लोग योगा भी कह देते हैं, परंतु योग तो योग है जो संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना। जोड़ना किसे? हमारी आत्मा को, हमारे शरीर को और हमारे प्रत्येक अंग को अपने आप से एक दूसरे से जोड़ देना, यही युज है। और अगर आध्यात्मिक रूप से देखें तो युज का अर्थ होता है जोड़ना। आपको आपके आध्यात्म से जोड़ देना ही योग है, और योग मनुष्य की प्रकृति और आत्मा को एक साथ जोड़ देता है। भाग दौड़ भरा जीवन है और इस जीवन में योग का महत्व अद्भुत है। योग के सूत्रों को मुख्य रूप से योग सूत्र नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसकी रचना महर्षि पतंजलि ने की थी। इस योग सूत्र में 195 सूत्र हैं, जिनमें योग के नियम, साधना, ध्यान और जीवन में संतुलित बनाने के उपाय बताए गए हैं। इसमें अष्टांग योग का वर्णन भी मिलता है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि शामिल हैं।

योग का इतिहास सहस्त्रों वर्ष पुराना है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों जैसे वेद, उपनिषद, भागवत गीता में योग का उल्लेख मिलता है। पहले योग का उपयोग ऋषि मुनि मानसिक शांति और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए करते थे। धीरे धीरे पूरे विश्व में

प्रचार हुआ और आजकल लोग योग अपनाकर स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। योग करने के अनेकों लाभ हैं। इससे शरीर स्वस्थ हो जाता है और लचीला बन जाता है। नियमित योग करने से तनाव कम होता है, मन शांत रहता है और एकाग्रता बढ़ती है। योग रोगों से लड़ने की शक्ति भी बढ़ाता है। मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप जैसी कई सारी समस्याओं को नियंत्रित करने में भी योग मदद करता है। योग से कई सारी शारीरिक और मानसिक समस्याओं को भी नियंत्रित किया जा सकता है। स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए अधिक उपयोगी माना जाता है। अब योग से हम किन किन बीमारियों से या किन किन समस्याओं से बच सकते हैं या उनमें लाभ मिलता है, उनमें से कुछ अगर कही जाएं तो उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटापा, तनाव, चिंता, अनिद्रा, पीठ दर्द, गठिया, अस्थमा, पाचन संबंधी समस्याएं, इन सभी समस्याओं से योग हमें बचा लेता है।

होता है, उनमें से कुछ अगर कही जाए तो उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटापा, तनाव, चिंता, अनिद्रा, पीठ दर्द, गठिया, अस्थमा, पाचन संबंधी समस्याएं, इन सभी समस्याओं से योग हमें बचा लेता है।

0: योग शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, मन को शांत करता है और शरीर को लचीला बनाता है। आज के काल में सभी मानसिक परेशानियों से भी उलझे हुए हैं। हर रोज एक नई समस्या समक्ष आन खड़ी होती है और अगर हम योग की साधना करते हैं तो हमारा मन, हमारा चित्त अपने आप शांत हो जाता है और कई सारी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं, जिससे हम अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट यानी हम अपने काम पर ध्यान दे सकते हैं और बहुत सरलता से कई बड़ी बड़ी परेशानियों को निपटा सकते हैं। हालांकि कई सारी बड़ी बड़ी गंभीर रोगों के लिए कहा जाता है कि केवल योग पर निर्भर ना करें, परंतु डॉक्टर की सलाह, उचित इलाज के साथ।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में योग किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा,
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ये थीम समाज के वरिष्ठ सदस्यों के स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर एवं गरिमापूर्ण जीवन के लिए योग की उपयोगिता को रेखांकित करती है। आज हम जो जीवन शैली अपनाते हैं वही हमारे आने वाले समय के स्वास्थ्य एवं सुख का आधार बनती है।
0: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भी योग की विभिन्न मुद्राओं तथा प्राणायाम का अभ्यास किया। प्रदेश के सभी जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सामूहिक योग के कार्यक्रम हुए, जिनमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और योग की विभिन्न मुद्राओं का अभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इंदौर ने भ्रामणी प्राणायाम में नया रिकॉर्ड बनाया। इधर राजधानी भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में बड़ी संख्या में लोगों ने योग अभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा, पेयजल, चिकित्सा और अन्य बुनियादी सुविधाओं की विशेष व्यवस्थाएं की। ग्वालियर में सामूहिक योग कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के तीन पोत INS दुर्गागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों

0: कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा,
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। और साथियों, एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आज आयोजित नीट यूजी पुनः परीक्षा में देश भर के 22 लाख विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। उन्होंने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2026 में आज प्रदेश के लगभग 1,18,000 अभ्यर्थी 30 जिलों के 283 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देंगे। परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच, ईयरफोन, कैमरा, बेल्ट, आभूषण और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए इस बार प्रश्न पत्र वितरण की प्रक्रिया पूरी तरह गोपनीय रखी गई है। प्रश्न पत्र एयरफोर्स के विशेष विमान से भोपाल पहुंचाए गए हैं। एनटीए ने इस बार परीक्षा में तकनीक आधारित सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। पेपर लीक या अफवाहों को रोकने के लिए राज्य साइबर मुख्यालय में विशेष निगरानी की व्यवस्था बनाई गई है। और अब मौसम। प्रदेश में मानसून की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। मौसम विभाग ने इसके 25 जून तक प्रवेश करने की संभावना जताई है। प्रदेश में प्री मानसूनी गतिविधियां जारी हैं। विभाग के अनुसार आज इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर सहित 37 जिलों में आंधी, गरज चमक और बारिश का अलर्ट है। कई क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने आज ग्राम पंचायत खोड में खाद्यान्न वितरण केंद्र का औचक निरीक्षण किया। प्रभारी मंत्री ने स्टॉक रजिस्टर, पीओएस मशीन के संचालन और खाद्यान्न की गुणवत्ता की सघन जांच की। त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला में भारत ए और मेजबान श्रीलंका ए के बीच फाइनल मुकाबला जारी है। मैच दाम्बुला स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष एमबी कलिबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से बंद किया। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों में लिस्ट ए प्रारूप का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
2: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया।

0: गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि योग भारत की महान परंपरा का प्रतीक है जो स्वस्थ संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाता है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने कहा कि कम उम्र से योग शुरू करने पर इसके अधिक लाभ मिलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया। राष्ट्र राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। श्री मांडविया ने कहा कि योग न केवल भारत की विरासत है बल्कि विश्व को दिया गया एक अनुपम उपहार है।
3: योगा केवल हमारी विरासत नहीं है, दुनिया को दिया गया एक उपहार ही है। और इसलिए जब सारी दुनिया 21 जून को योगा दिन मनाती है, तब हम सभी भारतीय योग से जुड़े हर दिन में योगा करके अपने स्वयं को मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए प्रयास करिए।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में भाग लिया। ब्रह्मकुमारी संस्था द्वारा लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में लगभग 20,000 लोगों ने योग, प्राणायाम और राजयोग का अभ्यास किया। उधर पंजाब में विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों और संस्थानों ने योग सत्र आयोजित किए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जालंधर के निजी विश्वविद्यालय में आयोजित योग सत्र में भाग लिया। उन्होंने राज्य के लोगों, विशेषकर युवाओं से नशा न करने का आग्रह किया। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने लोकभवन और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जुहू तट पर आयोजित योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया।
4: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अवसर पर कहा कि योग जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम का प्रभावी माध्यम है और स्वस्थ रहने के लिए सभी को नियमित रूप से योग करना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बोरिवली में आयोजित योग सत्र में हिस्सा लिया। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने मुंबई में योगाभ्यास किया। IIT बॉम्बे, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी तथा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के मुख्यालय सहित कई संस्थानों ने भी योग दिवस मनाया। अंकिता आपटे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: गोवा के तालेगांव स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में योग दिवस का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक सहित छात्र, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी और योग अभ्यासकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में कॉमन योग प्रोटोकॉल पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने योग कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्य भर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। इधर राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में भी योग सत्र का आयोजन किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस सत्र में भाग लिया। मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि योग को केवल वार्षिक आयोजन तक सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि इसे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कतर में भारतीय समुदाय और अन्य प्रवासी समूह के लगभग 2,000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। वहीं बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग के अंतर्गत इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास में भाग लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in

0: और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के 3 पोत INS धुनागिरी, संशोधक और अग्रे को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: नौसेना के अनुसार इन 3 पोतों पर 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये 3 पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाने के दौरान उन्होंने कहा कि ये परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
2: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा, क्योंकि DPR बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, उसके साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
0: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
3: मेरा पूरा भरोसा है NTA के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। निर्भय होके बैठे, चिंता मुक्त होके बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
0: श्री प्रधान ने बताया कि CBSE के शेष परीक्षा परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे।
3: CBSE की जो रिजल्ट बचा हुआ है, इसे CBSE के 17 लाख बच्चों से लगभग 15.5 लाख बच्चों की रिजल्ट आ चुकी है। जो बच्चे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था, वो काम लगभग पूरा हो चुका है। CBSE जल्द ही उसको प्रकाशित करने वाला है।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 6,550 रुपए के प्रोसेसिंग शुल्क पर 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD विंस और ईरान का प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। श्री विंस ने कहा कि दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दों पर बातचीत की रूपरेखा तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
4: ईरान के प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता आगे बढ़ाना मुश्किल होगा।

0: इस बीच अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि 60 दिनों के भीतर समझौता नहीं हुआ तो अमरीका होर्मुज जलडमरों मध्य पर नए शुल्क लगा सकता है। बढ़ते तनाव के कारण शुक्रवार को प्रस्तावित वार्ता स्थगित कर दी गई थी। ईरानी प्रतिनिधि मंडल का नाम मिनाब 168 रखा गया है, जो स्कूल पर हुए हमले में मारे गए लोगों की स्मृति में है। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर कालिबफ करेंगे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: मुंबई में बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही, जिससे बस सेवाएं पूरी तरह प्रभावित रहीं। हालांकि बेस्ट प्रशासन ने शहर में नीट पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 100 से अधिक बसों की व्यवस्था की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, केरलम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश की संभावना है। बिहार और तेलंगाना के कुछ हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा विदर्भ में बुधवार तक लू चलने की संभावना व्यक्त की गई है। क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए के सामने 378 रन का लक्ष्य रखा है। दामबुला के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ए को शानदार शुरुआत मिली। टीम बिना कोई विकेट गंवाए 130 रन के पार पहुंची। वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए केवल 29 गेंदों में 94 रन बनाए। उन्होंने महज 11 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की है। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष M.B. कलिबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: एसएच बिहारी के बोलों को सुरों में ढला ओपी नैयर ने आशा भोसले का गाया सावन की घटा फिल्म का गीत आपने सुना। इस गीत से पहले श्रोताओं हमने आपको सुनवाया सूरज फिल्म का नगमा। हसरत जयपुरी का लिखा शंकर जयकिशन की तर्जी, मोहम्मद रफी की आवाज थी।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।

0: तीन देवियां फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में, एस डी बर्मन की तर्ज थी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे और इस गीत के पहले श्रोताओं परख फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया था, लता मंगेशकर की आवाज थी, शैलेंद्र के बोल थे, सलिल चौधरी का संगीत था। सदाबहार नगमे कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से मन चाहे गीत कार्यक्रम के लिए बस थोड़ा सा इंतजार।

नमस्कार श्रोताओ, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 3:01 हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं मन चाहे गीत कार्यक्रम में। कहीं धूप खिली है श्रोताओ, कहीं बादलों के डेरे हैं। दोपहर के इस समय कहीं आराम और गपशप, तो कहीं कुछ कामकाज की मसरूफियत। तो चलिए आपके बीच विविध भारती के गीतों का ये अफसाना जरा हम भी छेड़ देते हैं। देखिए मन चाहे गीत कार्यक्रम।

का ये गीत कहीं आपकी पसंद का गीत तो नहीं? सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

चोर मचाए शोर, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर का गाया गीत और संगीत थे रविंद्र जैन के। और इस गीत की पसंद भेजी हमारे पास रायगढ़, खालापुर रायगढ़ से।

श्री प्रमोद पाटिल, श्रीमती ज्योति पाटिल, योगेश कुलकर्णी, शर्मिला महात्री इसी गीत को सुनना चाहते थे। अदालत दास वैष्णव, मानस शांति वैष्णव, ऋचा गायत्री वैष्णव, भीष्म दास मानिकपुरी, ये फरमाइश थी छत्तीसगढ़ से। और तिलहारा महाराष्ट्र से उर्वी बेन, नायाब बेन, प्रीति बेन, मनाली निधि सेजल की ये फरमाइश थी।

0: लकीली पापा के जो पिताजी थे वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे अहमदनगर में, जो आज अहिल्या नगर कहा जाता है जिसे। तो उनका ऐसा कुछ नहीं था कि बाबा तू पहले नौकरी कर, पैसे कमा, फिर तेरी शादी करता हूँ। उन्हें पता चला कि ये सुनंदा और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो इनकी शादी करा देना सबसे अच्छी बात। आई थिंक पापा 23-24 साल के थे और मम्मी 23 साल की थी। उन दोनों में 6 महीने का ही अंतर है उम्र में। तो तब उनकी शादी हुई, 73 में शादी हुई, और 74 में मेरी सबसे बड़ी बहन जो है उसका जन्म हुआ। मम्मी उस वक्त LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है वहाँ पर जॉब करती थी, तो मम्मी ने पापा को ये सहूलियत दे रखी थी कि
1: अपने मन का जियो,
0: हाँ तुम जियो, मैं संभाल लूंगी, मैं कमा रही हूँ, अपने बच्चों को हमें कुछ कम नहीं पड़ेगा। और जैसा मैंने कहा, दादाजी और दादी और चाचा जी ये सब लोग थे, तो फैमिली में वैसे पैसे की उनका ये कहना नहीं था कि तुम घर में पैसे दो, पर उनका ये कहना था कि तुम खुद के लिए कुछ कमाओ। तो और मम्मी वो कर रही थी, तो इसलिए दादाजी का भी था कि चलो ठीक है, अभी अगर तुम्हारी बीवी कमा रही है तो तुम्हें जो करना है वो तुम करो। तो पहली बेटी हुई 74 में, 76 फरवरी में दूसरी बेटी हुई। तब फिर मम्मी को ऐसे लगने लगा, अरे अभी अपनी दो बच्चियां हो गई, अभी भी ये कुछ नहीं कमा रहे हैं। तो रीजनल न्यूज़पेपर्स में उस समय एड आती थी। हाँ, तो फिर वो मम्मी ने वो एड देखी, और पापा का ऐसा था वो पूना मुंबई थिएटर के चक्कर में चक्कर काट रहे थे, अहमदनगर पूना मुंबई इस तरह से उनका चल रहा था। तो उन्होंने मम्मी ने वो एड देखी न्यूज़पेपर में, और मम्मी ने बिना पापा को बताए वहां पे अप्लाई कर दिया।
1: वेरी गुड।
0: हाँ, और फिर जब ऑडिशन थी तब मम्मी ने उन्हें बताया ऐसे ऐसी ऑडिशन है, आपको जाना है और करके आना है। वो समय ऐसा था कि कमाने वाली माँ थी और घर पे दिखाना बहुत जरूरी था कि भाई मेरी फैमिली बढ़ रही है, मैं भी कमा रहा हूँ उस तरह से। सो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, चलो अब तुम कह रही हो तो मैं जाता हूँ और ऑडिशन देता हूँ। और ऑफ कोर्स उनकी आवाज ऐसी थी कि सिलेक्ट होना ही होना था। तो वो सिलेक्ट हो गए और उन्होंने जॉब करी, 2 महीना उन्होंने जॉब करी वहां पर। और 1.5 महीने बाद उन्होंने मम्मी को खत लिखा कि मैं अगर ये करता रहा तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगा जिंदगी में। तो फिर मम्मी ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, तो तुम छोड़ दो। तो उन्होंने छोड़ दिया, पर उन्होंने वो जॉब इस तरह से करी थी, तो आकाशवाणी ने उन्हें काफी हाथ दिया था उस वक्त जब उन्हें वो जरूरत थी पुश की, एक जो साइकोलॉजिकल पुश हमें लगता है मानसिक रूप से कि हमें अभी मुझे कुछ अचीव नहीं कर पा रहा हूं मैं, उस वक्त जो एक अचीवमेंट की फीलिंग है वो आकाशवाणी ने दी हुई है। और मेरे ख्याल से हमें भी, विशेषतः मेरे बारे में मैं कहूंगी कि जब आप ऐसे घर में पैदा होते हो और बड़े होते हो कि जहां पर सुपर अचीवर्स है आपके आजू बाजू सारे, तब एक होता है कि मुझ में क्या है, शायद मुझ में कुछ नहीं है, ऐसी एक फीलिंग जो घर का सबसे छोटा सदस्य होता है उसमें आ सकती है, आने की आशंका होती है। तब मुझे आकाशवाणी ने हाथ दिया और मुझे ये समझ में आया उस वक्त कि नहीं, मेरे पास मेरी आवाज है और मैं बहुत अच्छे से खुद को एक्सप्रेस कर सकती हूँ, कंडक्ट कर सकती हूँ। आई थिंक आकाशवाणी हमारे परिवार के लिए वैसा एक जरिया रहा है कि जिन्होंने हमें, जब हमें कॉन्फिडेंस नहीं था या जब हम एकदम लो जिसे फेज कहते हैं वैसे इसमें रहे हैं, उस वक्त हाथ दिया है, जिसे मराठी में हम उभारी कहते हैं, उभारी दी है,
1: उबारा है।
0: हाँ, तो आकाशवाणी से हमारा रिलेशनशिप, हमारी फैमिली का इस तरह से।
1: कितनी सुनहरी यादें आपने शेयर की सदाशिव जी के आकाशवाणी से जुड़ने की। यहाँ सुनंदा जी का जिक्र आता है और नाटकों का भी जिक्र आता है कि जहाँ वो

0: उनके रास्ते एक साथ हुए,
1: राइट,
0: कोई पॉइंट ऑफ टाइम था जहां ये एहसास हुआ कि उन्हें अब सुनंदा जी के साथ जीवन बिताना है? वो कोई एक मोमेंट था जहां ये हुआ?
1: पापा उनके नाम ही की तरह सदाशिव भोला साम जिसे कहते हैं, वैसी पर्सनालिटी के थे, स्पेशली जब वो कॉलेज में थे तब। तो उनके दिमाग में एक ही पागलपन चढ़ा हुआ था, एक ही भूत सवार था, वो था नाटक, और उन्हें वही करना था। ठीक है, नाटक करते वक्त घंटों तक आप साथ में रिहर्सल्स करते हैं, सब करते हैं, साथ में वक्त बिताते हैं, तो जो दोस्ती है वो दोस्ती से थोड़ी ज़्यादा है, इतना उन्हें शायद समझ में आया होगा। पर उसके ऊपर कुछ करे, उसके ऊपर कुछ एक्ट करे, ये उनकी पर्सनालिटी नहीं थी।
0: पहला कदम उनकी तरफ से नहीं आना था।
1: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मुझे याद है आज भी, मतलब ये हमारे घर में हमारे बहुत ही आर्ग्यूमेंट का विषय हुआ करता था जब पापा थे तब, कि पहले प्रपोज किसने किया। लेकिन जब अभी मम्मी ने किताब लिखी है उसमें उसने क्लियरली लिखा हुआ है कि मम्मी ने ही उन्हें एक चिट्ठी लिख के कहा था कि ऐसा ऐसा मेरी फीलिंग्स है और क्या आपको भी यही लगता है, और उन्हें वो चिट्ठी दी थी उन्होंने, और उन्होंने ये भी कहा था कि देखो अपने दोस्तों के सामने मत खोलना ये चिट्ठी, घर जाके अकेले में खोलना, बिकॉज पापा ऐसे थे वो हमेशा दोस्तों से घिरे रहते थे, तो वो दोस्तों के सामने खोलेंगे, जोर से पढ़ेंगे और पता नहीं क्या हो जाएगा, इतना डर मम्मी को लग रहा था। तो इस तरह से तो वो पॉइंट था जब मम्मी, क्योंकि मम्मी के घर पे उनके पिताजी की मौत बहुत जल्दी हो चुकी थी जब वो 10-11 साल की थी, तो उस वजह से उनके घर पे वो और उनकी माँ इतने ही थे, उनकी बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी। तो अभी इसके लिए भी लड़का देखो ये करो, जब वो शुरू हुआ उनके घर पे, जब वो ग्रेजुएशन के आसपास थी, तब उन्होंने कहा अभी ये मेरा ये जो पगला आदमी है उसे ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम में जो है वो प्यार है, उसे ये समझाना अभी जरूरी हो गया है। और फिर उन्होंने वो चिट्ठी लिखी थी, तब फिर उनका आगे जाके इस तरह से हुआ कि फिर मम्मी ने ही थोड़ा थोड़ा, बिकॉज उस वक्त मेरे दादाजी जो थे वो बहुत कर्मठ स्वभाव के थे, तो किसी लड़की का घर पे आना, लड़कियों से दोस्ती, ये सब इम्पॉसिबल था उस समय, और अहमदनगर जैसे छोटे से शहर में। पर लकीली मम्मी के पिताजी और वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, तो जब मम्मी घर जाने लगी दादी से, फिर पापा की बुआ भी उन्हीं के साथ रहती थी, उनसे इस तरह से जब बातें होना शुरू हुई, तब उन्हें समझ में आया कि कुछ तो मामला है। और फिर उन्होंने वन फाइन डे मम्मी को बुलाया घर पे और कहा कि देखो तुम्हें ये सब दिख रहा होगा कि इतना बड़ा घर है, ये है वो है, पर ये सब मैं धर्मादाय कर दूंगा, बेटों को कुछ नहीं दूंगा मैं। हाँ, तो अगर तुम ये सोचती हो कि इस वजह से है तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तब मम्मी का इतना क्लियर था कि उसने कहा ठीक है, मैं जॉब कर रही हूँ, मैं चला लूंगी घर, नो प्रॉब्लम। तो बहुत ही ज्यादा क्लियर इन दोनों के थॉट्स थे। और जैसा मैंने कहा कि पापा को ये शब्दों में पेश करना कि जो हमें हुआ है वो प्यार है, ये पॉसिबल नहीं था, जो मम्मी कर पाई। लेकिन जिस वक्त वो कमिटमेंट हो गई, उस वक्त वो कंप्लीट कमिटमेंट हुई।
0: वाह वाह।
1: तो वो हालांकि वो उन्होंने शब्दों में नहीं कहा होगा, पर वो उनके एंड तक, मतलब ये उन्हें प्यार हुआ जब वो 21 साल के थे, 64 के होने तक वो प्यार बिल्कुल वैसा ही रहा, और ये हम सब लोगों ने देखा हुआ है। और उन दोनों ने वही सीख हमें भी दी है कि अगर कमिटमेंट कर रहे हो तो पूरी तरह से करो, फिर वो अपने काम की तरफ हो या इंसानों की तरफ हो।
0: क्या तो प्यारी बात है। यहाँ एक बहुत क्यूट बात सामने आई है, और वो है एक प्रेम कहानी जो चिट्ठी के जरिए आगे बढ़ती है। हम जिस समय और समाज में हैं वहां ये यकीन करना अब जरा मुश्किल है कि चिट्ठियों के जरिए भी प्यार का इजहार हो सकता है, और वो चिट्ठी बचाकर जीवन भर रखी जा सकती है। मुझे लगता है ये जगह है गाने की, और वो गाना बहुत ही मुफीद है जो चिट्ठी के जरिए प्यार के इजहार की बात करता है। फिल्म है संगम।

0: यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात जो पीछे छूट गई है उसका सिरा पकड़ के आगे बढ़ते हैं। मम्मी की एक किताब है पिताजी के नाम पर, और आपने कहा कि उसमें ये जिक्र आता है कि उन्होंने सबसे पहले इजहार किया, उस किताब का नाम बताइए और वो नाम क्यों रखा गया है, इसकी कहानी बताइए।
1: हाँ ओके, तो वो किताब अगर आप देखेंगे तो उसका नाम है खुलभर दुधाची कहानी। खुलभर माने छोटी सी कटोरी में जितना दूध बैठता है उसको खुलभर कहते हैं। उतना सा खुलभर दुधाची कहानी, सो उतने से दूध की ये कहानी है।
0: हाँ, सवाल आता है कि ये आखिर क्या है,
1: क्या है, राइट। सो श्रावण महीना जब होता था तो अहमदनगर में, या आज भी छोटे गांव में होता होगा, हर मंगलवार को और शुक्रवार को उपवास होता है, पूजा होती है, कथा कथन होता है। तो उस वक्त जो फोक टेल्स जिसे हम कहते हैं, वैसी कथाएं कही जाती थी। तो उस समय सुनी हुई ये कहानी है। ये कहानी है कि एक छोटा सा गांव है, राज्य है, और वहाँ पर अकाल पड़ा हुआ है, बारिश हुई ही नहीं है, ठीक है, सूखा पड़ा हुआ है, और वहाँ पर वो

0: राजा हैरान हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, और इसलिए वो पंडितों को बुलाता है और कहता है अब मैं क्या करूं। वो पंडित उसे कहते हैं कि जो ये महादेव का मंदिर है आपके गांव में, तो उसका जो गर्भगृह है उसे पूरी तरह से दूध से आप भर दो। तो शंकर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और फिर आपको बारिश हो जाएगी। तो राजा फरमान निकालते हैं कि हर एक के घर में कल जितना भी दूध होगा, जितना भी जिसके पास होगा, वो सब लाके गर्भगृह में अर्पण कर दे। तो ये सब होता है, तो फिर भी वो गर्भगृह भरता ही नहीं है, इतना दूध आता है, लंबी लंबी लाइनों में लोग आके दूध डालते हैं वहां, फिर भी नहीं होता है। और जो सिपाही होते हैं वो घर घर जाकर आपके पास और दूध है, और दूध है, और दूध है, ऐसा करते हैं। तब वो एक घर में जाते हैं, वहां पे एक बुढ़िया होती है। तो वो कहते हैं आप गए थे दूध डालने? बोले नहीं, मैं अभी जा ही रही हूँ। तो उसने एक कटोरी में, छोटी सी कटोरी में दूध लिया हुआ है, और उसने क्या किया है कि उसके घर पे जो उसके बच्चे बच्चियाँ पोते सब लोग हैं, उनका खाना पीना सब कुछ होने के बाद जितना दूध बचा वो लिया और वो गई और महादेव जी के ऊपर उसने चढ़ा दिया। और जिस क्षण उसने वो चढ़ाया, वो गर्भगृह पूरा दूध से भर गया।
1: वाह,
0: तो कहानी का मतलब ये है कि आपके जो कर्तव्य है वो आप पूरा कीजिए, और फिर जो बचा कुचा है वो आप भगवान को दीजिए, भगवान को चलता है। ओके,
1: वाह वाह
0: सो
1: वाह,
0: बेसिकली आप अपनी जो पूरी जिंदगी है वो अपने कर्तव्यों के प्रति और अपनी जो जिम्मेदारियां है उनके प्रति आप अर्पण कीजिए, इस तरह की वो कहानी है। और थोड़ी बहुत मम्मी की जो कहानी है, जीवन की कथा अगर हम सोचे, तो वो उसी तरह से गई है। वो भी एक गजब की अदाकारा है, बहुत अच्छा गाती है, लिखती है, बट जब उनकी शादी हुई और उन्हें ये समझ में आया कि नहीं, ये जो मेरा सदाशिव है, ये जो मेरा महादेव है, इसे जो करना है, इसमें ज्यादा पोटेंशियल है, इसने ये करना चाहिए, तब उन्होंने अपना खुद का सब पीछे छोड़कर एक बहुत ही कर्मठ घर में जाकर बच्चियों को पाला, और दादा दादी मतलब उनके सास ससुर, बुआ पापा की बुआ थी जो सन्यासिन थी, उनका सब कुछ करते हुए, ये सब कर्तव्य करते करते करते, फिर अल्टीमेटली जब उनकी बेटी की शादी हुई, आते ये जो 53, फिर उन्होंने अपना लिखाई का काम और ये सब शुरू किया। और अभी
1: वाह,
0: ये है कि पिछले 20 सालों में उनकी लगभग 30 किताबें आ चुकी हैं। तो इसलिए वो हमें लगा कि ये जो कहानी है ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है उस बुक के लिए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी की कहानी उस तरह से रही है। और ऑफ कोर्स भगवान, मतलब उन्होंने पापा को जिस तरह से प्यार दिया, जिस तरह से विश्वास दिया, वैसा ही पापा ने उन्हें रेसिप्रोकेट किया। पापा का भी उन पर ऐसा ही विश्वास था, जो अंधविश्वास हम कह सकते हैं थोड़ा सा था, पर वो था। और उस वजह से आई थिंक जो आज भी हमारा घर फूला फला है और इतना अच्छा है, वो उस विश्वास की वजह से है।
1: बहुत ही सुंदर घटना है ये, जो किताब के नाम की घटना है और जिस तरह से आपने उसको विस्तार दिया है, ये बहुत ही मार्मिक है। अब चूंकि अमूमन जो रवायती इंटरव्यूज होते हैं वो ये कि बचपन से शुरू करेंगे, लेकिन हम कहीं से शुरू हुए हैं तो वो बचपन की बातें हम आगे कहीं जाके करेंगे,
0: सही
1: क्योंकि
0: बात।
1: बातचीत के अंदर घटनाएं तो आगे निकल कर आएंगी। चूंकि बातें सुनंदा जी और सदाशिव जी के रिश्ते की चल रही हैं और कैसे उनकी डोर आपस में जुड़ती है चल रही, पहले उन नाटकों का जिक्र करते हैं जो उन्होंने उस दौरान साथ में किए थे, उनसे जुड़ी कुछ कहानियां हो तो वो बताएं।
0: उनसे जुड़ी तो काफी कहानियां हैं जो हम सुनते सुनते बचपन से आ रहे हैं।
1: जी
0: पर उन्होंने एक जो प्ले उन्होंने किया था वो था बंडू बेबी यानी बुरखा। तो उस वक्त इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन्स होती थी, ये जो प्ले था इसमें बंडू और बेबी, तो पति पत्नी का कैरेक्टर था, ये इन दोनों ने किया था। और उसी नाटक के दौरान आई थिंक दे रियलाइज्ड कि दे आर इन लव विद ईच अदर। ये एक नाटक के बहुत सारे किस्से हैं, मतलब मम्मी क्योंकि जैसे मैंने कहा कि स्कॉलर इसकी थी, तो जब भी उनकी एग्जाम आती थी तो वो अवेलेबल नहीं होती थी प्ले के लिए। प्ले तो करना था, अभी कंपटीशन है तो जाना तो पड़ेगा। तो उस वक्त मम्मी तो नहीं है, मम्मी ने कहा मैं तो नहीं, मेरी एग्जाम है अभी, मैं पढ़ाई करने वाली हूँ, आपको जो करना है करो। तो उन्होंने किसी और को वहां पर कास्ट किया, और फिर मम्मी ने कहा अगर ये लड़की कास्टिंग है तो आप नहीं करोगे ये रोल तो इसलिए फिर पापा का रोल भी किसी और ने वहां पर किया।
1: बहुत सही,
0: ठीक है।
1: बहुत ही सही।
0: तो और वो जो था वो उसका शो था संगमनेर नाम के एक छोटे से गांव में, अहमदनगर के पास ही है, वहां पर उसका शो था। और उस समय लाइट चली गई।

0: तो माइक नहीं थे, तो फिर आवाज ही नहीं आ रही थी। अच्छा, मम्मी हालांकि नाटक में नहीं थी, पर क्योंकि वो यूथ फेस्टिवल जैसा माहौल था तो और किसी कॉम्पिटिशन में वो थी, तो इसलिए वो वहां गई हुई थी। तो फिर वहां पर और वो जो नई लड़की और लड़का था उनके आवाज पहुंच ही नहीं रहे थे ऑडियंस तक। तो फिर इन दोनों ने वो डायलॉग्स पीछे से जोर से वो बोले और उन लोगों ने लिपसिंग किए स्टेज के ऊपर।
1: वाह वाह, क्या प्रयोग!
0: इस तरह से वो हुआ। तो ये जो एक किस्सा है ये बहुत ही अच्छा है। उसके बाद कभी भी मम्मी ने पापा से ये नहीं कहा कि मैं नहीं हूँ प्ले के लिए। जो भी डेट चाहिए, जब भी चाहिए, वो अवेलेबल होती थी।
1: क्या बात है, बहुत ही सुंदर। एक पूरा दौर था जब सदाशिव जी लगातार नाटक कर रहे थे और भ्रमण कर रहे थे, क्योंकि नाटकों के लिए तो अलग अलग शहरों में गांव में जाना होता है। उस दौर के कोई बहुत ही प्रसिद्ध नाटक हैं जिन्होंने उन्हें एक मुकम्मल पहचान दी थी, उनकी बात करते हैं।
0: उसमें मैं सबसे पहले पापा कलाकार तो थे, एक्टर तो थे ही, पर वो निर्देशन में भी बहुत रस रखते थे, वो निर्देशक भी थे, राइट। सो अगर उनके नाटकों की बात कही जाए तो उन्होंने कुछ नाटक ऐसे किए थे, जैसे छू मंतर करके एक नाटक था, फिर बखरे का राजा जी, ये एक प्ले था, छिन्न करके एक नाटक था, कन्यादान एक नाटक था, फिर हैंड्स अप, ये जो पांच छह नाटक है, काही स्वप्ने विकाई जी, ये भी एक था, पर काही स्वप्ने विकाई जी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल था और कंपटीशन वाला प्ले था, बाकी के ये जो सारे जो मैंने नाम लिए ये कमर्शियल नाटक थे। इसके अलावा भी बहुत सारा काम किया हुआ है, पर ये नाटक मैं स्पेशल इसलिए समझती हूँ बिकॉज ये हर एक नाटक ने कुछ इंडस्ट्री को भी दिया हुआ है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो उनका अलग अलग जिक्र मैं चाहता हूँ, जैसे छिन्न का बहुत जिक्र मिलता है, हैंड्स अप का जिक्र मिलता है, काही स्वप्ने विकाई ची, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, उसका भी खूब जिक्र मिलता है कि अलग अलग मानदंडों पर इन्होंने कुछ
0: किया है,
1: कामयाबी।
0: तो काही स्वप्ने विकाई ची ये जो प्ले था ये बहुत पहले कुछ जो प्लेस पापा ने किए थे उसमें से था। तो उसमें वो एक रिटायर्ड टीचर का रोल करते थे जो 83 इयर्स ओल्ड होते हैं, और उस वक्त पापा की उम्र थी 23-24, मतलब ज्यादा। उस समय उन्होंने काफी सारे उस पे INT और ये जो सारी कॉम्पिटिशन होती थी उसमें काफी सारे अवार्ड्स जीते थे उस एक रोल के लिए। उन्हें लोग कास्टिंग के लिए बुलाते थे कि आप आओ हमारे यहाँ पे प्ले में, और वो हर बार जाते थे तो लोगों को लगता था ये कौन आ गया, वो तो एक बुढ़ा आदमी है जो वो रोल कर रहा है, यू नो, उम्र में ज्यादा है, आपने कैसे किया, आप तो नहीं हो सकते। ऐसे काफी सारी अपॉर्चुनिटीज उस समय पापा की आंखें चली गई बिकॉज लोगों को ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये वही इंसान है जिसने 83 साल के एक वृद्ध इंसान का रोल किया हुआ है, और वो इतना बखूबी निभाया उन्होंने कि लोग ये सोच ही नहीं सकते थे कि ये एक 24-25 साल का युवक है। तो वो एक प्ले इसलिए बहुत ज्यादा फेमस था क्योंकि पापा की जो एक्टिंग की रेंज थी वो एक प्ले में काफी सारी एक्सपोज हुई थी। इसके अलावा छिन्न जो प्ले है वो विजय तेंदुलकर साहब ने लिखा हुआ था, और उसकी खासियत ये है कि वो एक प्ले है जिसमें सबसे पहले और मेरे ख्याल से आखिरी बार वही एक प्ले है जिसमें स्मिता पाटिल जी ने कमर्शियल थिएटर किया था
1: और वो भी पापा के निर्देशन में।
0: एग्जैक्टली, तो इसलिए वो एक बहुत ही खास प्ले रहा है, और लोगों ने जो सराहा है उस प्ले को क्योंकि उसका विषय है और जो सब था, एक तो तेंदुलकर साहब की जो लिखाई है वो एक तो पाथ ब्रेकिंग, ग्राउंड ब्रेकिंग होती है, और उसके ऊपर पापा का डायरेक्शन, ये बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट दोनों चीज़ें हुई थी। उसी की स्टाइल में दूसरा एक नाटक कहा जाए तो वो है कन्यादान। कन्यादान में डॉक्टर श्रीराम लागू, नीना कुलकर्णी, आशालता वाबगावकर, ये बहुत बड़े बड़े नाम थे उस समय, और उनके साथ अगेन पापा ने निर्देशित भी किया था, उन्होंने एक्टिंग भी की थी उसमें। छिन्न और कन्यादान, इन्होंने पापा को एक एक्सपेरिमेंटल थिएटर डायरेक्टर के तौर से एस्टेब्लिश किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। और उस समय थिएटर जिस तरह से देखा जाता था, लोग जिस तरह से देखते थे, वैसा मुझे नहीं लगता आज तक वो सुवर्ण काल फिर से आया है।
1: ऐसा हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब टेलीविजन उस तरह से नहीं आया था। और महाराष्ट्र में खास तौर पर थिएटर की सशक्त परंपरा थी और कामयाबी के झंडे गाड़ते थे प्लेज, और उनकी दास्तानें आज तक कही जाती है।
0: करेक्ट करेक्ट। तो

0: बहुत लंबी एक दिलचस्प बात हुई नाटकों को लेकर, और तेंदुलकर साहब का नाम वहां बार बार आता है। बहुत करीबी रिश्ता सदाशिव जी का तेंदुलकर जी से रहा है, उससे जुड़ी कुछ घटनाएं जिनकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, आपसे सुनना चाहता हूँ।
1: ओके, तेंदुलकर जी एक हम कह सकते हैं विद्यापीठ थे।
0: बिल्कुल,
1: किसी भी घटना की तरफ देखने का उनका जो दृष्टिकोण होता था वो बहुत अलग होता था। रोज की घटनाओं की तरफ भी वो जिस तरह से देखते थे और बात करते थे, ये बहुत अलग था। तो उनकी और पापा की जो पहचान थी वो प्ले की वजह से हुई थी, पर सुहास अवचट करके बहुत बड़े आर्टिस्ट है, पेंटर है, उन्होंने उनको मिलाया था। एक ये अहमदनगर से आया हुआ लड़का है जो कुछ करने की कोशिश कर रहा है, ये जब तेंदुलकर साहब को समझ में आया तो उन्होंने उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट किया। और सपोर्ट किया मतलब मैं इस तरह से कहती हूँ कि देर वर डेज, ऐसे दिन थे जब दो दो तीन तीन दिन तक पापा उनके घर पर ही रहते थे।
0: गजब।
1: हाँ, और उस वक्त तेंदुलकर साहब जो काम कर रहे थे, इतना बड़ा काम कर रहे थे, तो वो प्रोसेस का एक भाग होना एक युवा के लिए जो अहमदनगर जैसे छोटे से गांव से आया है, ये बहुत बड़ी बात थी। तो पापा हमेशा कहते हैं कि मैं तो उनके सामने जाता था तो जैसे ब्लॉटिंग पेपर होता है जो इंक ब्लॉट करता है, वैसे मैं, मराठी में हम उसे टिप कागद कहते हैं, तो वैसे मैं टिप कागद हो जाता था, जो भी मिले वो एब्जॉर्ब करो।
0: वाह वाह,
1: बस उतना ही। तो ये स्थान तेंदुलकर साहब का पापा की जिंदगी में था। दूसरा, जब 82 में मम्मी को बॉम्बे में ट्रांसफर मिली, तब कैसे तैसे करके पापा ने एक किराए का घर लिया था, क्योंकि हम तीनों बच्चियां, मेरी दादी और मम्मी और वो, ऐसे हम सब लोग रहने वाले थे।
0: किस इलाके में?
1: अंधेरी में ही लिया था उन्होंने, बिकॉज उस वक्त बैंड्रा बहुत महंगा था, तो ऐसे उन्होंने अंधेरी में लिया था। तो एक किराए पे छोटा सा घर लिया था, और दो साल बाद वो घर मालक ने कहा कि भाई अभी नहीं, अभी आप छोड़ दो, मुझे ये घर बेचना है। तो रातों रात एक हफ्ते के अंदर बंबई जैसे शहर में एक घर ढूंढ पाना ये बहुत ही डिफिकल्ट है। तो पापा गए तेंदुलकर साहब के पास, बिकॉज जैसे मैंने कहा ही वॉज अ गाइड, ही वॉज अ फ्रेंड, ही वॉज अ फिलोसोफर। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा हुआ है, नो प्रॉब्लम। उन्होंने सीएम साहब के लिए एक लेटर लिखा कि ये ऐसा ऐसा कलाकार है, बहुत अच्छा कलाकार है, और इसे बंबई में रहने के लिए घर नहीं है, तो आप इसकी कुछ मदद कर दीजिए। तेंदुलकर साहब का लिखा हुआ खत लेकर पापा पहुंच गए। उस समय चव्हाण साहब सीएम थे, उन्होंने वो लेटर देखा और एक मिनट के अंदर उन्हें लेटर दिया। उस समय ऐसा था कि 2% कोटा हुआ करता था कलाकारों के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए। तो उसमें से जोगेश्वरी में जो नई एक कॉलोनी बन रही थी वैशाली नगर, वहाँ पर हमें एक 1 BHK का फ्लैट म्हाड़ा का मिला। तो वो लेटर तेंदुलकर साहब ने दिया और इट वाज अमेजिंग। जैसा पापा हमेशा कहते थे कि आपकी ज़िंदगी के हर मुकाम पर आपको ऐसे इंसान मिलते हैं जो या तो आपको कुछ नया दिखाते हैं या आपको आगे पुश करते हैं। तो मेरे ख्याल से और पापा से जो बातें होती थी उससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि तेंदुलकर साहब ऐसे थे जो पापा के लिए ना ही, मतलब एक नया तरीका दुनिया को देखने का तो था ही जो उन्होंने सिखाया उन्हें, पर उन्होंने उन्हें बहुत बड़ा पुश भी दिया। तो बंबई में घर अपना खुद का लेना हो या उन्हें पहली फिल्म मिलनी हो, पहली फिल्म हालांकि पापा की 22 जून 1897 थी,
0: उसकी बात आगे करेंगे,
1: उसकी आगे करेंगे, पर बड़ी फिल्म जिसमें हालांकि 3.5 सीन थे पर वो पूरी फिल्म पे छा गए थे, रामा शेट्टी छा गया था कैरेक्टर, तो वो फिल्म हो, तो आई थिंक तेंदुलकर साहब का अनन्य साधारण महत्व हमारी पूरी फैमिली की।

0: लाइफ में है।
1: बिल्कुल। एक घटना है जिसमें उन्होंने पूछा था तेंदुलकर से कि आपने अर्धसत्य में मुझे रोल क्यों दिलवाया, उसका जिक्र करें।
0: उसका ये तो एक्चुअली तेंदुलकर साहब ही बेस्ट बता पाएंगे। पर उन्होंने जब पूछा तब मेरे ख्याल से जो मुझे याद है कि तेंदुलकर साहब ने कहा था कि देखो कलाकार कलाकार होता है, क्योंकि उस समय भी और आज भी हमारी इंडस्ट्री में काफी कैंप्स बने हुए हैं, राइट।
1: बिल्कुल।
0: सो पूना से आने वाले लोगों का एक कैंप है, बॉम्बे से लोगों का एक कैंप है, अभी तो बॉलीवुड में भी यूपी से आने वाले लोगों का एक कैंप है, इस तरह से। और वो कालातीत है, वो चलता ही रहता है, हर जगह वो होता है। तो उन्होंने कहा था कि कलाकार जो होता है ना, उसकी जात और उसका ये सिर्फ एक होता है धर्म, वो है कला। और तुम जिस तरह से खुद को सैक्रिफाइस कर रहे हो, वैसे मुझे लगता है तुम ये रोल ठीक से कर पाओगे। हालांकि उस वक्त बात ये हुई थी कि पापा को लग रहा था कि हीरो का रोल उन्हें मिलेगा, जो कि ओमपुरी जी को मिला था, क्योंकि इंस्पेक्टर हैंड्सअप में उन्होंने इंस्पेक्टर किया था, और ये रामा शेट्टी का रोल इन्हें ऑफर किया गया था। तो उन्होंने तेंदुलकर साहब से पूछा था, पर मुझे तो लगा था मैं इंस्पेक्टर का रोल करूंगा। तो उन्होंने कहा था, तुम बस जो तुम्हें काम दिया है वो ठीक से करो, तुम विलन हो या हीरो हो, दैट डज नॉट मैटर। ये फिल्म के आखिर में तुम याद रहने वाले हो लोगों को, ये भूलना मत। तो वो पापा ने सुनी उनकी बात और ही इज वेयर ही रीच्ड।
1: बिल्कुल बिल्कुल। एक कलाकार की ताकत ये है कि कितना छोटा रोल क्यों ना हो, अपनी मौजूदगी, अपनी आमद को कैसे
0: निश्चित,
1: साबित किया जा सकता
0: सही
1: है।
0: बात
1: उसकी मिसाल है अर्धसत्य। हिंदी सिनेमा के इतिहास में ऐसे बहुत कम मिसालें मिलती हैं जहां कुछ दृश्यों में अभिनेता ने अपनी वो छाप छोड़ी के इतिहास रच दिया।
0: राइट।
1: लेकिन ये उनकी पहली फिल्म नहीं थी,
0: नहीं थी
1: तो
0: तो
1: पहली फिल्म जो नचिकेत और जयू वाली थी, वो कैसे मिली, उसका जिक्र कीजिए।
0: वो कैसे मिली इसके बारे में मैं ज्यादा बता नहीं पाऊंगी,
1: जी
0: लेकिन पूना में उस वक्त पापा रहते थे ज्यादा करके, और वहां पर वो प्ले वगैरह कर रहे थे। तो उन्होंने कास्टिंग में उन्हें तिलक का रोल दिया गया था, और पापा उस वक्त एकदम पतले दुबले पतले से ऐसे थे। तो जयू और नचिकेत पटवर्धन उनके बहुत अच्छे दोस्त थे उस वक्त। तो आप करोगे? उन्होंने कहा हाँ मैं करूँगा, नो प्रॉब्लम, चलो। मतलब पापा कहते थे कि अभी दुकान ही खोलकर बैठे हैं, तो जो आएगा वो करना तो पड़ेगा, इस तरह
1: यस।
0: से उन्होंने वो किया था। तो लेकिन उन्होंने वो रोल किया उस वक्त। जयू और नचिकेत पटवर्धन ये अभी तो बहुत ही सीनियर और रिस्पेक्टेड ये है, पर वो भी काफी यंग थे उस वक्त। और फिल्म में मुझे याद है पापा ने बाद में जब राज से स्वराज तक में लोकमान्य तिलक का रोल किया, तब उन्होंने बहुत ज़्यादा उस पर मेहनत की थी, क्योंकि उन्हें समझ में आया था कि ये जो फिल्म हमने की है जयू नचिकेत के साथ, इसमें हालांकि मैं तिलक लग रहा हूँ फीचर्स के तौर पर, लेकिन जो उसका क्रिटिक आया था वो ऐसा आया था कि मैं मराठी में ये वाक्य कहती हूँ, यजतला लोकमान्य टिळक हा रामोशा सारखा दिसतो। रामोशी मतलब जो क्लीनर्स होते हैं ना ऑफिसेज में या घर में, उन्हें रामोशी कहा जाता था एक जमाने में, अब तो नहीं कहते कोई। तो इस तरह से वो दिखता है। तो इसलिए उसके बाद जब पापा ने राज से स्वराज तक की, जब उन्हें फिर से एक बार तिलक करने का मौका मिला, लोकमान्य तिलक का किरदार निभाने का मौका मिला, तब पापा ने बाकायदा 6-8 महीने, उस समय ये नहीं होता था, लेकिन जिम जाकर, बिकॉज लोकमान्य तिलक की जो बॉडी थी ही वॉज वेरी वेल बिल्ट,
1: यस।
0: तो इस तरह से दिखने के लिए पापा ने वो सारे एफर्ट्स लेकर वो काम किया हुआ था। ये फिल्म के बारे में जब भी पापा से बात होती थी तो वो कहते थे मैं तो थ्रिल था कि मुझे फिल्म में लिया है। हाँ, बिकॉज उनकी उम्र भी काफी कम थी उस वक्त। और क्या करना चाहिए जब आप कोई इस तरह का किरदार जो इतना बड़ा है, इतनी बड़ी इंसान का किरदार जब आप निभा रहे हो, तब क्या करना चाहिए इसके लिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये दोनों चीजें उन्हें उस फिल्म से समझ में आई। आज भी जब वो दूरदर्शन पे वो फिल्म लगती है तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच।
1: बिल्कुल, राज से स्वराज का जो जिक्र आया है, मैंने उनके इंटरव्यूज में देखा और पढ़ा है कि बहुत ही प्रिय रहा है ये रोल उनके हाँ। लिए। और जब भी कभी उनसे ये पूछा गया कि आपके फेवरेट रोल्स कौन से रहे, तो उन्होंने बड़ी फिल्मों और वो तमाम हाँ। मशहूर रोल्स को छोड़ के इसका जिक्र किया
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: वो क्यों है?
0: क्योंकि जैसा मैंने कहा कि राज से स्वराज तक में जो लोकमान्य तिलक की भूमिका निभाना है, ये एक उनके लिए एक लर्निंग कर्व

0: रहा है।
1: 22 जून 1897 ये फिल्म में जयू नचिकेत पटवर्धन उन्हें डायरेक्ट किया था लोकमान्य तिलक की भूमिका में, और यहाँ पर अमाल अलाना जी ने उन्हें डायरेक्ट किया था रात से स्वराज तक में। अमाल अलाना अगेन एक बहुत बड़ा नाम है, अलकाजी सर जिन्होंने NSD जैसी संस्था को रूप लाया, उनकी बेटी अमाल अलाना उन्होंने ये दिग्दर्शित किया हुआ था। और उस समय ना पापा और 10-15 साल आगे आ चुके थे करियर में एज एन एक्टर ऑल्सो, ही वॉज अ स्टार एट दैट टाइम जब राज से स्वराज तक हुई थी। तो जब उन्हें फिर से चांस मिला तो उन्होंने सोचा कि अब आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ,
2: जो कसर रह गई
1: जो कसर रह गई है वो पूरी करनी है, अभी मैं रामोशी नहीं दिखूंगा।
2: yes.
1: मुझे याद है उन्होंने वो विग से लेके, बिकॉज उनकी कंटिन्यूटी काफी सारी फिल्म्स की होती थी। अब जैसे होता है कि कलाकार एक समय पे एक ही फिल्म करते हैं तो इसलिए वो पूरी तरह से वैसे ड्रेस्ड अप होते हैं, वैसे नहीं हुआ करता था उस वक्त। 2 दिन इस फिल्म का शूटिंग हुआ, फिर 2 दिन उस फिल्म का हुआ, इस तरह से चलता था। तो किसी भी रोल के लिए पूरी तरह से बाल निकालना या ये पॉसिबल नहीं था। पर मुझे याद है कि जब उन्हें ब्रेक था एक महीने का, तब पापा ने जो कोर्ट सीन्स थे स्पेशली उसके लिए ये निकाले थे, बिकॉज अमाल जी ने उन्हें कहा था कि देखो कोर्ट सीन में जब लाइटिंग होती है तो विग बहुत बुरा दिखता है। एग्जैक्टली
2: हाँ.
1: हाँ, तो इसलिए उन्होंने उस समय बाल निकाल कर, और बाकी की फिल्मों में अगर आप देखोगे उस समय में जो शूटिंग हुए थे उसमें पापा ने विग्स पहने हुए हैं।
2: ओके okay. हाँ, क्योंकि कोई रास्ता नहीं था।
1: एग्जैक्टली पर उस समय कलाकार ऐसा नहीं करते थे, वो मैं बताना चाहती हूँ। तो ही वॉज वेरी वेरी इन्वॉल्व्ड इन द स्क्रिप्ट, और उस समय तक पापा का जो रीडिंग था, पापा ही वॉज अ वोरेशियस रीडर, मतलब रोज वो 2-3 घंटा तो पढ़ना तो बनता ही है, किताबें पढ़ना उनका एक जरिया था। तो तब तक उन्होंने जो इतिहास के बारे में पढ़ा था, आई थिंक उसकी वजह से भी उन्हें वो करते वक्त, वो एक्टिंग करते वक्त बहुत मजा आया था, इसीलिए शायद वो उनका फेवरेट ये है कि मैं अभी प्रूव करूंगा। और वैसा लोकमान्य तिलक बाद में, हालांकि बहुत लोगों ने कोशिश की, पर जैसा राज से स्वराज तक में है वैसा लोकमान्य तिलक आज तक हो नहीं पाया है, वैसा लिखा भी नहीं गया है उस तरह से। तो आई थिंक इसलिए वो उनका बहुत फेवरेट कैरेक्टर रहा है।
2: दिलचस्प बात यह है कि इस सीरीज को आज भी लोग खोज खोज कर देखते हैं।
1: हाँ?
2: और दूरदर्शन के आर्काइव्स पर ये अभी भी देखा जा सकता है, खोज कर अगर आप देखें। हाँ? तो वेव्स पर शायद ये अभी भी उपलब्ध है।
1: तो वेव्स पर ही डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी है जो श्याम बाबू ने डायरेक्ट की थी।
2: उसका जिक्र करने से पहले यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बताइए कि कौन सा गाना यहाँ आना चाहिए।
1: यहाँ पर तो मुझे ऐसे लगता है कि एक गाना है जो बिल्कुल पापा की जो सोच थी उनके समाज के प्रति, उनके देश के प्रति, वो बहुत ही सुंदर तरीके से जिस गाने में आई है वो था राजी फिल्म का, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू।
2: क्या बात है, गुलजार साहब के बोल।
1: ऑफ कोर्स
2: सुनते हैं ये गाना।

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की पहली कड़ी। बातचीत की श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम का संपादन नेहा शर्मा और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: उनकी

0: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: हेलो फ्रेंड्स।
1: हेलो फ्रेंड, आरुणी दीदी सादर नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं आप?
1: जी मैं आपका वही पुराना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से वार्तालाप कर किसी हैं।
0: जी क्या करते हैं आप?
1: मैं घर पर रहता हूँ, आकाशवाणी से जुड़ा रहता हूँ।
0: फिर आप आकाशवाणी खंडवा के कौन कौन से प्रोग्राम सुनते हैं?
1: आकाशवाणी खंडवा के फोनी प्रोग्राम मैं ज्यादा सुनना पसंद करता हूँ और आप लोगों से वार्तालाप होती है, बहुत अच्छा लगता है।
0: जी हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि आप हमसे इतनी दूर से जुड़ जाते हैं। और फिर बताइए आप, आपके वहाँ का मौसम कैसा है?
1: मौसम दीदी आजकल ग्रीष्म ऋतु है, चिलचिलाती हुई धूप रहती है, भीषण गर्मी है और प्रचंड धूप के साथ साथ में गर्म गर्म हवाएं भी चलती हैं।
0: जी आप बताइए, आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या करते हैं?
1: दीदी स्वस्थ रखने के लिए मैं व्यायाम करता हूँ, पैदल चलता हूँ, मॉर्निंग वॉक करता हूँ और अनुलोम विलोम और प्राणायाम करना पसंद करता हूँ और हलासन चंद्रासन और पद्मासन करता हूँ। भोजन करने के उपरांत प्रज्ञासन में बैठता हूँ।
0: बहुत ही अच्छी बात है कि आप अपने शरीर का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रख रहे हैं।
1: कहते हैं ना कि करिए योग रहिए निरोग।
0: जी
1: योग जो है अपने शरीर को स्वस्थ और नाड़ियों को मजबूत बनाता है, श्वसन क्रिया को अच्छी रखता है, हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, पाचन तंत्र अच्छा रहता है जिससे कि हमारा मानसिक तनाव और हम शिकार नहीं होते हैं और हम हमेशा प्रसन्न चित्र बने रहते हैं।
0: जी
1: ये योग के बहुत सारे फायदे हैं।
0: हमारे आज के हेलो फ्रेंड्स प्रोग्राम में आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
1: दीदी आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है बाजीगर।

0: हेलो फ्रेंड्स।
1: हाँ जी नमस्कार मैडम।
0: नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं आप?
1: मैडम जी लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से। मैडम
0: जी कैसे हैं आप?
1: बस मैडम जी मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और बिल्कुल आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं। 40 सालों से रेडियो की दुनिया में ही सांस ले रहे हैं।
0: फिर आपके उधर उज्जैन में बारिश हुई है या नहीं?
1: मैडम जी बारिश नहीं हुई है, बहुत ही उमस हो रही है, बारिश का इंतजार कर रहे हैं।
0: जी आप बताइए, विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, तो आप अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए क्या करते हैं?
1: मैडम जी सबसे पहले तो ये योग दिवस जो मनाया जाता है ये अपने ह्यूमन बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए मनाया जाता है
0: जी।
1: क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तो इंसान बिल्कुल स्वस्थ और अच्छा रहेगा, तो योग करने से मतलब वह स्वस्थ रहेगा। तो योग तो प्राणायाम ये दोनों करना चाहिए। और मैं योग तो नहीं कर पाता हूँ, पर मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए जरूर जाता हूँ, करीब 5 किलोमीटर पैदल घूमकर आता हूँ मैडम
0: जी। बहुत ही अच्छी बात है कि आप अपनी बॉडी का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। हमारे आज के हेलो फ्रेंड्स प्रोग्राम में आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
1: जी आप दिल वाले फिल्म का कोई सा भी गीत सुना दीजिए।

0: हेलो फ्रेंड्स,
1: हेलो फ्रेंड्स, अनिल कौचाले इंदौर से बात कर रहे हैं।
0: हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत है आपका। कौन बात कर रहे हैं आप?
1: इंदौर से अनिल कौचाले
0: जी। अनिल जी, कैसे हैं आप?
1: इस समय बैंक में हैं, वहीं से आपसे बात कर रहे हैं। और अभी ये गर्मी थोड़ी कम हुई है, आज 35 डिग्री तापमान है इंदौर का
0: जी। मतलब आप भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं?
1: ये बिल्कुल, हम तो क्या बैंक में काम करते हैं तो बैंक के काम से बाहर जाना पड़ता है। दो तीन चार महीने से बहुत परेशान थे गर्मी से, क्योंकि टू व्हीलर पे जाते हैं तो गर्मी और ज्यादा लगती है।
0: फिर आप बताइए, 21 तारीख को योग दिवस मनाते हैं, तो आप अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए क्या करते हैं?
1: मेरा हम देखा सुबह से रात तक घर के भी काम करते हैं, बैंक के काम करते हैं, तो हमारा योग तो वैसे ही हो जाता है। दिन भर ऊपर नीचे गाड़ी चलाना, ये करना, तो अलग से तो हमको मतलब योग करने का टाइम ही नहीं मिलता। फिर भी रविवार के दिन हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं
0: जी। चलिए, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। हमारे आज के हेलो फ्रेंड्स प्रोग्राम में आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
1: मैडम, हमको वेलकम फिल्म का गीत सुनना चाहिए।

0: तो दोस्तों इसी गीत के साथ हमारा आज का फोन इन प्रोग्राम यही संपन्न होता है। आपको आज का क्रम कैसा लगा हमें पत्र और ईमेल्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। हमें आपके खत और ईमेल्स का इंतजार होगा। आज के कार्यक्रम में हमें तकनीकी सहयोग दिया बिशन कुमार दांगोड़े और मनोज कुमार गुप्ता ने, और आज के कार्यक्रम को प्रस्तुत किया आपकी दोस्त और होस्ट भावना डोंगरे ने। नमस्कार।
1: हेलो फ्रेंड्स।
0: और दोस्तों अब समय भी हो गया है कार्यक्रम की शुरुआत में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने का। तो दोस्तों हमारा आज का पहला प्रश्न था, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। और दोस्तों हमारा आज का दूसरा प्रश्न था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के साथ दीजिए अनुमति आपकी दोस्त भावना डोंगरे को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। प्रस्तुत है ICC महिला T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और साउथ अफ्रीका के मध्य खेले जाने वाले मैच का आंखों देखा हाल।

0: शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। आइए अब आपको बता दें झरोखा के अंतर्गत कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।

श्री रामचरित मानस का 227वां भाग आप सुनेंगे सुबह 6:35 पर। सुबह 6:45 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम संगीत सरिता श्रृंखला वायलिन कवि हंगम संसार। कलाकार वायलिन वादक पंडित एसएल खंडारा का 5वां भाग आप सुनेंगे प्रस्तुति मनीषा जैन की। सुबह 7 बजे आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। त्रिवेणी ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सुबह 8:15 पर। लेखक यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 8:30 से। सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार। कलाकार हैं अभिनेता अमरीश पुरी, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। उजाला उजाले उनकी यादों के रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग आप सुनेंगे सुबह 10 बजे कार्यक्रम पिटारा में। रंग तरंग कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 11 बजे। दोपहर 12:05 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल। दोपहर 1 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर। त्रिवेणी कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे दोपहर 2 बजे। लेखक यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दोपहर 2:30 पर। सखी सहेली ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दोपहर 3 बजे।

पिटारा में आप सुनेंगे कार्यक्रम सेहतनामा। डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबेर खान। छाया गीत कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 5 बजे से। तराने नए पुराने कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे सुबह शाम को 5:30 पर। संध्या रंजन ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 6:35 पर। संगीत सरिता का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे शाम 6:45 पर। फौजी भाइयों के लिए विशेष कार्यक्रम जयमाला आप सुनेंगे शाम 7 बजे। शाम 7:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से, फिल्म का नाम खिलौना। रात 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम हवा महल नाटिका, वो आए घर में हमारे, लेखन राजकुमार दाग, निर्देशन सत्येंद्र शरत। रात 9 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके लिए। आज के फनकार कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे रात 9:30 पर। रात 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम छाया गीत, आलेख एवं स्वर जयंत पत्रकार का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। ढलती जाए रात ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 10:30 पर। रंग तरंग कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे रात 11 बजे।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रिकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की चौथी कड़ी।
1: संगीत सरिता के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। पंडित जी फिर एक बार आपका स्वागत है। पिछली कड़ी में हम बात कर रहे थे संगीतकार प्यारेलाल जी के बारे में। उनके द्वारा बजाया गया वॉयलिन कुछ गीतों में बड़ा मुखर रूप में हमें सुनने को मिलता है।
2: बिल्कुल,
1: तो इसके बारे में और क्या आप बताना चाहेंगे हमें?
2: देखिए, प्यारेलाल जी का एक पूरा स्कूल था फिल्म इंडस्ट्री में।
1: जी जी।
2: और उनको जितने वायलिन प्लेयर थे फिल्म इंडस्ट्री के वो बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं। उनके पिताजी राम प्रसाद जी तो फिल्म के स्कूल में उनका बड़ा दर्जा था एज ए गुरु। फिल्मों में जो वायलिन सिखाने वाले खास लोग थे उनमें राम प्रसाद जी का भी बड़ा योगदान है।
1: जी, जी।
2: और प्यारेलाल जी खुद अच्छा वायलिन बजाते थे और उन्होंने कई सारी फिल्मों में व्यक्तिगत सोलो पीसेस दिए वायलिन के बहुत सुंदर। मुझे उनके बारे में ज़्यादा कहने का अधिकार कम है इसलिए क्योंकि मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई। वो एज ए वायलिनिस्ट फिल्मों में काफ़ी पॉपुलर थे
1: जी,
2: प्यारेलाल जी। और शुरू में जब ये बड़े म्यूजिक डायरेक्टर लोग थे मदन मोहन साहब, नौशाद साहब, रोशन साहब, जयदेव साहब, उस वक्त उन्होंने कुछ सोलो पीसेस बजाए हैं फिल्मों में। और वो उनमें से मदन मोहन जी का एक गीत है जो हकीकत फिल्म का गीत है
1: जी।
2: तो वो गीत आप श्रोताओं को सुनवा सकते हैं मदन मोहन साहब के म्यूजिक डायरेक्शन में प्यारेलाल जी ने जो सोलो पीस बजाया उसमें।
1: मैं ये सोच के उसके दर से।
2: एग्जैक्टली वही गीत है।

0: हकीकत फिल्म का गीत अपने श्रोताओं को पंडित जी हमने अभी सुनवाया, रफी साहब का गाया हुआ, जिसमें प्यारे लाल जी द्वारा बजाया सोलो पीस हमने सुना। और इसी की बात हो रही थी आपसे, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कभी फिल्मों की ओर रुख करने का मन हुआ होगा आपका?
1: जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। इनफैक्ट 1975 में मैं पूना में था, नौकरी करता था
0: जी,
1: और तबादला करा के मैं केंद्रीय विद्यालय में बम्बई में आया। उस ज़माने में मेरा एजेंडा में एक बात थी कि क्लासिकल म्यूज़िक मुझे सीखना चाहिए, और पंडित रामनारायण जी अकेले वो व्यक्ति थे जिनके साथ मैं मिल के उनसे सीखना चाहता था। लेकिन यूथ जो होता है वो बड़ा कंफ्यूज होता है। मैं भी जवान था उस वक्त, तो मेरा कभी कभी फिल्मों की तरफ भी अट्रैक्शन होता था, कभी क्लासिकल म्यूज़िक की तरफ। उसी उधेड़बुन में एक दिन मैं जयदेव साहब के यहाँ जा पहुँचा, और जयदेव जी रहते थे हीरोज टाकीज जो बम्बई में है उसके पीछे लिली कोर्ट में। मेरे एक मित्र प्रदीप बारोट और मैं दोनों गए। प्रदीप बारोट सरोद बजाते हैं, तो उनके साथ मैं गया और जयदेव जी को मैंने देखा एक कमरे में चटाई बिछाए हुए। आज के म्यूजिक डायरेक्टरों से उनकी तुलना नहीं कर सकते आप, वो इतने बड़े लोग थे, महान बड़े जो वास्तव में कहे जाने चाहिए
0: जी।
1: एक चटाई बिछा रखी, तकिया लगा के थोड़ा सा विश्राम कर रहे हैं, और पास में हारमोनियम पड़ा हुआ, तो हम गए मिलने, हमें तो दर्शन करने थे। उन्होंने मुझे सलाह दी और मेरे गुरुजी पंडित रामनारायण ने सलाह दी कि फिल्मों में अगर जाओ तो मेरे पास मत सीखना। इवन जयदेव जी ने भी यही कहा कि फिल्मों में जाओगे तो फिल्मी हो जाओगे। और ये देखिए बड़प्पन बड़े लोगों का, जयदेव जी, गुरुजी, नौशाद साहब या रोशन साहब, ये सब फिल्मों में रहे लेकिन फिल्मी नहीं हुए। और यहाँ एक बात मैं बहुत आदर के साथ श्रोताओं को और आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे गुरुजी ने फिल्मों में असंख्य पीसेस बजाए और एक से एक उम्दा, जिनका जिक्र अगले एपिसोड में करेंगे
0: जी।
1: तो जयदेव जी ने मुझे कहा कि फिल्मों में बजाओगे तो फिल्मी हो के रह जाओगे। जयदेव जी इतने महान संगीतज्ञ थे कि उन्होंने जिस फिल्म में भी गीत बनाए हैं वो गीत महान हुए। एक गीत उनका सुना दीजिए, तू चंदा में चांदनी, रेशमा और शेरा फिल्म का, ये मेरी तरफ से उनको आदर होगा।
0: जयदेव साहब की बात निकली है तो उन्हीं का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं
1: जी। अवश्य

0: महान संगीतकार जयदेव की ये संगीत रचना फिल्म रेशमा और शेरा से अपने श्रोताओं को हमने सुनवाई, लता जी की आवाज, बाल कवि बैरागी की रचना, और इस रचना के साथ ही वॉयलिन का विहंगम संसार, इस श्रृंखला की ये कड़ी यहीं संपन्न हो रही है। नमस्कार।
1: वॉयलिन का विहंगम संसार। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की चौथी कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा, आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
0: गलियां। आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा। बस कुछ ही पलों के बाद
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल

0: नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेन्स कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघजी कर रहे हैं। यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब ईरान ने कहा कि लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया गया। वहीं अमरीकी सेना का कहना है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत आईएनएस दोनागिरी संशोधक और अग्रह राष्ट्र को समर्पित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। नीट यूजी की पुनः परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच आयोजित की गई। परीक्षा देश के 551 और विदेश के 14 शहरों में आयोजित हुई। इसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। भारत ने FIH महिला हॉकी नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। ऑकलैंड में फाइनल में आज भारत ने न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर अपना दूसरा खिताब जीता। इस जीत के साथ भारत ने FIH महिला प्रो लीग में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी। उधर दाम्बुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हराया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: इछे निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
4: क्या बात है जीजी, नई साड़ी, नए गहने, बड़ी सजी धजी लग रही हो।
5: अरे जीजी, असल में बात ये है, हमारे इन्ने ना जब से आकाशवाणी खंडवा पे हमारी दुकान का

0: विज्ञापन दिया है ना, तब से हमारी दुकान बहुत चल रही है। मतलब
1: है? ऐसा क्या? अब मैं भी अपने इनको बोलूंगी कि हमारे बिजनेस का विज्ञापन भी आकाशवाणी खंडवा पर दे। पर देंगे कैसे?
0: अरे इसमें क्या है जीजी, बस आकाशवाणी खंडवा जाओ और विज्ञापन दो।
2: सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: आप सुनी रहे आज निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है निमाड़ की सुरीली धड़कन
2: आकाशवाणी खंडवा।
3: जिस

0: अरे क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो?
1: सोच रहा हूँ अपनी दुकान का विज्ञापन कब दूँ और कहाँ दूँ।
0: अरे इसमें उदास होने की क्या बात है?
1: क्यों?
0: आप अपनी दुकान का विज्ञापन कर सकते हैं आकाशवाणी के माध्यम से।
1: वो कैसे?
0: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र पर जाकर सोमवार से शुक्रवार कार्यालयीन समय के बीच आप अपनी दुकान का विज्ञापन दे सकते हैं।
1: अच्छा, तो इसका फायदा क्या होगा?
0: इसका फायदा ये होगा कि आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण न सिर्फ हमारे क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में भी सुना जाता है। तो आपकी दुकान तो हो गई ना मशहूर,
1: वर्ल्ड फेमस। बिल्कुल, तो मैं आज ही जाता हूँ आकाशवाणी खंडवा।
0: आप कब आ रहे हैं?
1: आकाशवाणी खंडवा पर।
2: मीठी निमाड़ की सुरीली धड़कन,
3: जहाँ होती है मीठी मीठी बातें और सुनाए जाते हैं प्यारे प्यारे गाने।
4: इश्क़ दी चाशने, ओ मीठी मीठी चाशने।
2: तो आप भी इसकी मिठास में खो जाएं, सुनते रहें निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
4: ओ मीठी।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: PLI है ना?
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
4: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
5: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया।

0: अब भी कॉल करता हूँ दीदी,
1: बिना नंबर जांचे। अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
0: तो फिर सही नंबर,
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
0: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
2: RBI कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि शिक्षा संस्थान केवल डिग्री देने वाले ही नहीं बल्कि नवाचार के प्रमुख केंद्र होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के तीन

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि शिक्षण संस्थान केवल डिग्री देने वाले ही नहीं बल्कि नवाचार के प्रमुख केंद्र होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच आयोजित की गई और दक्षिण पश्चिम मानसून के 25 जून तक प्रदेश में प्रवेश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षण संस्थान केवल डिग्री देने के केंद्र नहीं बल्कि नवाचार, अनुसंधान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और रचनात्मक सोच के विकास के प्रमुख केंद्र होते हैं। आधुनिकता और परंपरा के संतुलन से ही देश का समग्र विकास संभव है। राष्ट्रपति आज जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा,
1: रानी दुर्गावती भारत के नारी शक्ति के शौर्य की प्रतीक, वे सदैव नारी शक्ति के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। इस विश्वविद्यालय के आसपास के क्षेत्र में जनजातीय वनवासी संस्कृति की प्रचुर उपस्थिति है। इस विश्वविद्यालय से जुड़े रानी दुर्गावती के नाम की सार्थकता सभी सिद्ध होगी, जो सभी भागीदारी जनजातीय समाज और वंचित तथा पिछड़े वर्ग, विशेषकर इन वर्गों की बेटियों की सशक्तिकरण के लिए प्रयास करें।
0: इस अवसर पर राष्ट्रपति ने विभिन्न संकायों में से एक से अधिक स्वर्ण पदक अर्जित करने वाले 20 छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक प्रदान किए और उपाधियों का वितरण किया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के 141 विद्यार्थियों को 240 स्वर्ण पदकों का वितरण किया गया। साथ ही 182 शोधार्थियों को पीएचडी सहित विभिन्न उपाधियां प्रदान की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी शामिल हुए। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि
2: रानी दुर्गावती का विश्वविद्यालय आज एक गौरवशाली इतिहास को लिख रहा है। जब 5-5 स्वर्ण पदक लेकर के बेटी हमको सीना 56 इंच का करने का मौका दे रही, कितना अच्छा लगता है। कोई 3 स्वर्ण पदक, कोई 2 स्वर्ण पदक, जो नई प्रतिभाओं के बलबूते पर विश्वविद्यालय अपना नया इतिहास लिख रहा है, ये हमारे लिए गौरवशाली क्षण है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब 12वां वर्ष उनकी सफलता के नए कीर्तिमान रच रहा है, ऐसे में विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रांगण, मां सरस्वती के प्रांगण में आज ये नया सूर्य उगा है।
0: कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति विशेष विमान से ग्वालियर पहुंची। ग्वालियर विमानतल पर स्वागत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू और राज्यपाल पटेल कुछ देर रुकने के पश्चात हेलीकॉप्टर से श्योपुर जिले के क्रूनो के लिए रवाना हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में योग किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भी योग की विभिन्न मुद्राओं तथा प्राणायाम का अभ्यास किया। प्रदेश के सभी जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सामूहिक योग के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें जनप्रतिनिधि और आम नागरिकों ने बड़ी संख्या में सहभागिता कर योग की विभिन्न मुद्राओं का अभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इंदौर ने ब्राह्मणी प्राणायाम में नया रिकॉर्ड बनाया। इंदौर शहर में सामूहिक योग कार्यक्रम के दौरान हजारों प्रतिभागियों ने 3 मिनट से अधिक समय तक लगातार ब्राह्मणी प्राणायाम किया। आयोजकों ने इसे सामूहिक सहभागिता और योग के बढ़ते जन आंदोलन का प्रतीक बताया। इधर राजधानी भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन द्वारा सुरक्षा, पेयजल, चिकित्सा और अन्य बुनियादी सुविधाओं की विशेष व्यवस्था की गई थी। ग्वालियर में सामूहिक योग कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के 3 पोत INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं, घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जहाज रखरखाव, मरम्मत एवं संचालन को एक बड़े राष्ट्रीय मिशन के रूप में देखा जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि युद्धपोतों का नौसेना में शामिल होना भारत के भविष्य का संकेत है। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र विकसित भारत के लिए रोजगार का बड़ा माध्यम बन सकता है और आने वाले वर्षों में लाखों नए रोजगार सृजित होने की संभावना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि

0: हुई है। नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सीबीएसई के शेष परीक्षा परिणाम जल्द जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अधिकांश परिणाम घोषित किए जा चुके हैं और पुनर्मूल्यांकन तथा सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बाकी परिणाम भी जल्द प्रकाशित कर दिए जाएंगे।
1: सीबीएसई की जो रिजल्ट बचा हुआ है, इसे सीबीएसई के 17 लाख बच्चों से लगभग 15.5 लाख बच्चों की रिजल्ट आ चुकी है। जो बच्चे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था वो काम लगभग पूरा हो चुका है। सीबीएसई जल्द ही उसको प्रकाशित करने वाला है।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच आयोजित की गई। परीक्षा देश के 551 और विदेश के 14 शहरों में आयोजित हुई। इसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया। परीक्षा के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। इसमें सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और प्रश्न पत्रों के सुरक्षित परिवहन के लिए जीपीएस युक्त वाहनों के साथ पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था शामिल थी। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की गई। यह अंग्रेजी सहित 12 भारतीय भाषाओं में संपन्न हुई। परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित और पारदर्शी संचालन के लिए 2 लाख से अधिक कर्मियों को तैनात किया गया। इनमें पर्यवेक्षक, समन्वयक, पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी शामिल थे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने भ्रामक सूचनाओं और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए सोशल मीडिया मंचों पर भी लगातार निगरानी रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज FIH महिला हॉकी कप जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में टूर्नामेंट टीम के असाधारण प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह जीत कई युवा खिलाड़ियों को हॉकी खेलने के लिए प्रेरित करेगी। प्रदेश में मानसून की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। मौसम विभाग ने इसके 25 जून तक प्रवेश करने की संभावना जताई है। प्रदेश में प्री मानसूनी गतिविधियां जारी हैं। विभाग के अनुसार आज इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर सहित 37 जिलों में आंधी, गरज चमक और बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी का 56वां स्थापना दिवस समारोह कल भोपाल में आयोजित किया जाएगा। समारोह के मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार होंगे। इस अवसर पर अकादमी द्वारा प्रकाशित प्रगति पथ ब्रोशर ऑडियो मासिक पत्रिका रचना का विमोचन किया जाएगा। ये प्रकाशन अकादमी की शैक्षणिक, साहित्यिक एवं ज्ञान विस्तार संबंधी गतिविधियों का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय संचार ब्यूरो प्रादेशिक कार्यालय भोपाल की ओर से 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज आसरा वृद्धाश्रम में बड़े उत्साह के साथ विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खंडवा में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला स्तरीय सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम पुरानी कृषि उपज मंडी परिसर में किया गया। नीमच में योग दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। नर्मदापुरम में नर्मदा नदी के पावन तट पर सेठानी घाट पर आयोजित योग दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, विद्यार्थियों और बड़ी संख्या में नागरिकों ने सामूहिक योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संकल्प लिया। प्रधान जिला न्यायाधीश आशिता श्रीवास्तव के संरक्षण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव शिव कुमार डावर के निर्देशन में जिला जेल छाबुआ में साप्ताहिक योग अभियान का आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर समापन हुआ। मंदसौर के नूतन स्टेडियम में जिला स्तरीय सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। मध्यप्रदेश जनजाति संग्रहालय में नृत्य, गायन एवं वादन पर केंद्रित गतिविधि संभावना का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज श्री कृष्णा मालीवाड़ एवं साथी मांडू द्वारा भील जनजातीय भगोरिया नृत्य एवं घुमन प्रसाद पटेल एवं साथी दमोह द्वारा कांवड़ नृत्य की प्रस्तुति दी गई। शिवपुरी जिले की ग्राम पंचायत मारूरा अहिर में प्रशासनिक टीम ने अवैध बोरिंग मशीन पर कार्यवाही की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि शिक्षण संस्थान केवल डिग्री देने वाले ही नहीं बल्कि नवाचार के प्रमुख केंद्र होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच आयोजित की गई और दक्षिण पश्चिम मानसून के 25 जून तक प्रदेश में प्रवेश की संभावना। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब सुनिए आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मैनचेस्टर में खेले जा रहे क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल, जो हम दिल्ली से रिले कर रहे हैं।
1: भारत ने अपने 50 रन पूरे किए हैं 26 गेंदों का सामना करते हुए। भारत का स्कोर पहुंचा है 52 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर 4.2 ओवर्स की समाप्ति के बाद। यशिका भाटिया खेल रही है 6 के अपने व्यक्तिगत।
2: बढ़े चलो बहादुरो, बढ़े चलो, पत्थर जो आए

0: अनुमान के अनुसार पाकिस्तान ने 3 और 4 दिसंबर की रात अपनी 2 बटालियन के साथ हमला बोला। 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री का मुकाबला 43वीं बलूच के साथ हुआ। देर रात शुरू हुए इस हमले में पाकिस्तान को बढ़त मिली और उसने घोगा, बहलोल, गुलगढ़ के साथ पूरे धुस्सी बंद पर कब्जा कर लिया, जिसमें दक्षिण छनकला से लेकर दक्षिण भिंडी औलख भी शामिल थे। सुरक्षा सीमा बल की फतेहपुर पोस्ट पर भी दुश्मनों का कब्जा था। भारतीय सेना के हाथ में गांव बने रहे, लेकिन एक बड़ा क्षेत्र दुश्मनों के कब्जे में था। युद्ध के मैदान में हार जीत बनी रहती है, लेकिन सबसे जरूरी होता है अपने हौसले और धैर्य को बनाए रखना। यहाँ हम ये नहीं देखते कि दुश्मन के हाथों में क्या है, बल्कि इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि हमारे पास मौजूद संसाधनों का उपयोग किस तरह किया जाए। यही वो गुण है जो हमारी भारतीय सेना के जवानों के अंदर मौजूद है।
1: आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज चंद की घड़ी की तुंग हार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज चंद की घड़ी की तुंग हार दो। आन आन शान।

0: करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो।
1: आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी

साल भर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो ताल तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो।

0: जयमाला, सैनिकों की शौर्य गाथा में समय है एक अंतराल का।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला, सैनिकों की शौर्य गाथा। इस श्रृंखला में आज देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित सिपाही पांडुरंग सालुंखे की शौर्य गाथा।

पाकिस्तान की ओर से युद्ध आरंभ हो चुका था और एक बड़ा क्षेत्र भी उनके कब्जे में था। हमारे आज की शौर्य गाथा के नायक सिपाही पांडुरंग सालुंखे अपनी रेजिमेंट के साथ युद्ध मैदान में डटे हुए थे। आगे की रणनीति पर विचार हो रहा था तो 5 दिसंबर को 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री ने अपना प्रयास जारी रखा और एक छोटी ही सही लेकिन महत्वपूर्ण घटना हुई। दुग और औलख में ईस्ट बंगाल राइफल्स के करीब 150 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। वो अपने साथ पाकिस्तानी सेना से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी भी ले आए थे। सेना ने यह तय किया कि पाकिस्तान के कब्जे से धुस्सी बंद को वापस लेना है, किसी भी हार से तुरंत बौखलाकर वार न करना बल्कि कुछ कदम पीछे हटकर एक रणनीति के साथ वापस युद्ध मैदान में जाना एक सार्थक परिणाम भी लाता है। रग रग

15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट युद्ध के मैदान में डटी थी। इसका नेतृत्व कर रहे थे मेजर रणबीर सिंह, जो सेकंड इन कमांडर थे और कंपनी कमांडर का दायित्व भी निभा रहे थे। वो अपनी सेना के साथ बुर्ज की ओर आगे बढ़ने लगे। शत्रुओं को इसकी भनक लगते ही 6 दिसंबर को बुर्ज पोस्ट पर पाकिस्तानी सेना की ओर से दिन के उजाले में ही हमला होने लगा। ऐसे में मराठा लाइट इन्फेंट्री ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। इसकी उम्मीद शत्रु सेना को नहीं थी, वो इस हमले से सकते में आ गए। पीछे हटने के सिवा उनके पास कोई चारा ही नहीं था। मेजर रणबीर सिंह ने निर्णय लिया कि अब बुर्ज पर अधिकार करने में ज्यादा समय लगाना उचित नहीं होगा। अगर जरा सी भी देर की गई तो शत्रु एक बार फिर तैयार हो सकते हैं। एक ओर जहां शत्रु सेना एक छोटी सी जीत के जश्न में ही डूब गई थी, वहीं हमारी सेना के निर्णय से आप समझ सकते हैं कि अगर शत्रुओं को खदेड़ना हो तो एक छोटी जीत को अपने दूसरे प्रयास से बड़ी जीत में बदलने के बाद ही

जश्न मनाया जा सकता है। पाकिस्तानी सेना को बुर्ज में मुंह तोड़ जवाब देने के बाद सिपाही पांडुरंग सालुंखे अपनी मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के साथियों के साथ अगले आदेश का इंतजार कर रहे थे। उनकी रेजिमेंट का नेतृत्व मेजर रणबीर सिंह के हाथ में था। मेजर रणबीर सिंह ने ये तय किया कि अब दुश्मन सेना को ज्यादा समय देना उचित नहीं है। अपनी अन्य साथी सेनाओं के साथ उन्होंने एक ऐसी रणनीति अपनाने का फैसला किया जो दुश्मन के लिए भ्रम की स्थिति पैदा करे। बिना देर करते हुए एक योजनाबद्ध हमला करने का फैसला किया गया, जहां दुश्मन को दोनों ओर से घेरने की योजना बनाते हुए टैंक टुकड़ी को पीछे से और बाकी आगे से हमला करने निकल चले। इससे शत्रु के आगे बढ़ने का रास्ता तो बंद होता ही था, साथ ही वो पीछे हटने लायक भी नहीं रह पाता। शत्रु की कल्पना से परे एक ऐसा रास्ता निकालना जो उसके होश उड़ा दे, एक बेहतरीन नेतृत्व का उदाहरण है। ऐसे कई उदाहरणों की भरमार है हमारे सैनिकों की शौर्य गाथा में।

बेहतरीन नेतृत्व तभी सफल हो पाता है जब उसके पास एक साहसी और निडर सेना मौजूद हो। मेजर रणबीर सिंह 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट और अन्य रेजिमेंट्स के साथ बुर्ज पर दुश्मनों को दोनों ओर से घेरने की योजना बना चुके थे। ऐसे में उन्हें अपने साथ मौजूद सभी सैनिकों पर पूरा भरोसा था। रेजिमेंट्स भी अपने साहस, पराक्रम और जज्बे का एक एक कतरा न्यौछावर करने को तैयार थे। मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट जिनकी रग रग में दौड़ता है कर्तव्य, सम्मान और साहस, जो हर बार शत्रुओं को ये याद दिलाते हैं कि वो भारत की सबसे पुरानी लाइट इन्फेंट्री हैं, जिनके युद्ध घोष से ही शत्रु के हृदय में भय की झंकार होती है। उसी 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में शामिल थे हमारी आज की शौर्य गाथा के नायक सिपाही पांडुरंग सालुंखे, जो अपने साथियों के साथ मेजर रणबीर सिंह के नेतृत्व में पूरी तरह तैयार थे शत्रुओं पर हमला बोलने के लिए। 6 दिसंबर को बुर्ज पर हमला शुरू हुआ। बंकरों में छुपी शत्रु सेना के साथ मराठा पैदल सेना ने आमने सामने की लड़ाई की। यहां तक कि हमारी सेना ने कुछ स्थितियों में शत्रुओं से सीधे हथियार छीन लिए और उन्हें हराया। ये एक बेहद क्रूर और मुश्किलों से भरी लड़ाई थी, क्योंकि हमारे सैनिक शत्रुओं के मोर्चे पर जाकर उनसे सीधे लड़ रहे थे। इस बीच पीछे से टैंक और पैदल सैनिक भी उनकी मदद के लिए आ रहे थे। शत्रु बुरी तरह से बौखलाया हुआ था। एक ओर उस पर सीधा हमला जारी था और दूसरी ओर उसे अपनी हार नजर आने लगी थी। ऐसी बौखलाहट में अक्सर आक्रामकता बढ़ती जाती है। सिपाही पांडुरंग सालुंखे भी यहाँ शत्रुओं से दो दो हाथ कर रहे थे। तभी उनकी नजर शत्रुओं के एक ऐसी चाल पर पड़ी जिससे हमारी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था। शत्रु ने एक रॉकेट लॉन्चर पैदल सेना के साथ आ रहे भारतीय टैंकों की ओर मोड़ दिया था। अनहोनी किसी भी वक्त हो सकती थी। सिपाही पांडुरंग सालुंखे शत्रु सेना से बुर्ज पर अपने साथियों के साथ भिड़ रहे थे। इसी बीच दुश्मनों ने रॉकेट लॉन्चर पीछे से आती पैदल सेना और भारतीय टैंक की ओर मोड़ दिया। एक पल में ही बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। जैसे ही सिपाही पांडुरंग ने रॉकेट लॉन्चर को देखा, बिना वक्त गवाए वो उस ओर दौड़ पड़े। सिपाही पांडुरंग सालुंखे ने शत्रु सैनिक के हाथ से रॉकेट लॉन्चर छीन लिया और उस शत्रु सैनिक को मार गिराया। लेकिन शत्रु उनके इस कारनामे से बौखला गया और सिपाही पांडुरंग सालुंखे पर स्टेन गन से धुआंधार वार

किया। गोलियों की इस बौछार से सिपाही पांडुरंग सालुंखे वहीं शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने अपने इस बलिदान से अपने कई साथियों की जान बचा ली। यही नहीं, उनके इस बलिदान के कारण ही बुर्ज पर भारतीय सेना का कब्जा हो सका।

सिपाही पांडुरंग सालुंखे ने जब बलिदान दिया तब वो मात्र 22 वर्ष के थे। इस छोटी सी उम्र में ही उन्होंने वो बड़ा काम किया जिनसे उनका नाम अमर हो गया। सिपाही पांडुरंग सालुंखे को उनकी इस असाधारण बहादुरी, अदम्य साहस और कर्तव्य निभाते हुए देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने के लिए मरणोपरांत देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।

हम इस जांबाज सिपाही को नमन करते हैं। विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित सिपाही पांडुरंग सालुंखे की शौर्य गाथा। शोध, आलेख और स्वर निहाल शर्मा का, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। अब दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम इंद्रधनुष साज और आवाज। बांसुरी पर हैं पारसनाथ। सबसे पहले सुनते हैं इस गीत की धुन।

आइए सुनते हैं अब इस गीत को फिल्म सनम तेरी कसम से, आवाज़ किशोर कुमार की, गीत के बोल गुलशन बावरा के और संगीत आर डी बर्मन का।

0: श्रोताएं, गीत आपने सुना फिल्म प्रेम गीत से, आवाज जगजीत सिंह की थी। गीत के बोल इंदिवर के और संगीत,
1: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए व्यापार में सुगमता, सुधारों से सशक्त होती अर्थव्यवस्था पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय और डॉक्टर SP शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: इन द लास्ट 12 इयर्स ऑफ द NDA गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज ऑलवेज एम्फसाइज्ड that ease of doing business is one of the major priorities of the government, and the government has relentlessly been working to

0: towards this goal so that business opportunities can be democratized, more and more people can become a part of the nation building exercise. And of course, the concept which has been reiterated time and again, that instead of job seekers, more and more people become job creators. So to discuss this very important topic of ease of doing business, how it has strengthened India's business framework in the last 12 years, we have two economic experts with us, Mr. Dilip Chinoy and Dr. S.P. Sharma, economic experts. A warm welcome to you on Akashvani.
1: Thank you.
0: So, Dr. Sharma, पहले आपके पास आते हैं और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पिछले 12 वर्षों में जिस तरह से व्यापार जगत बढ़ा है, जिस तरह से ज्यादा नए व्यापारों को एक तरह से प्रोत्साहन मिला है सरकार की ओर से, जो रिफ्लेक्ट होता है स्टार्टअप्स, अगर हम देखें 350 स्टार्टअप्स थे 2014 में और अब 220,000 स्टार्टअप्स है हमारे देश में. सो एक स्टेटिस्टिक जस्ट इट्स रिप्रेजेंटेटिव की किस तरह से ग्रोथ हुआ है. सो आप कैसे देखते हैं 12 वर्षों को बिजनेस एनवायरनमेंट जो इंप्रूव हुआ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्या लगता है आपको सरकार के कौन से एफर्ट्स, अगर आप टॉप टू हमें बताएं, इस दिशा में जो रिफॉर्म्स परिवर्तनकारी रही हैं?
2: जी बिल्कुल, सोनू जी आपने सही बताया कि जो रिफॉर्म्स हुई हैं जो पिछले 12 वर्षों में, जिन्होंने एक बहुत मेजर ब्रेक थ्रू दी है हमारी इकोनॉमी को, हमारे मैन्युफैक्चरिंग को और हमारे ओवरऑल जो देश का जो जीडीपी है उसको आगे बूस्ट अप किया है. तो सरकार का जो पहल था जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ, मेक इन इंडिया से, क्योंकि मेक इन इंडिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बिना कुछ भी नहीं था. तो सरकार ने मेक इन इंडिया को अनाउंस करते ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स के ऊपर जोर दिया, बहुत बल दिया, जिससे कि हम बहुत अच्छे से इंप्रूव कर पाए. अगर हम देखें कि 2014 में जो हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंक था वो 143 था, वर्ल्ड बैंक का एक इंडेक्स आता था उस टाइम पे, तो जिसमें हम 143 थे, बहुत नीचे थे. मतलब लगभग जो जितनी भी इकोनॉमीज हैं, जो भी इमर्जिंग मार्केट्स हैं या फिर एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, इवन के डेवलपिंग इकोनॉमीज भी हमारे से काफी ऊपर थी. तो उसके बाद सरकार ने इसके ऊपर पूरा जोर दिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रिफॉर्म्स के ऊपर जोर दिया, तो हम धीरे धीरे करके 2020 तक जो थे 63 तक आ गए थे हम अपना रैंकिंग, जो था सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करते हुए 63 पे आए. उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने अपना इंडेक्स बंद कर दिया, मे बी बिकॉज ऑफ सम रीजंस. उसके बाद जो स्टेट्स ने, उन्होंने अपना ब्रैप रिफॉर्म्स चालू किए, बिजनेस रिफॉर्म्स असेसमेंट प्लान जो था, उसके बाद उसमें बहुत तेज गति से काम हुआ, स्टेट्स में एक बहुत हेल्दी कॉम्पिटिशन हुआ, जिसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो एक पैशन बन गया, जो लोगों में, बिजनेसेस में, सरकार में, उसमें ज्यादा से ज्यादा रिफॉर्म्स हो, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो होनी शुरू हो गई, जो उसके पिलर्स हैं खास करके, जो एक हम बात करते हैं कि फेसलेस, पेपरलेस और फिर लेसर प्रोसीजर्स एंड लेसर कंप्लाइंसेस, ये चार जो पिलर्स हैं, इन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू दी है, जिससे हम आज अगर हम देखते हैं हमारे स्टार्टअप्स, जो आपने बात की कि लगभग कोई 360 स्टार्टअप्स थे, उसके बाद अभी 220,000 हैं. अगर हम देखें कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, अभी हमारा लास्ट ईयर का अगर हम उसका ग्रोथ रेट देखें तो मैन्युफैक्चरिंग ग्रू मोर देन 10%. सो डबल डिजिट ग्रोथ इज कमिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. तो ये सब चीजें जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से ही हो पाई, जिससे कि हमारा जो इन्वेस्टर है, जो ग्लोबल इन्वेस्टर है, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुआ और जो एफडीआई आना शुरू हुआ, जो 2019-20 के बाद एक एफडीआई को ब्रेक थ्रू मिली और अभी हम 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा क्यूमुलेटिव एफडीआई अट्रैक्ट कर चुके हैं. हमारे देश में 1 ट्रिलियन से ज्यादा का एफडीआई का एक क्यूमुलेटिव जो भंडार है वो हो चुका है और अभी लास्ट ईयर ही हमारा एफडीआई $95 बिलियन था. तो लगभग हम, मेरे ख्याल से इसी वर्ष में हम $100 बिलियन का एक एफडीआई डेस्टिनेशन बनने जा रहे हैं. सो दिस इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ अवर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विच हैज सपोर्टेड द मैन्युफैक्चरिंग, अवर एफडीआई एंड अवर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू मूव फॉरवर्ड एंड टू बिकम मोर एंड मोर रेजिलिएंट इन द ग्लोबल इकोनॉमी.
0: एब्सोल्युटली. सो मिस्टर चिनॉय, डॉक्टर शर्मा हैज सो यू नो एक्सटेंसिवली एक्सप्लेन दैट हाउ द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हैज बिकम द मंत्रा फॉर द पुश दैट हैज कम टू द मैन्युफैक्चरिंग sector, to the Make in India initiative of the government and the GDP growth. Would you say that the government's focus has gradually shifted from a compliance-heavy system to a facilitation-driven ecosystem? How do you see this basic mindset change, or you can say paradigm shift, in how the government is taking a collaborative and inclusive approach?
3: If you look at the whole ecosystem, right, earlier business was always viewed with suspicion.
0: Yes.
3: You are always seen as being a tax evader, not filing returns, you know, always evading and finding ways to circumvent the law, whatever it is.
0: Mm-hmm.
3: A very significant

0: particularly the new and young entrepreneurs to come into the system.
1: Yes.
0: Now, when I go to some classes or the MBA classes for some guest lectures, then the students talk about the entrepreneurship.
1: Hmm.
0: They want to know about the opportunities existing in the promising areas of the economy.
1: Yes.
0: Now, the entrepreneurship is in their mind. They want to move forward to become entrepreneur to provide the jobs to the other people. So, this is the reflection of overall ease of doing business during the last 12 years with the many reforms starting from Make in India to the recent reform of Bhavya scheme. Like the government has provided industrial park scheme. You can develop your manufacturing plant in a single go, in a single space to move forward. And that is a great example of ease of doing business.
1: Yes.
0: Like the single window system was providing the procedural breakthrough. Now this Bhavya scheme is providing the setup of business at a single space. So all these developments are supporting the economy, supporting the businesses and supporting the employment to happen for the growing young population in the country. So I'll give you some more example. Like earlier I discussed the FDI inflows in India. Now the free trade agreements. These free trade agreements are becoming a major breakthrough for the Indian economy in the global economic system. We have already signed 8 free trade agreements. 9th is in process since the last 6-7 years. And these free trade agreements will become more fruitful with more and more ease of doing business.
1: Yes.
0: So as already we have undertaken many reforms for the ease of doing business. So this is the right time to move forward to become more and more strong in the global economic system with the free trade agreements with the promising economies. So this is the support of ease of doing business that the government is able to sign free trade agreements with the many competitive economies in the advanced economies.
1: Yes.
0: Like 38 economies are advanced economies in the all free trade agreement which we have signed during the last 6-7 years.
1: Absolutely.
0: With a great confidence.
1: Yes.
0: That yes, we have a strong ease of doing business. We can compete with them in the global market or even in the domestic market, as ease of doing business has created a great level playing field in the economy. So going forward, I believe now we are very much capable to move forward and to become a great player in the global economy, to compete with many countries. Like Shunai mentioned that our PMI is now at the top of the competitive economies.
1: Absolutely.
0: We are, our PMI is higher than any economy in the top 10 economies. Like our services PMI, our manufacturing PMI, even despite the such kind of headwinds at the global level, our PMI is more and more resilient in the global economic
1: Absolutely.
0: System.
1: Absolutely. So Mr. Chinoy, जैसा कि अभी डॉक्टर शर्मा ने कहा कि हम और आपने भी कहा कि इतने हम आपदाओं से गुजरे, इतनी मुश्किल सिचुएशंस जो इंटरनेशनल लेवल पर हुई, चाहे वो पैंडेमिक हो, चाहे ये जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हो, बट फिर भी हमारे आर्थिक मजबूती बनी रही है. मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो सरकार के फ्लैगशिप स्कीम्स रही हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया या पीएम मुद्रा योजना, जिसमें आपको एक बिजनेस शुरू करने के लिए कोलैटरल फ्री बहुत कम इंटरेस्ट पे लोन दिया जाता है, या जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन सिस्टम बनाया गया था सरकार द्वारा, इनको आप कितना कहें कि क्रांतिकारी मानते हैं, जिन्होंने सबको, जिनकी भी ड्रीम थी एक व्यापार शुरू करने की, उसे पूरा करने का एक मौका दिया.
2: सुरेश जी, अगर आप देखें तो अगर एक बिजनेस शुरू करने के लिए, और आपने एसपी शर्मा से ये पूछा था कि क्या बदला है, ठीक है, तो पहला जो चीज बदला, जैसे उन्होंने समझाया कि आप घर बैठे बैठे, और आपने पूछा ऑनलाइन का, आप घर बैठे बैठे अपना बिजनेस रजिस्टर कर सकते हैं, आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, आप पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं और आप टैक्सेस भर सकते हैं. तो आपका जो समय बर्बाद होता था लाइनों में खड़े हुए और ये इंटरेक्ट करने के लिए, वो एक बहुत कम सा हो गया है. अगर आप देखें जो स्कीम्स जिसकी आपने बात की थी, तो ये स्कीम्स जो आपने इस 3 स्कीम्स की बात की थी ना, ये एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए है. जो आप देखें तो जो मुद्रा स्कीम है वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए और उनके लिए जो छोटे छोटे अमाउंट्स जो बैंक्स में एक बहुत अविश्वसनीय होती थी, क्योंकि बैंक के लेंडिंग पोर्टफोलियो में जिसकी उनको कॉस्ट पड़ती थी उस लोन को देने के लिए, वो उनका इंटरेस्ट कवर नहीं करता था. तो गवर्नमेंट ने जब ये स्कीम एक तरीके से लागू किया, और इनमें मुद्रा स्कीम तो एक ही उस वर्ग के लिए, ठीक है, अलग अलग स्कीम जो है, स्ट्रीट वेंडर्स के लोन स्कीम है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए स्कीम है. तो इस रिफॉर्म की एक खासियत है कि उन्होंने, और किसान क्रेडिट कार्ड उसको मत भूलिएगा,
1: जी, जी जी,
2: उन्होंने पूरे जो इकोनॉमी में जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटा है, लोअर्स लेवल से लेके हाईएस्ट बिजनेसमैन एंड एफडीआई के लिए, हर कदम पे उनको

0: क्या दिक्कत आ रही है, उनकी क्या जरूरत है, उसके लिए एक स्कीम लॉन्च किया है, पीएम विश्वकर्मा स्कीम, जिसको कारीगर को एक लोन मिलता है अपने टूल्स को करने के लिए और एक उनको स्किलिंग करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जनधन योजना और जो आधार और मोबाइल का जो ट्रिनिटी है, उन्होंने ग्रास रूट लेवल में लोगों की जिंदगी बदल दी है। और साथ में क्योंकि वो छोटे छोटे अमाउंट्स जो जनधन योजना में आए थे और जो करोड़ों अकाउंट्स खोले गए थे, अगर उसकी आप पूंजी जोड़िए तो वो सारा जो पूंजी है इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाने के काम आई है। वो पहले तो एक अपने घर में रखी रहती थी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी सपोर्ट नहीं करती थी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज के जमाने में 2012-13 में आप पूछें कि आप अपने बेटे को क्या बनाएंगे, तो लोग कहते थे इंजीनियर, डॉक्टर या चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप का नाम ही नहीं आता था। और अगर किसी को कहते कि आप बिजनेस शुरू करें तो माँ बाप कहते कि नहीं बेटा बेटी आप मत जाओ इसमें, आप एक नौकरी करो। एक माइंड सेट चेंज हो गया है देश भर में, गांव गांव में। और अब एक एंटरप्रेन्योर बनने में बहुत ही इज्जत है और देश के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरी जो उसके साथ में आया है, और आपको ये आंकड़ों से नहीं पता होगा लेकिन अगर आप देखें तो अगर आप बिजनेस में फेल करते हो कि आपकी बिजनेस चले नहीं, तो पहले ही एक बहुत ही बुरी नजरिए से देखा जाता था। अब कहते हैं नहीं बेटा आप इस फेलियर से सीखो और दूसरा बिजनेस शुरू करो।
1: बिल्कुल।
0: और ये एक खास, पहले ये रिफॉर्म्स होने से पहले ये एक बहुत खास डिफरेंस था भारत में और अलग अलग इकोनॉमीज में। अब इंडिया में भी वो एक तरीके से आ गया। और जो ग्लोबल स्तर पे अभी आप देखें तो मेडिकल डिवाइसेस में, ड्रोन्स में, कई कई सेक्टर्स है, स्पेस में यंग स्टार्टअप्स जो है इस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस स्पेस में देखे तो इसरो से कम्पीट कर रहे हैं, डिफेंस में डीआरडीओ से कम्पीट कर रहे हैं, मेडिकल में मेडिकल लेबोरेटरीज के।
1: और कम्पीट की जगह शायद हम कह सकते हैं कि कोलैबोरेशन का एक सरकार का भी है कि उन्होंने सारे सेक्टर्स खोले हैं और वेलकम किया है।
0: बिल्कुल, आपने इमरजेंसी लोन फैसिलिटी किया था लेकिन आप वो देखें, वो आत्मनिर्भर भारत का कोविड के अंतर्द्वान एक स्कीम था जो कोविड में गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एनजीओज और सिटीजन्स ने जो कोलैबोरेट किया था। अभी देखिए कोविड के पहले तो हम ना पीपीई किट्स बनाते थे, ना वैक्सीन बनाते थे, ना वेंटिलेटर बनाते थे। पूरे गवर्नमेंट इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के साथ हमने वैक्सीन यूज की, अपनी ओन वैक्सीन। ठीक है, पीपीई किट्स में हम नंबर वन बन गए थे, वेंटिलेटर्स बनाना शुरू किया था और कई एक तरीके से थे। और जो स्कीम्स आत्मनिर्भर 1, 2, 3, 4 मेरे ख्याल से थे, उसमें जो स्कीम्स दिए थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे इंडिया को स्टेबलाइज करने के लिए। और उसके खास बात की रिफॉर्म्स से अगर आप देखें तो जो हमने परसेंटेज ऑफ जीडीपी उसमें लगाया था वो औरों देशों से बहुत ही कम था, लेकिन फिर भी अनाज 80 करोड़ लोगों को एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, विमेन के लिए, अलग अलग जो मेंबर्स ऑफ सोसाइटी है जो आपके श्रोता सुन रहे होंगे वो अपने बिल्कुल संबंध करेंगे कि हमारे लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और हमारे लिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत कुछ हुआ है जिसका हम फायदा उठा सकते हैं।
1: सो हम मान सकते हैं कि ये ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस है, जैसे आपने जन विश्वास बिल की अभी कुछ समय पहले बात की थी कि काफी सारे डिक्रिमिनलाइज हुए हैं ऑफेंसेस और सजा घटाई गई है ताकि एक जो वो डर का जो माहौल था वो ना हो। एक और जो अभी डॉक्टर शर्मा ने बात करी, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान ब्रैप जो 2015 में शुरू किया गया और उसका एक ग्रासरूट्स लेवल की बात कर रहे हैं, ग्रासरूट्स लेवल पर डेवलपमेंट पे जो बल दिया गया है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ये ब्रैप है, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान। तो आपको लगता है कि ये भी बहुत जरूरी है भारत जैसे देश में जो इतना विस्तृत है, इतना विविध है और हर एक ज्योग्राफी की अपनी कोई प्रोडक्ट है या अपना कोई ऐसा एक यूनिक प्रोपोजिशन है जो मोनेटाइज किया जा सकता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने सुनो जी। और उसमें आप देखें तो एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है और कंपेटिटिव फेडरलिज्म है। पिछले 12 सालों में आपने दोनों देखे। तो मैं आपको एक दूसरी ओर ले जाता हूं, जो हमारे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, हम उन्हें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कहते हैं, उसमें क्या किया, उसमें एक डैशबोर्ड बनाया कि भाई ये आपके इंडिकेटर्स, उसमें बिजनेस का भी इंडिकेटर है और एक साल में सबसे ज्यादा कौन तरक्की कर रहा है उसको एक अवार्ड दे रहे थे। तो वहां के जो कलेक्टर्स हैं और वहां ग्रास रूट लेवल पे आप देखें तो वो डैशबोर्ड को देखते थे और कहां कोई अच्छा कर रहा है उसको एक लेकर के अपने डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट करने का देते थे और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली उससे सीख सकते थे। अब क्या हुआ है कि ऑल

0: तो ये वर्ल्ड बैंक ने अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बंद कर दिया है, बट इंटरनली भारत में कंपेरेटिव करते हैं स्टेट्स में कौन क्या कैसे रिफॉर्म कर रहा है,
1: जी
0: उसको एक कंटिन्यू हो रहा है। तीसरी जो चीज है, कई स्कीम्स बजट में आए हैं, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, चाहे आप इन्वायरमेंट पे देखें, या कई स्कीम्स हैं जिसमें अगर स्टेट रिफॉर्म करेगा और स्टेट कुछ करेगा उसके साथ ही आपको सेंटर से फाइनेंसिंग मिलेगा। 2014 के बाद हर स्टेट में एक इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है, हर स्टेट ये प्रेजेंट करना है उन्हें क्या रिफॉर्म किए हैं, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किए हैं, और इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स का होता है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करे कैटलिस्ट हो गया है कि रिफॉर्म करने का।
1: और ये धुरी यही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे यहाँ बहुत बढ़ी है। डॉक्टर शर्मा, अगर आपके पास आए तो मार्केट एक्सेस पर भी बहुत जो रिफॉर्म्स हुए हैं, टेक्नोलॉजी ड्रिवन, ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी हैज बीन अ बिग एनेबलर इन दीज 12 इयर्स, क्योंकि उसको बहुत तेजी से अडॉप्ट किया गया है। जो अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस द्वारा लाई गई, या जो ONDC है, वन नेशन डिजिटल, एंड लॉजिस्टिकल रिफॉर्म्स जो हुई हैं लॉजिस्टिक्स में, उनको आप कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं MSMEs के लिए, स्मॉल बिजनेसेस के लिए, अपना जो भी प्रोडक्ट है या सर्विस है उसको पहुंचाने के लिए मार्केट तक?
2: जी बिल्कुल सोनू जी, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स के साथ साथ सरकार ने नई पॉलिसीज भी दी है, जैसे कि आपने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की बात की है, उसमें बायर्स और सेलर्स, जो आपका कोई प्रोडक्ट है तो आप उसको कैसे आगे सेल कर सकते हैं, गवर्नमेंट उसकी बायर कैसे बन सकती है, और ONDC प्रोवाइड करता है कि जो ई कॉमर्स है आपका उसमें बायर्स एंड सेलर्स मिलकर आपस में कैसे अपने जो बिजनेस है उसको आगे ब्रेक थ्रू दे सकते हैं, कैसे उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्या है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के आपको बायर जो है इधर उधर खोजने का जरूरत नहीं है, आप एक प्लेटफॉर्म पे अपना जो प्रोडक्ट है उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, उसको आप बता सकते हैं, तो फिर बायर आपको अपने आप ही मिलेगा। तो जैसे आपने रिफॉर्म्स की बात की, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी सरकार लेके आई जिसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट होता था 14% ऑफ GDP होता था, और इस पॉलिसी के साथ साथ जो रिफॉर्म्स हुई, जो सरकार ने ट्रांसपोर्ट सिस्टम में रिफॉर्म्स की, जो रेल कनेक्टिविटी में जो रिफॉर्म्स की, जो एयर कनेक्टिविटी में रिफॉर्म्स की, और जो वाटरवेज में जो रिफॉर्म्स की, तो उनके मद्देनजर जो अब हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट है दैट इज नाउ 9-10% ऑफ GDP, तो उसमें बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट हुई है पिछले 6-7 वर्षों में। और साथ साथ में जो मैं बताना चाहूंगा कि PLI स्कीम, जो एक ऐसी स्कीम है जो आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है, सरकार ने ऐसे 14 सेक्टर्स चूज किए जो कि बहुत ही प्रॉमिसिंग सेक्टर्स हैं, जहां पे सरकार ने इंसेंटिव बेस्ड उनको स्कीम में आने को बोला, जिसमें कि आप देखेंगे कि उस स्कीम के मद्देनजर हमारा जो एक्सपोर्ट है बहुत इंक्रीज हुआ है। नाउ वी आर मेकिंग न्यू एंड न्यू रिकॉर्ड्स इन आवर एक्सपोर्ट ट्रैजेक्टरी, हमारा जो एक्सपोर्ट है पिछले 6-7 वर्षों में हर एक साल नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इवन के पिछले साल भी जब ये हेडविंड्स थे, जब टैरिफ हेडविंड्स भी थे, जब आपका ये जियोपॉलिटिक्स भी चरम सीमा पे चला गया, तब भी हमारा जो एक्सपोर्ट है उसने नया कीर्तिमान $863 बिलियन का स्थापित किया, जिसमें सर्विसेज और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स दोनों है। और जैसे चिनॉय साहब ने भी बात की कि ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, अगर हम पीछे 2020 के बाद कोरोना पीरियड के बाद का अगर हम अपना ग्रोथ रेट देखते हैं, दैट इज मोर देन 7% ऑन एन एवरेज। इमीडिएट कोरोना के बाद हम 9.7% पे ग्रो किए, उसके बाद मोर देन 8% पे ग्रो किए, उसके बाद हम 7.3 पे ग्रो, अभी जो टोटल अगर हम देखेंगे दैट इज मोर देन 7% इन ए रो, तो एक बहुत बड़ी चीज है। जबकि ग्लोबल ग्रोथ जो है वो 6% से गिर के, अभी जो लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट है वो लगभग कोई 2.7% रहेगी या 2.6% रहेगी, तो कितना ग्लोबल ग्रोथ में कितनी डिसेलरेशन हुई, लेकिन इंडिया का ग्रोथ रेट जो है इंटैक्ट रहा। अभी भी जो वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट्स हैं वो 6.6% पे, हमारे RBI का एस्टिमेट 6.5% पे, और हमारे जो इंडस्ट्री बॉडीज हैं दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक एट अराउंड 7%। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अवर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, अवर एक्सपोर्ट्स, अवर रिफॉर्म्स प्रोसेस एंड अवर रिफॉर्म्स फॉर दीज ऑफ डूइंग बिजनेस गो हैंड इन हैंड, ये चारों चीजें मिलके एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू जो है हमारी इकोनॉमी को दे रहे हैं। हमारे आगे लक्ष्य है, जैसे हम बात करते हैं कि हम विकसित भारत बनेंगे 2047 तक, वो एक बहुत ही राइट डायरेक्शन में हमारी जो ग्रोथ हो रही है। जैसे 2030 का हमारे अनुमान है कि हमारा एक्सपोर्ट है जो हम $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट देखना चाहते हैं, जिसमें मर्चेंडाइज 1 ट्रिलियन होगा, सर्विसेज 1 ट्रिलियन होगा, और हमारी जो इकोनॉमी है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, और जो हमारा GDP का साइज ऑफ GDP दैट विल ऑल्सो क्रॉस 5 ट्रिलियन। तो कुल मिला के जो स्टेटिस्टिक्स है और जो रिफॉर्म्स हैं और जो क्वालिटेटिव जो डेवलपमेंट्स हैं, जैसे मैंने बताया कि अभी सरकार ने एक भव्य स्कीम अनाउंस की है, उसके पहले सरकार ने जो एक इंसेंटिव्स दिए एक्सपोर्टर्स को के मद्देनजर के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, भले ही हम डायरेक्ट

श्रोता गीत आपने सुना फिल्म बागी 4 से, आवाज़ जोश ब्रार की थी। गीत के बोल परंपरा टंडन के, संगीत कुमार और जोश ब्रार का था।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
4: थोड़ी देर में समाचार प्रस्तुत किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरिया पलायम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता और भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए को 66 रन से हराकर त्रिकोणीय राष्ट्र ए श्रृंखला अपने नाम की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद

0: मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे शामिल हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जल मार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्धपोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं और भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योग अभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: डेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई।
2: परीक्षा में शामिल 10,000 से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं। परीक्षा केंद्रों पर आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी, सिग्नल जैमर और राज्य पुलिस की मदद से 2 स्तरीय तलाशी व्यवस्था लागू की गई थी।

0: सीसीटीवी निगरानी के लिए कंट्रोल और कमांड सेंटर एनटीए मुख्यालय, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 34 केंद्रीय संस्थानों, सभी राज्यों तथा जिलाधिकारी कार्यालयों में स्थापित किए गए थे। एनटीए ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश भर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
1: तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और कई रेलवे स्टेशनों पर उन्नत यात्री सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा कि देश भर में रेल अवसंरचना और सेवाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
2: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेल्वे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा, क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, के साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर इस वर्ष दिसंबर तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ये समझौता अगले वर्ष फरवरी या मार्च तक लागू हो सकता है। आज मुंबई में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय कारोबारियों को यूरोप के लगभग पूरे बाजार तक बेहद कम या 0 सीमा शुल्क पर पहुँच मिलेगी और इससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मामले में सलगांवकर समूह और उससे जुड़े एवीएस समूह की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने मुंबई स्थित एक फर्म के साझेदारों से जुड़े कई परिसरों और अन्य स्थानों पर 62,42,00,000 रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी के संबंध में तलाश अभियान चलाया है। सीबीआई ने कहा कि मुंबई में इंडियन बैंक की SAM शाखा की शिकायत पर इस महीने के 18 तारीख को मामला दर्ज होने के बाद तलाश अभियान चलाया गया। एजेंसी ने फर्म और उसके साझेदारों, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अज्ञात निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। ये वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। अमेरिका और ईरान के बीच पहले ही 14 सूत्री समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम की बात कही गई है, लेकिन इसराइल इस सीधे समझौते का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसने लेबनान में ईरान समर्थित गुट हिजबुल्ला पर हमले जारी रखे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने स्पष्ट किया है कि यदि बातचीत सफल होती है और प्रारंभिक समझौता लागू होता है तो कतर के पास ईरान की फ्रीज की गई $6 अरब की धनराशि ईरान को वापस दिए जाएंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट INS तरकश कल मॉरिशस के पोर्ट लुइस पहुंचा।

0: जहाज दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपने परिचालन अभियान के तहत तैनात है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस तैनाती का उद्देश्य समुद्री सहयोग को मजबूत करना और भारत तथा मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और तेलंगाना में अगले 4 से 5 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। राजस्थान, बिहार, झारखंड और ओडिशा में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और अब बात खेलों की। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने FIH महिला प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दाम्बुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हरा दिया है। भारत के 378 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 311 रन पर ही सिमट गई। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 158 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने सर्वाधिक 31 रन की पारी खेली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट UG पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सम्पन्न। तमिलनाडु के पेरिया पालियम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: जानी मानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

श्रोताएं, गीत आपने सुना फिल्म रॉकस्टार से, आवाज़ें हर्षदीप कौर और साथियों की थी। गीत के बोल इरशाद कामिल के और संगीत ए आर रहमान का।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म शहजादा से, आवाज़ें अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की थी। गीत के बोल आईपी सिंह और श्लोक लाल के, संगीत प्रीतम का।

जाने माने अभिनेता टॉम ऑल्टर का 29 सितंबर को निधन हो गया। उन पर केंद्रित विशेष आज के फनकार कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान।
1: सदमा ना पहुंचे कोई मेरे जिस्म-ए-ज़ार पर, आहिस्ता फूल डालना मेरे मजार पर। हर चंद खाक में था मगर ता फलक गया, धोखा है आसमान का मेरे गुबार पर।
0: ये थे थॉमस बीच ऑल्टर, जिनका जन्म 22 जून 1950 को मसूरी उत्तर प्रदेश में हुआ था। दरअसल टॉम ऑल्टर एक अमेरिकन क्रिश्चियन मिशनरीज के बेटे थे। बचपन का उनका समय हिमालयन हिल स्टेशन लैंडोर में बीता था। वैसे आपको बता दें, टॉम ऑल्टर ने हाल ही में एक लेख में बताया था कि उनके जो परदादा थे वो ओहायो यूनाइटेड स्टेट्स से सन 1916 के ज़माने में भारत में आए थे और उसके बाद भारत में उनका परिवार अलग अलग जगहों पर रहा। टॉम ऑल्टर के पिता इलाहाबाद के इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाया करते थे। इसके बाद वो सहारनपुर की एक सेमिनरी में पढ़ाने लगे थे। बाद में उनके माता पिता ने राजपुर में एक आश्रम शुरू किया था जिसका नाम था मसीही ध्यान केंद्र। फिर जबलपुर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर राजपुर में रहने के बाद देहरादून और फिर वो मसूरी में जाकर बस गए।
2: मैं जल्दी से एक बात बताता हूँ, अमर प्रेम दिल्ली में लगी थी, हम मसूरी में थे उस टाइम। तो मसूरी में फिल्में बहुत बाद में लगती हैं, पहले देहरादून आती है फिर धीरे धीरे मसूरी आ जाती है। तो हम लोग रात की बस पकड़ के मसूरी से रात का सफर करके दिल्ली गए थे ये फिल्म देखने के लिए, अमर प्रेम, मुझको याद है। 3 बजे का शो देखकर फिर थोड़ा सा खाना वाना खा के वापस आकर हमने ये 6 बजे का शो देखा, फिर रात वाली बस से हम वापस आए मसूरी। तो ये अमर प्रेम से इतना हमारा अमर प्रेम था उस टाइम। तो इस फिल्म के भी गाने मतलब एक के बाद एक सब सुपरहिट थे और बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन एक जो गाना है जो जिसका इस फिल्मी दुनिया से एक खास ताल्लुक है, वो मैं पेश करना चाहूंगा। उस गाने का नाम है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।

मसूरी के वुडस्टॉक स्कूल में अपनी शुरुआती पढ़ाई करने के बाद टॉम अमेरिका चले गए थे। तब उनकी उम्र 18 साल की थी। एक साल तक वो येल यूनिवर्सिटी में रहे। 19 बरस की उम्र में टॉम टीचर बनकर आ गए जगाधरी हरियाणा में। ये वो दिन थे जब वो टीचर तो थे ही एक स्कूल में जिसका नाम सेंट थॉमस स्कूल था, लेकिन चूंकि स्पोर्ट्स से उनका गहरा लगाव था तो वो वहां बच्चों को क्रिकेट भी सिखाया करते थे। 2.5 बरस तक टॉम ऑल्टर जगाधरी में रहे। इसके बाद वो उसी स्कूल में चले गए जहां उनकी खुद पढ़ाई लिखाई हुई थी, यानी मसूरी का वुडस्टॉक स्कूल। यहां भी उन्होंने थोड़े दिन पढ़ाया। जब वो जगाधरी में रह रहे थे तब हिंदी फिल्मों से उनका ज्यादा लगाव हुआ। इसी दौरान उन्होंने आराधना फिल्म देखी।

0: ये फिल्म उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने एक हफ्ते में 3 बार इसे देख डाला। यहां से टॉम ऑल्टर की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। उन्होंने सोचा कि वो फिल्मों में काम करेंगे। इसके तकरीबन 2 बरस के बाद टॉम ऑल्टर फिल्म्स एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी पुणे में एक्टिंग का डिप्लोमा लेने के लिए आ गए। सन 1972 से 1974 तक वो पुणे में रहे।
1: मैंने सन 72 में फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था और एक्चुअली इस जगत का सफर तब शुरू हुआ था सन 72 से। 2 साल वहाँ रहा मैं पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में, बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा लिया, बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर 74 में 74 में मैं यहाँ आया था, मेरे ख्याल से मई का महीना था, और मैं अपनी मोटरसाइकिल पर पुणे से बम्बई आया था। मुझको याद है, अच्छी तरह याद है, जेब में 44 रुपये थे और एक पुरानी मोटरसाइकिल थी मेरे पास, उसके अलावा सपनों के अलावा कुछ नहीं था मेरे पास। ये सपनों का सफर तब शुरू हुआ था। काफ़ी तकलीफें भी झेलनी पड़ी, आज भी झेल रहा हूँ, बट एक संघर्ष जो है ना, ये बहुत जरूरी है हर आदमी के जीवन में, और संघर्ष आज भी जारी है और एक मजेदार संघर्ष है।
0: टॉम ऑल्टर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो राजेश खन्ना बनना चाहते थे, वो एक रोमांटिक हीरो बनना चाहते थे। हालांकि फिल्मों में उनका जो करियर रहा वो बतौर हीरो नहीं बल्कि बतौर चरित्र अभिनेता रहा। सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी।
1: राज कपूर की एक बहुत ही मशहूर फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली, फिल्म मैंने मंदाकिनी के ब्रदर का रोल किया था, एक पहाड़ी आदमी है, वो भी हिंदुस्तानी रोल, और ये जुनून से बहुत पहले, लेकिन जिस तरह मैंने कहा लोग जल्दी भूल जाते हैं, खैर कोई बात नहीं, कोई शिकायत नहीं है। वो रोल मुझे बहुत बहुत पसंद आया क्योंकि वो अपनी जान की कुर्बानी देता है अपनी बहन के लिए, तो वो एक रोल था। फिर एक फिल्म आई थी शतरंज के खिलाड़ी मिस्टर सत्यजीत रे की, उसमें मैंने अंग्रेज का रोल किया था ज़रूर, लेकिन उस अंग्रेज को शेर व शायरी में दिलचस्पी थी और हिंदुस्तान से बेहद प्यार था।

0: और उर्दू में बात करता था वो, तो वो बहुत ही एक दिलचस्प किरदार था शतरंज के खिलाड़ी में।
1: We are most grateful to His Majesty for granting us this interview.
2: इस मुलाकात के लिए हम सुल्तान आलम के बेहद शुक्रगुजार हैं।
1: We also appreciate his gesture in disarming his soldiers.
2: हम फौजियों की उनकी कदर करते हैं।
1: We regard it, we hope rightly, as evidence of his concern to negotiate a peaceful conclusion for the treaty.
2: हम समझते हैं अलीजा अहदनामे के बारे में दोस्ताना बातचीत के लिए तैयार है।
1: I would like, if I may, to add a personal request to His Majesty that he please sign this treaty and formalize his abdication.
2: हमारी दरख्वास्त है सुल्तान आलम अहदनामे पर दस्तखत फरमा के अपनी जिम्मेदारियों से दस्तबदार हो जाएं।
1: His Majesty shall have a maximum of 3 days for deliberation.
2: इस मसले पर फरमाने के लिए सुल्तान आलम को ज्यादा से ज्यादा 3 दिन की मोहलत मिलेगी।
1: After which the company will assume the administration of Oud.
2: बाद इस मुद्दत के कंपनी बहादुर अवध का सारा इंतजाम अपने हाथ में ले लेगी।
1: I hope the king has understood what I've said.
2: हमने जो कुछ कहा है उम्मीद है सुल्तान आलम समझ गए होंगे।
1: What is this? May please tell His Majesty that I have no use for that.
2: ये रेजिडेंट साहब की किसी काम की नहीं है।
3: आप हमारी दस्तार तो ले सकते हैं रेजिडेंट साहब, दस्तखत नहीं ले सकते।
0: और अब जहाँ तक हिंदी या हिंदुस्तानी का सवाल है, मैं तो मेरी पैदाइश तो मसूरी के यूपी की है। जिस जमाने में मेरी पैदाइश हुई यूपी के उस इलाके में लोग या तो हिंदुस्तानी में बात करते थे या तो उर्दू में। हिंदी तो उस इलाके में बाद में आई, मैं वेस्टर्न यूपी की बात कर रहा हूँ, मसूरी देहरादून की बात कर रहा हूँ। बचपन में मेरे वालिद साहब उर्दू लिखते भी थे, पढ़ते भी थे, बात भी करते थे उर्दू में। तो शुरू से मेरे अंदर एक बहुत ही एक दिलचस्पी रही, एक शौक रहा उर्दू सीखने का। हिंदी तो हमने स्कूल में सीखी थी। तो मैं जब पूना आया था 1972 में फिल्म इंस्टीट्यूट में, मैंने कहा मैं इस शौक़ को अब मतलब एक उसको एक अंजाम भी दूँ। मेरे एक दोस्त वहाँ बने मोहम्मद रफ़ीक, तो उन्होंने मुझको उर्दू सिखाना शुरू किया पूना में 2 साल तक। फिर मैं यहाँ आया तो मेरी खुशनसीबी ये रही कि उस्ताद जालिब साहब से मेरी एक मुलाकात हुई। बहुत जाने माने उस्ताद थे उर्दू के, उनका इंतकाल हुआ कुछ 6-7 साल पहले। तो 5 या 6 साल तक मुसलसल मैं जालिब साहब के साथ उर्दू सीखता रहा। और जालिब साहब के बारे में इस वक्त कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत ही जज्बाती मामला है, लेकिन अगर कुछ हद तक मुझको उर्दू आती है वो सिर्फ जालिब साहब की वजह से। लेकिन उर्दू का शौक मेरे अंदर इसलिए आया क्योंकि मेरे फादर बोलते थे, लिखते थे, पढ़ते थे उर्दू।
4: अच्छा।
0: और उस जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि यूपी के उस इलाके में जहाँ मेरी परवरिश हुई उस जमाने में उर्दू या हिंदुस्तानी जबानें चलती थी, हिंदी बाद में आई। शकील बदाउनी एक शेर है, अगर वो बहुत ही जाने माने शायर थे, उन्होंने लिखा कि शकील दिल हूँ मैं हूँ मोहब्बतों का राजदान, मुझे फख्र है मेरी शायरी मेरी जिंदगी से जुदा नहीं। यानी कि शायरी और जिंदगी अगर जुदा यानी कि अलग अलग रहे तो तब आदमी शायरी नहीं कर पाता, शायद शायरी लिख पाता लेकिन कर नहीं पाता।
5: आज के इस कार्यक्रम में आप टॉम ऑल्टर की जो रिकॉर्डिंग सुन रही हैं वो बहुत बरस पहले विविध भारती के एक इंटरव्यू के दौरान कही गई बातें हैं।
0: उस तरह से एक और फिल्म का नाम लूंगा मैं जरूर, उसका नाम था चमेली मेम साहब, जिसमें मेरा हीरो का रोल था। वो भी बहुत ही सिंपथेटिक रोमांटिक बहादुर इंसान था वो, तो मुझे वो रोल शायद सबसे ज्यादा पसंद है। वो फिल्म भी पसंद है लेकिन वो रोल मुझे बहुत पसंद है। और वो जो हीरो का रोल था वो मुझको उस फिल्म के अलावा बस और एक फिल्म में मिला था हीरो का रोल, जो कभी कंप्लीट नहीं हुई थी फिल्म। तो मेरी जो तमन्ना थी ना, जो एक मसूरी से लेकर जो मैं तमन्ना लेकर यहाँ बम्बई आया था, उस फिल्म में जाकर वो तमन्ना जो है वो पूरी।
5: फिल्म क्रांति में उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर का रोल किया था।

0: सन 1993 में उन्होंने फिल्म सरदार में काम किया।
1: आज इस मीटिंग में जो फैसले लिए जाएंगे उनका असर सिर्फ इस मुल्क ही पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर होगा। इसलिए मौजूदा हालात को देखते हुए और आप सब लीडरों के साथ बात करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हुकूमत जल्द से जल्द सौंप दी जानी चाहिए आपके हाथों में। हमें पूरी उम्मीद है कि आपके इन फैसलों से पैदा होने वाले हालात को संभालने के लिए आप सब तैयार होंगे।
0: टॉम ऑल्टर न केवल फिल्मों में सक्रिय थे बल्कि बरसों बरस तक वो टेलीविजन के लिए भी काम करते रहे।
2: प्रोफेशनली मैं सबसे पहले सिनेमा से जुड़ गया था क्योंकि उस टाइम में टेलीविजन था लेकिन बस उसको ज्यादा उसकी ज्यादा अहमियत नहीं थी। तो और हम आए थे बम्बई में फिल्मों में काम करने के लिए, टेलीविजन में काम करने के लिए नहीं, या नहीं तो थिएटर में काम करने के लिए। तो सिनेमा से मैं जुड़ गया था और एक सपना था हीरो बनने का फिल्मों में, और कुछ एक छोटी सी हद तक वो सपना साकार भी हुआ। लेकिन आज भी, हालांकि टीवी में बहुत काम करता हूं मैं और टीवी से मुझे कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन आज भी मैं अपने आप को फिल्म आर्टिस्ट मानता हूं। प्रेफरेंस में रखना बहुत मुश्किल है। प्रोफेशनल तौर पे तो टीवी को मैं ज़्यादा पसंद इसलिए करता हूं कि टीवी में एक मुसलसल आपको काम मिलता रहता है, और अगर आपकी सीरियल हिट हो गई तो जिस तरह जुनून हिट हो गया है, 5 या 5.5 साल तक लगातार आप एक ही किरदार को निभा रहे हैं तो बहुत उसमें मज़ा आता है। तो प्रोफेशनली आजकल मैं टीवी को ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन जो एक मज़ा आता है काम करने में, या जब आपकी पिक्चर हिट होके रिलीज हो जाती है या रिलीज होके हिट हो जाती है, वो जो मज़ा है जब आपकी पिक्चर हिट हो जाती है और लोग, मतलब बेशुमार लोग थिएटर हॉल में जाते हैं आपकी फिल्म देखने के लिए, तो वो जो मज़ा है वो सिर्फ सिनेमा में है, वो टीवी में नहीं है। तो उसका एक अलग मज़ा है फिल्मों का। और जहाँ तक थिएटर का सवाल है, वो एक नॉन प्रोफेशनल तौर पर मुझे थिएटर बेहद पसंद है क्योंकि थिएटर में आराम है, फुर्सत है, कोई जल्दी नहीं है, और एक चीज़ को आप बाकायदा 3-4 महीने तक रिहर्सल कर सकते हैं, उसके बाद आप पेश कर सकते हैं, ऑडियंस भी सामने बैठे हैं। तो हर चीज़ का एक अलग पहलू है, हर एक अलग मज़ा है। तो प्रोफेशनली जिस तरह मैंने कहा, शायद प्रेफरेंस मैं टीवी को दूँ, और जहाँ तक मज़े का सवाल है तो शायद प्रेफरेंस को मैं सिनेमा को दूँ, और जहाँ तक पर्सनल एक तसल्ली या सेटिस्फेक्शन का सवाल है तब मैं शायद प्रेफरेंस दूँ थिएटर को।
3: तो आपने उसे अपने ही साये के घटने बढ़ने से परेशान कर दिया।
4: और क्या करते हुजूर, क्या है कि वहां से निकलने का रास्ता में और कोई मिल नहीं रहा था, और वो बेचारा इतना परेशान था कि उसके दिमाग में इतनी सी भी बात नहीं आ रही थी कि हम उस लाइट को कभी आगे खिसका रहे थे तो कभी पीछे, जिससे उसका साया कभी बढ़ रहा था तो कभी घट रहा था।
5: आपने कभी अपने साये को घटते बढ़ते देखा है?
4: मैडम, हम दूसरों के सायों को नापते रहते हैं, अपनी फिक्र कहाँ। मिस्टर धनराज, आप इतने खामोश क्यों हो गए?
6: नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस
7: आप ये सोच रहे होंगे कि इस केशव कलसी से पहले आपकी मुलाकात क्यों नहीं हुई, क्योंकि अगर होती तो वो जमीन का टुकड़ा आपके हाथों से नहीं जाता।
8: मेरे दोस्त मुझे प्यार से के कहते हैं, काम का कलसी। आप भी मुझे के कहें तो बहुत मुसर्रत हो।
2: और शुरू में मैं ये कहूँ कि मेरी मदर को ये रोल बिल्कुल पसंद नहीं आया कि वो अपने बेटे को ऐसे रूप में देखना पसंद नहीं करती थी। तो उससे मुझको एक अंदाज़ा मिला कि हाँ, शायद ऐसा हो सकता है कि कैरेक्टर या किरदार जो है वो अपनी निजी ज़िंदगी के ऊपर हावी हो जाए। लेकिन अंत में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये ज़रूर है कि आदमी जब कोई किरदार निभाता है तो वो अपनी निजी ज़िंदगी से कुछ ऐसे पहलू, कुछ ऐसी बातें निकाल कर उस किरदार के अंदर डालने की कोशिश करता है। तो ये ज़रूर है कि केशव कलसी का जो किरदार है, मेरे अंदर जब मैंने वो शुरू किया था कैरेक्टर, तो

0: अंदर कुछ थोड़ा सा गुस्सा था और एक जिद थी मेरे अंदर दिखाने की कि मैं इस तरह का रोल कर सकता हूँ। तो ये थोड़ा सा गुस्सा था, थोड़ी सी जिद थी, तो मैंने अपनी ज़िंदगी से ये चीज़ें निकाल कर उस कैरेक्टर के अंदर डाल दी। लेकिन मेरे ख्याल से वो जो कैरेक्टर है वो मेरी निजी ज़िंदगी के ऊपर हावी नहीं हुआ, बल्कि 5.5 साल तक इस कैरेक्टर को निभाते निभाते बीच में कभी कभार ये मुश्किल हुआ कि उस कैरेक्टर के अंदर वही गुस्सा, वही जिद, उसको बरकरार रखना मुश्किल हो गया था मेरे लिए 5.5 साल तक। तो बीच में एक बार मैंने उसको थोड़ा सा ढीला भी छोड़ दिया था जानबूझकर, और मुझको लगा कि कोई नोट करेगा नहीं। लेकिन 2-3 लोग मेरे पास आए थे पब्लिक में से, और उनने बाकायदा मुझको गालियां दी कि ये तुमने क्या किया, अचानक तुमने नरम क्यों बना दिया। तब वापस मुझे अपने आप को बिल्कुल कस के रखना पड़ा। तो बहुत ही दिलचस्प रहा यह सफर केशव कलसी के साथ, और मेरे ख्याल से इस सफर से बहुत कुछ सीखने को मिला मुझको।
1: शीलों से टॉम ऑल्टर का बड़ा गहरा लगाव रहा। जैसे कि हमने आपको बताया, टॉम ऑल्टर जब जगाधरी के एक स्कूल में पढ़ाया करते थे, उन दिनों में बच्चों को वो क्रिकेट भी सिखाया करते थे। अगर आप YouTube पर खोजें तो आपको महान सचिन तेंदुलकर का एक बहुत पुराना, लगभग शुरुआती दौर का इंटरव्यू नजर आएगा। वो टॉम ऑल्टर ने ही लिया था। खेलों से अपने जुड़ाव के बारे में टॉम ने हमें बताया था।
0: एक्चुअली खिलाड़ी बनना चाह रहा था, खासकर क्रिकेट का, तो मैं उतना अच्छा खिलाड़ी नहीं था, तो मैं बन नहीं पाया। स्पोर्ट्स में मतलब शुरू से बचपन से स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, यूँ कहना चाहिए कि एक जुनून सवार रहा मेरे ऊपर स्पोर्ट, आज भी है। स्पोर्ट्स से, स्पोर्ट्स की दुनिया से, खिलाड़ियों से बहुत गहरा है मेरा एक रिश्ता रहा है शुरू से बचपन से। क्रिकेट के साथ धीरे धीरे जो है मेरा रिश्ता और गहरा होता जा रहा है। और लेकिन स्कूल में ऐसा कोई खेल, ऐसा कोई स्पोर्ट था ही नहीं जिसमें मैंने हिस्सा नहीं लिया, स्कूल और कॉलेज में दोनों। और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल तक मैंने बास्केटबॉल में भी हिस्सा लिया। तो बास्केटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, क्रॉस कंट्री, इन सारे जो खेल हैं इन सब में मैंने हिस्सा लिया। आजकल मैं खेलता हूँ क्रिकेट, और थोड़ी बहुत रनिंग भी करता हूँ मैं। मैं लिखता भी हूँ स्पोर्ट्स के बारे में, पेपर्स में, मैगजीन्स में, स्पोर्ट्स के मैंने कई प्रोग्राम्स भी बनाए हैं टीवी के लिए, और कमेंट्री भी मैंने दी है। तो मालूम नहीं, स्पोर्ट्स से मुझे एक हमेशा एक प्रेरणा मिलती रहती है कि स्पोर्ट्स जो है हमको बहुत कुछ सिखा सकता है ज़िंदगी के बारे में। ज़िंदगी का संघर्ष जो है किस तरह लड़ना चाहिए, वो आदमी स्पोर्ट्स से सीख सकता है। तो इसलिए स्पोर्ट्स ने शुरू से लेकर आज तक मुझको बहुत सहारा दिया है, सुकून भी दिया है, राहत भी दी है, और मुझको सिखाया बहुत कुछ है स्पोर्ट्स ने।
1: टॉम ऑल्टर का थिएटर से गहरा लगाव रहा है, इस बारे में उन्होंने बताया।
0: थिएटर में इसलिए मैं करता हूँ, ज्यादातर पैसे के लिए तो मैं करता नहीं हूँ थिएटर। पूरा जो सिलसिला है थिएटर का, एक आपने पहले दोस्तों के साथ प्ले को आपने जांचा, फिर आपने पढ़ा, फिर उसके बाद आपने रिहर्सलें की, रिहर्सलों के अंदर इतनी तब्दीलियां आ जाती हैं हर चीज़ में, फिर आखिरकार एक परफॉर्मेंस भी होता है, वो भी ऑडियंस के सामने। तो एक लंबा एक सफ़र है ये थिएटर का, तो मुझे वो सफ़र बेहद पसंद है। वो सफ़र आपको थिएटर, इसमें सिनेमा और टीवी में नहीं मिलता है। तो वो मुझे बहुत पसंद है, लोगों के साथ दोस्ती कायम करना, नए रिश्ते पैदा हो जाते हैं रिहर्सल करते करते परफॉर्मेंसेस का, और हर परफॉर्मेंस में कुछ नए रंग आ जाते हैं। तो ये मज़ा है थिएटर का कि आपको फुर्सत मिलती है, एक टाइम मिलता है आपको, एक अरसा पूरा आपको मिल जाता है। मैंने मेरे ख्याल से 15-20 प्लेज किए हैं बम्बई में आके। एक प्ले है जो मैं अपने दो बहुत ही अजीज दोस्तों के साथ किया करता था, नसीरुद्दीन शाह और बेंजामिन गिलानी के साथ। उस प्ले का नाम है वेटिंग फॉर गॉडो, इंग्लिश का प्ले है, बहुत ही कठिन प्ले है समझने के लिए भी और समझाने के लिए भी, लेकिन हम लोगों ने कम से कम 50-60 उसके शोज किए हैं, और वो प्ले मुझको बेहद पसंद है, वेटिंग फॉर गॉडो।
1: संगीत में अपनी दिलचस्पी के बारे में टॉम ऑल्टर ने विविध भारती को अपने एक इंटरव्यू में ये बात बताई थी।
0: क्लासिकल संगीत से कोई खास मेरा रिश्ता नहीं रहा है, ना तो हिंदुस्तानी क्लासिकल, ना तो इंग्लिश क्लासिकल, लेकिन हाँ पुराने, अब तो खैर पुराने हैं, उस टाइम तो नए थे हमारे लिए, पुराने फिल्मी गीत मुझे बेहद पसंद है। और जहाँ तक इंग्लिश म्यूजिक का संबंध है, तो बीटल्स के गाने, फिर ईगल्स के गाने, उससे पहले एक और फोक ग्रुप था पीटर पॉल एंड मैरी, उनके गाने, ये मुझे आज तक मतलब बेहद पसंद है। इंडियन म्यूजिक में हाल ही में कुछ पिछले मैं देख रहा हूँ 1-2 साल से, कहीं से मालूम नहीं कहाँ से मेरे अंदर एक क्लासिकल म्यूजिक में एक दिलचस्पी पैदा हुई है जो पहले बिल्कुल नहीं थी मेरे अंदर। अभी हाल ही में मैं भोपाल में था, तो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का एक वहाँ पर कार्यक्रम था, तो फर्स्ट

टाइम जिंदगी में मैंने ध्यान से बैठकर किसी एक इस तरह के प्रोग्राम को सुना और मेरी आंखों में तो आंसू आ गए सुनते सुनते। तो शायद इस बुढ़ापे में क्लासिकल म्यूजिक में भी एक दिलचस्पी मेरे अंदर पैदा हो रही है, लेकिन अब तक जो है मेरा इंटरेस्ट रहा है या तो फोक म्यूजिक में या तो पॉपुलर म्यूजिक में, रॉक में उतना इंटरेस्ट नहीं है। तो फिल्मी गाने बस वही हमारे तीन जो सितारे हैं, किशोर जी, रफ़ी साहब और मुकेश जी, उनके गाने तो घंटों तक, क्या मैं दिनों महीनों तक सुन सकता हूँ। मैं सच बताऊँ, कुछ इसका कारण क्या है मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन आजकल जब गाने मैं सुनता हूँ तो मुझको 10 बार सोचना पड़ता कि आवाज़ किसकी है। शायद मेरे अंदर दिलचस्पी कम हो गई या शायद कुछ आवाज़ें जो हैं वो सेम टू सेम होती जा रही हैं। मुश्किल है। मुझको याद है हम आशिकी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे जिसमें फर्स्ट टाइम कुमार शानू ने कुछ गाने पेश किए थे। अब मैंने उनकी आवाज़ पहली बार सुनी थी जब नया नया था वो, तो मैंने प्रोड्यूसर से कहा कि ये जो आदमी है कुमार शानू, ये बहुत सक्सेसफुल रहेगा। उस टाइम में कुमार शानू की आवाज़ मुझको बहुत अच्छी लगी। बाकी जो नए नए हैं वो अब क्या बताऊं मैं, कुछ उनकी आवाज को पहचानने में मुझको तकलीफ, शायद इसलिए कि मैं पुराने जमाने में खोया रहता हूँ। ये गीत मुझे इतना पसंद है कि नाम लेते वक्त भी मजा आता है। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। अच्छा लगता है जब कोई अपना पुकारता है नाम लेकर, अपना ही नाम खास हो जाता है।

हमारे लिए। इंतजार करना पड़ता है उस मासूम लम्हे के लिए, पर वो लम्हा जब आता है जिंदगी में तो बीतता नहीं, वो ठहर जाता है, वो लम्हा बर्फ हो जाता है हमेशा के लिए। उस लम्हे की खुशबू महका देती है जिंदगी को। अभी तक हम उस लम्हे में जी रहे हैं जब पहली बार तुमने हमें नाम लेकर पुकारा था।

चंद लम्हों में सारी जिंदगी जी लेते हैं हम, जैसे खिड़की से बारिश देखते हैं जब, और बूंदों को महसूस करते हैं अपने चेहरे पर, जैसे समंदर के किनारे बैठकर जब बतियाते हैं लहरों से, जैसे किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर होता है एहसास कि कितना विराट है ये संसार और कितने छोटे हैं हम इन चंद लम्हों में, जैसे हम जी लेते हैं सारा जीवन चंद लम्हों वाला ये जीवन।

तस्वीरों के रंग धुंधले पड़ जाते हैं, पर लम्हों के रंग कायम रहते हैं। काली सफेद तस्वीरों के रंग भले भूरे या धूसर पड़ जाएं, पर ये तस्वीरें जब आती हैं सामने तो छपाक से हम डुबकी लगा लेते हैं बीते हुए वक्त में। पुराने एल्बमों से इसीलिए तो प्यार होता है हम सबको। किसी फुर्सत के दिन जब खोलते हैं पुराना कोई एल्बम, तो बीते वक्त के गलियारों में खूब टहलना होता है। यूं आती

जो काम पुरानी तस्वीरें करती हैं वही काम करते हैं पुराने गाने। कोई एक गीत, कोई एक सुर, कोई एक पंक्ति हमें ले जाती है कई बरस पीछे। अंताक्षरी वाला वो दिन, वो तुमसे चुपके से नजरें मिलाना, वो फिल्मी गानों के बहाने सबके सामने अपनी बातें कहना। कितने शरारती थे ना हम हमेशा से, अब देखो ना ये बजा पुराना गाना और ये चल पड़े हम बीते वक्त की यादों के रास्ते पर।

लोग जमा करते हैं जाने कौन कौन सी महंगी चीजें, जेवर। लोग परदेश जाते हैं खूबसूरत जगहों पर। दुनिया चीजों के प्यार में मुब्तिला हो जाती है। जिंदगी वो है जिसमें चीजें नहीं जज्बात जमा किए जाएं। जिंदगी वो है जिसमें हो प्यार की रोशनी। जिंदगी वो है जिसमें दो दिल एक ही लय और ताल पर धड़कते हों, जिसमें हम एक दूसरे के लिए जीते हों।

तुम्हारे देख भर लेने से दुनिया खूबसूरत लगने लगती है हमें। जरा सोचो, एक निगाह, एक मुस्कान भी बदल सकती है किसी की दुनिया। प्यार हो जाना दुनिया की सबसे खूबसूरत घटना है, और प्यार में जीना सबसे खूबसूरत बना देता है जिंदगी को। आओ हम इस संदिल दुनिया में प्यार के नर्म फूल खिलाएं।

0: खबर मिल।
1: फिल्म भूल न जाना, संगीतकार दान सिंह।
2: एक चमेली के मंडवे तले, एक चमेली के मंडवे।
1: फिल्म चा चा चा, संगीतकार इकबाल कुरैशी।
3: फिर आने लगा याद वही प्यार का आलम।
1: फिल्म ये दिल किसको दूं, संगीतकार इकबाल कुरैशी।

0: फिल्म माई लव, संगीतकार दान सिंह। फिल्म ठाकुर जरनैल सिंह, संगीतकार गणेश।
1: तुम जो आओ तो प्यार आ जाए जिंदगी में बहार।
0: फिल्म सखी रॉबिन, संगीतकार रॉबिन बनर्जी। आज का छाया गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को, नमस्कार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इसमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट, INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि योग विभिन्न देशों के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में योग दिवस और अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नीट UG पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देशभर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सीफूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय

आपदा मोचन बल और रासायनिक जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर मालिक गलीवफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघाची कर रहे हैं। यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर एफआईएच नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने एफआईएच महिला प्रो लीग में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। लाल रेम सियामी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।